मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 18 सितंबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 हो चुके हैं। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है, अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदियों गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए 3 नाम और 3 मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से 1 नाम और 1 चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू

0: उपस्थित होंगे। इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता का विकास को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका सहित कई देशों से ऊर्जा खरीदता है। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से पराजित किया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। माँ जगदम्बा का नाम लेते ही मन में भक्ति, शक्ति और विश्वास का संचार होने लगता है। माँ अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति और साहस प्रदान करती हैं। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

जब भक्त सच्चे मन से माँ के दरबार में आता है तो माँ उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। माँ से मांगा गया सबसे बड़ा वर यही है कि हमारे जीवन में सदैव भक्ति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। आइए इसी श्रद्धा विश्वास के साथ माँ के चरणों में अपनी भावनाएं अर्पित करें और सुनते हैं एक सुंदर सा भक्तिमय भजन।

जब मन की बात कहने वाला कोई ना हो तब भक्त अपने मन की हर बात प्रभु के चरणों में रखता है। प्रभु आप ही हमारी पुकार सुनें।

0: अभी आप लता मंगेशकर, नरेंद्र चंचल और अनुपमा देशपांडे के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं पर समाप्त होता है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242। सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है गांधी चर्चा, आइए सुनते हैं राम नाम की महिमा के संबंध में बापू के विचार।
4: प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी जी के लिए राम नाम सत्य स्वरूप है। वह कहते थे, आराधना हृदय से होनी चाहिए। राम नाम वह औषधि है जो बीमार तन मन को स्वस्थ करती है। बात तो बस हृदय की शुद्धता की है। जिसने राम नाम का जप किया उसकी नैया पार लगी। राम नाम जब गले से उतरकर हृदय में प्रविष्ट हो जाता है तो सभी रोगों एवं शोकों से मुक्ति मिल जाती है। प्रस्तुत है राम नाम की महिमा के संबंध में बापू के विचार।
1: प्रार्थना जो मनुष्य सच्चा हृदय से करता है और पीछे भगवान के साथ कोई कोई इकरार कर लेता है, हाँ मैं प्रार्थना तो करता हूँ और उसका मुझको आज के आज उत्तर चाहिए, तो भगवान को जानता है वो क्या शक्ति है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य एक दूसरे के साथ जड़ सकते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ तो मुझको पांच

तो 500 रुपया नहीं देता है, तो आप उसके साथ लेते तो क्या हम ईश्वर जो निरंजन है, निराकार है, जिसको कोई पहचान नहीं सकता है, उसके साथ जगने तो नहीं हो सकता है। और या तो उस पर हम न्याय करने के लिए बैठा वो भी नहीं हो। प्रार्थना का महत्व बता देना चाहता हूँ कि प्रार्थना एक ऐसी चीज है कि जो करना हमारा परम कर्तव्य है। हम खाने का छोड़ सकते हैं, पीने का छोड़ सकते हैं, कहीं जाना है तो जाने का छोड़ सकते हैं, नींद को छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन आदमी में एक भी सांस पड़ा है तब तो उसको प्रार्थना करना ही है। वो कैसे कर, तब बताया है हमको कि नाम दे। तो इस लड़के ने भी जाके बताया ना कि नाम भजन से क्या होता है। और पीछे आखिर में तो कहा कि साहेब मिलत वो सबूरी में, सबूरी में कहो तो फकीर में, जो कुछ भी उसमें कहना चाहते हैं तो उसमें मिल जाता है। शायद तो ईश्वर को नाम उसने दे दिया है, बहुत बहुत बड़ा नाम है उसने। तो प्रार्थना वो तो नाम है, नाम तो नाम स्मरण करो, तो नाम स्मरण में मतलब ये होगी कि ईश्वर का स्मरण करो। तो एक आखिरी का साथ निकलता है, तब तक वो नहीं चाहिए। अगर हम प्रार्थना का रूप बन गए हैं तो हमारे हाल ऐसे होने चाहिए कि हम कभी मूर्छित स्थिति में न रहें। ऐसा नहीं कि वो हमने ठान लिया है जैसे नमाज पढ़ते हैं कि प्रातः काल का पढ़े, पीछे असर का है, बीच में आता है, ऐसे तारीख गायत्री है, संध्या है, वो अपनी अपनी समय पर करें। लेकिन राम नाम के लिए ऐसा समय नहीं है। सारा दिन भर एक भी श्वास चलता है उसके साथ साथ वो चलना चाहिए। ऐसा जब चलें तब आप कहिए कि उस आदमी का खेल है और उस आदमी को 125 वर्ष जिंदा रहने का हक है। हुआ मैं ही, आप ही, कोई भी मनुष्य है, तो उसको कहो कि तू 125 वर्ष के पहले मर जाएगा तो हम कैसे कहें कि प्रत्येक श्वास और निश्वास में, उच्छ्वास में तेरे में राम नाम नहीं था तो मैं आपको कहता हूँ कि आप कैसे

0: अभी आप सुन रहे थे राम नाम की महिमा के संबंध में बापू के विचार। गांधी चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं स्टीविया की खेती कैसे करें, इस विषय पर डॉक्टर अमित कुमार मौर्य से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत।
1: प्रस्तुत है

0: किसान भाई खेती किसानी में लगा बाटे ना, उन आज जो बातचीत के विषय बा उ स्टीविया के बारे में है। को जानकारी दे खातिर आज कार्यक्रम आए बाटे डॉक्टर अमित कुमार मौर्य जी, जौन की इस सब के जानकार बाटे। डॉक्टर अमित कुमार मौर्य जी, आप बताओ हमारे किसान भाई की स्टीविया जौन हो तो उकर अगर खेती करे चाहते किसान भाई तो वैज्ञानिक विधि के हिसाब से कैसे करें, बताओ आप।
1: स्टीविया एक औषधीय पौधा है
0: जी,
1: मीठी तुलसी कहा जाता है।
0: अच्छा, मीठी तुलसी,
1: मीठी तुलसी होता है, विकल्प बनता जा रहा है चीनी का। और इतना नहीं, जैसे उच्च रक्तचाप है, निम्न रक्तचाप है, इसको बैलेंस करता है, हमारे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को, और इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी वायरल और इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होने के कारण।
0: अच्छा,
1: इसमें क्या है कि दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है।
0: ये तो भाई नेक बात बात है,
1: तो इनके लिए भी है। इतना ही नहीं, औषधीय गुण तो है ही है इसमें, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसका व्यावसायिक व्यापार भी बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। और
0: अच्छा,
1: ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है,
0: यानी अगर किसान भाई अगर खेती कर रही तो फायदा ज्यादा हो सकता
1: जी।
0: तब करे बारे में बताओ भैया कि अगर खेती करे चाहते हैं तो कैसे करें, का का तरीका अपनाओ, बताओ आप।
1: ये अपने भारत देश में पूर्णतया तो मूलतया चीन, जापान, कोरिया में पाया जाता है, लेकिन अपने भारत में अभी इसकी खेती पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश किया जा रहा है प्रमुखता से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: और इसके लिए जो जलवायु है, इसके लिए समशीतोष्ण जलवायु की जरूरत होती है।
0: अच्छा,
1: या यूं कहें अर्ध उष्ण जलवायु की जरूरत होती है। 5 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है इसके लिए उपयुक्त माना जाता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और इसकी खेती के लिए समुचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसकी जो सबसे खास बात है, जिस तरह हम मिंट, पेपरमिंट को लगाते हैं,
0: हाँ हाँ,
1: बंड या मेढ़ों पे ही इसको हमें रोपाई करनी है,
0: मतलब डोड़ो ही बना के।
1: काहे वदे कि अगर मेढ़ पे नहीं लगाएंगे तो बरसात के पानी हो या जल सिंचाई का पानी हो, इससे जल भरा होने से इसकी जड़ें गल सकती हैं और किसान भाइयों को नुकसान हो सकता है।
0: तो भैया ये का पेड़ लगावा जाता, बेहन डाला जाता, कैसे बिया से हो था कछु बताओ।
1: एक जड़ होते है, जड़ का नर्सरी में तैयार करते हैं,
0: दूसरा जड़ कहूं से ले आओ एक बार
1: जी। जैसे पुदीना है और मिंट है।

0: वैसे ही इसकी जड़ें होती हैं। और आजकल टिश्यू कल्चर का टाइम चल रहा है,
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: किसान भाई ऐसे जगह से ले आए जहाँ टिश्यू कल्चर से इसको
1: हाँ
0: उत्पन्न किया जा रहा हो।
1: अच्छा।
0: और अब तक की और इसके लिए अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाना है खेत को अच्छे से, और उसका पीएच जो है 6 से 7 के बीच में होना जरूरी
1: तो
0: है।
1: खेत की तैयारी के बारे में कुछ बताओ यार।
0: जी, पहले किस्मों के बारे में बता देते
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ
0: इसकी
1: प्रजाति।
0: करीब 90 प्रजातियां हैं जो खोजी जा
1: अच्छा
0: चुकी हैं,
1: अच्छा
0: लेकिन
1: अच्छा
0: उनमें से 3 प्रजातियां हैं मुख्य जिसे प्रमुखता से उपयोग में लाया जाता है।
1: अपने यहाँ कौन से प्रजाति ज़्यादा चलन में बाटी में?
0: यहाँ पे जो है SRB 128 जो सबसे अच्छी पाई जाती है, इसमें ग्लूकोसाइड्स की मात्रा 12% होती है, जो
1: अच्छा।
0: इसका कहा जाए कि जो रासायनिक तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये साल भर में 5 कटाई की जाती है इसकी।
1: अच्छा, कटाई भी की जाती है भैया?
0: जी, अब
1: पाती वही काटी जाती है?
0: जी,
1: अच्छा
0: अब
1: अच्छा
0: खेत की तैयारी के बारे में, ये 5 वर्षीय पौधा है, एक बार लगाइए 5 सालों तक इसमें आप उसका उत्पादन लेते रहिए,
1: यानी काट काटत जाते हैं, फिर वो हमें निकलता होता पाती में।
0: निकलता हो जाता है।
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: पहली बार एक बार क्या करेंगे कि जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उसी समय अच्छी गहरी जुताई और
1: जी,
0: प्लस जुताई के साथ साथ 3 टन केचुआ के खाद,
1: बर्मी कंपोस्ट
0: वर्मी
1: लेकर।
0: कंपोस्ट,
1: अच्छा
0: छः
1: अच्छा
0: टन कंपोस्ट खाद, उसके साथ ही साथ 120 किलोग्राम पाम जैविक खाद आता है,
1: अच्छा
0: इनको
1: अच्छा
0: अच्छे से मिला लेना चाहिए। लेकिन किसान भाई एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर उनमें खेत में दीमक का प्रकोप ज़्यादा है तो
1: अच्छा अच्छा
0: दीमक के लिए बचने के लिए 150 से 2 किलोग्राम खली को पीस करके मिला देने
1: नीमी
0: से,
1: खली की।
0: नीम की खली,
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: उससे क्या है कि दीमक से बच सकते हैं,
1: यानी दीमक ना लगे कि
0: दीमक
1: चाहे।
0: ना लगे। अच्छे से तैयारी करने के बाद जो मेड़ बनाएं, करीब 1 से 1.5 फीट ऊंचा मेड़ बंडा जो बनाएं, और उसकी जो चौड़ाई हो करीब 2 फीट हो
1: अच्छा, मेड़ के
0: मेड़ की,
1: जोने पे लगावे के बाद
0: लगाओ कि जोने से दोनों साइड में
1: फैले भैया।
0: हाँ फैल नहीं, दोनों तरफ पौधा लगाना है जिससे
1: अच्छा।
0: वो अच्छे से फैल सके। अब आता है इसमें रोपाई की बात। तो जैसा कि हमने बताया है कि बंडों पे मेढ़ों पे इसकी रोपाई करनी है, तो इससे पौध से पौध की दूरी 6 से 9 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर रखनी है।
1: अच्छा।
0: करीब 1 एकड़ में 30 से 40 हज़ार पौधे
1: लगावा
0: लगाए
1: जाता।
0: जाते हैं।
1: अच्छा।
0: किसान भाई ये चीज़ ध्यान रखें, जब बहुत गर्मी होती है अप्रैल और मई का महीना तब इसकी रोपाई नहीं करते, या जब बहुत सर्दी होती है दिसंबर और जनवरी का महीना, उसको छोड़ करके बाकी पूरे वर्ष इसका रोपाई की जा
1: यानी
0: सके।
1: बहुत गर्मी बहुत ठंडी छोड़ के बाकी बीच में कभी
0: कभी
1: लगाए।
0: वो लगाएं जैसे सितंबर से नवंबर का महीना तथा फरवरी से अप्रैल का महीना सबसे अच्छा माना जाता है।
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: इसमें अब सिंचाई की बात आती है, तो सिंचाई पूरे वर्ष भर की जाती है फसल को। और ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो प्रचलित है, हालांकि स्प्रिंकलर से पुराने जमाने से लेकर के अभी जब से प्रचलन में आया
1: हाँ।
0: किया जाता है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छा होता है। अगर ड्रिप
1: अच्छा,
0: इरिगेशन करें तो
1: टपक
0: अधिक,
1: विधि जो
0: हाँ,
1: होता।
0: टपक सिंचाई से।
1: अच्छा।
0: और साथ ही साथ निराई गुड़ाई जहाँ तक की बात है, इसमें
1: हाँ।
0: किसी भी प्रकार का मशीनरी नहीं यूज करना है,
1: अच्छा।
0: साधारण विधि से खरपतवार नियंत्रण करना है हाथों से, और उसके बाद में किसी भी प्रकार का रासायनिक उपयोग नहीं करना है। अब खाद
1: अच्छा।
0: और उर्वरक की बात है, तो इसमें जो खाद शुरुआत में डाली जाती है उतनी डाली जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे कि जितनी बार कटाई करेंगे हर फसल के बाद,
1: कितना दिन बाद कटाई करे पड़त हो?
0: जो पहली कटाई है रोपाई के 4 महीने बाद की जाती है, लेकिन
1: अच्छा।
0: सबसे जो खास बात है वो यहीं पर है कि 4 महीने बाद कटाई होती है, लेकिन वो भी फूल आने से पहले करना है।
1: अच्छा।
0: अगर फूल आ गया तो हमारा जो उस गुणवत्ता है पत्तियों का वो कम हो जाएगा, और जो हमारा मार्केट वैल्यू है वो भी कम हो
1: यानी
0: जाएगी,
1: मिठास कम हो
0: मिठास
1: जाएगी।
0: कम हो जाएगी, बिकने में अच्छा पैसा नहीं
1: तो
0: मिलेगा।
1: पातिन बिक जाता है कि कुछ बनावे ही
0: नहीं,
1: पड़ता?
0: पाती ही बिकता है, किसान भाई डायरेक्ट पाती बेचते हैं।
1: अच्छा।
0: और एक साल में करीब 5 कटाई की जाती है, प्रथम कटाई 4 महीने के उपरांत,
1: जी।
0: और प्रथम कटाई के बाद 500 किलोग्राम केचुआ का खाद, 30-30 किलोग्राम पाम जैविक और कंपोस्ट खाद दोनों को मिलाना होता है,
1: अच्छा
0: जिससे कि
1: अच्छा
0: उसकी जो शक्ति है, उर्वरा शक्ति बनी रहे और अच्छा हमारा क्रॉप मिले।
1: अच्छा। कोनो रोग व्याध भी लागत भैया
0: नहीं,
1: में?
0: इसमें रोग व्याधि बहुत कम आती हैं, अगर हम ध्यान देते हैं तो इसमें रोग व्याधि की जरूरत बहुत ही कम आने की चांसेज होते हैं।
1: अच्छा। और भैया कौन बात पे विशेष ध्यान दें?
0: अब विशेष ध्यान ये है कि पत्तियों को तोड़िए, तोड़ करके

0: से 4 दिन तक छाए में सुखाना है।
1: अच्छा,
0: जब पूर्णतया इसका नमी रहित हो जाए तो बोरों में भर के बिक्री के लिए ले जा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन दूसरा इसमें एक और भी है कि जो किसान भाई बहुत जागरूक हैं, जिनके पास संसाधन हैं, तो इसका पाउडर बना करके,
1: अच्छा अच्छा
0: पाउडर के रूप में, दूसरा है इसका एक्सट्रैक्ट बना करके, मतलब इसको उसका वो निकाल करके,
1: मैंने उसमें जो रस निकाल, रस निकाल के मशीन हो चाहे,
0: और ज्यादातर जो सबसे ज्यादा किसान भाई हमारे सूखी पत्ती ही बेचते हैं।
1: हाँ, आसान रहा था
0: वो, आसान है। और उपज तक की, जो उपज की बात है, ये जैसा कि हमने पहले बताया कि ये बहुवर्षीय फसल है, एक बार आप लगाइए 5 सालों तक इसकी कटाई करते रहते हैं।
1: कितना हमें लागत लाभ हो जाता है, कुछ के बारे में?
0: देखिए, लागत इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। अब आप बहुवर्षीय है, हाँ, जो भी लागत है आपके एक बार लगेगा पौधे के।
1: अच्छा।
0: और जो आपका खाद है, केचुआ का खाद है, रासायनिक खाद का प्रयोग करना नहीं है बिल्कुल, तो पूरा ये जैविक तरीके से ही इसका खेती की जाती है। अब इसमें अगर अच्छे समय पर इसकी कटाई की जाए, अच्छी किस्म लगाई जाए और समय समय पर इसका रख रखाव ठीक से किया जाए, तो करीब 2 से लेकर 4 टन सूखी पत्ती प्राप्त होती है।
1: बढ़ के 4 बीघा हम भैया,
0: एक साल में।
1: अच्छा,
0: 1 हेक्टेयर में।
1: अच्छा अच्छा।
0: और उसके बाद में क्या है कि एक अगर औसतन देखा जाए, तो औसतन ये है कि करीब 2.5 से 3 क्विंटल जो पत्ता है, 2.5 से 3 टन जो पत्ता है वो प्राप्त होता है एवरेज हर साल।
1: अच्छा अच्छा। तो ये पत्ता बेच के भैया लाभ ले सकते हैं। भैया डॉक्टर अमित कुमार जी, आप आएं और इस स्टीबिया के वैज्ञानिक विधि से खेती कैसे किसान भाई करें, आपका जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे स्टीविया की खेती कैसे करें विषय पर डॉक्टर अमित कुमार मौर्य से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर एसएम सिंह की वार्ता, वर्षा ऋतु में होने वाली आम बीमारियां एवं उनका होम्योपैथिक समाधान।
1: बरसात का मौसम और बढ़ती हुई आर्द्रता बैक्टीरिया और वायरस के विकास के लिए अनुकूल वातावरण होता है, जिससे संक्रमण होते हैं। बरसाती मौसम में अचानक तापमान में परिवर्तन आते हैं, कभी गर्म कभी ठंड कभी आर्द्रता, यह एक ही दिन में होता आता। जहां स्थिर पानी हो, पानी का संचय मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल बन सकता है, इससे मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां होती हैं। दूषित जल पीने से जठराग और पेट की समस्याएं हो जाती हैं, साथ ही साथ वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट्स और फंगस को भी बढ़ाता है। बरसात के मौसम में प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील रहती है, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी सीलन कभी उमस कभी तूफानी मौसम। अतः ऐसी अवस्था में इन परिवर्तनों से सबका शरीर सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, जिससे शरीर का ठंडा या गर्म हो जाना मुंह नाक कान आंख और इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन पर आक्रांत हो जाना सामान्य सी बात है, जिसके कारण सर्दी जुकाम बुखार बदन दर्द और पेट की गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः बरसाती मौसम में कुछ समय के बाद स्वयं भी कुछ रोग ठीक हो जाते हैं। प्राकृतिक परिवर्तनों में होने वाले सामान्य रोग सर्दी जुकाम खांसी बुखार मक्खी मच्छरों से फैलने वाले डायरिया पीलिया डेंगू मलेरिया और नमी और उमस के कारण उत्पन्न होने वाले फंगल रोग दाद दिनाए फोड़ा फुंसी खुजली और पैरासाइटिक रोग जैसे अनेक प्रकार के कृमि जनित संक्रमण होते हैं। परंतु हमेशा ताजा पका हुआ भोजन लें, दूषित स्ट्रीट फूड से बचें तो हमारा बचाव हो सकता है। अच्छी तरीके से हमें हाइड्रेट रहना चाहिए, उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी अवश्य पिएं। शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है। प्रतिरक्षा प्रणाली को हम उचित ढंग से बनाते हैं ताकि रोगों का असर हमारे शरीर पे न हो। पाचन तंत्र पे अधिक बोझ से बचने के लिए हल्का और आसानी से पचने वाला ही भोजन लेना चाहिए। इस बरसात

0: बरसाती मौसम में हाथ धोना, अपने रहने के स्थान को साफ सुथरा रखना, ये सब बचाव के उपाय होते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा इसमें बहुत कारगर होती है। सर्दी जुकाम खांसी बुखार के अनेक आराम देने वाली औषधियाँ उपलब्ध हैं। मौसम के प्रारंभ में ही अगर आर्सेनिक एल्बम के एक खुराक ले ली जाए तो सर्दी जुकाम से बचा जा सकता है। यदि कहीं सीलन है, आर्द्रता है और बादलों की गर्जना से चक्कर आता है तो होम्योपैथिक की ऐसी दवा जो डलका मारा प्रति होम्योपैथ देता है और बहुत अधिक लाभ होता है। लेकिन किसी के भीग जाने के कारण अगर शिकायत हो, शरीर में दर्द हो और उसकी वजह से बड़ी बेचैनी महसूस होती हो तो होम्योपैथी की बहुत प्रचलित दवा रस्ट्रक्स 1000 की एक खुराक लेने से तत्काल प्रभाव होता है। इतना ही नहीं, अगर स्टार्मी वेदर है, कहीं बहुत ठंडा स्टार्म की आवाज से घबराहट उलझन होती है तो हमारे यहाँ एक रोडोडेंड्रॉन मेडिसिन है जो हर प्रकार के चक्कर से बचाती है। पार्थेनियम की जो एलर्जी जिनको होती है उनको हम एंटीपायरिन 200 की औषध देते हैं और उनको काफी स्किन डिजीज बच जाती है। जहाँ पर इसिनोफीलिया बढ़ जाती है एड्रेनलिन देते हैं। अतः एकोनाइट, आर्सेनिक, रस्ट्रक्स, डलका मारा, नेट्रमसल, रोडोडेंड्रॉन आदि होम्योपैथिक की दवाइयाँ, नेट्रमसल बहुत ही कारगर होती हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर एसएम सिंह की वार्ता, वर्षा ऋतु में होने वाली आम बीमारियां एवं उनका होम्योपैथिक समाधान। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे देते हैं हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और रात 10:30 पर कमला बोस का गायन और दिन में 12:15 पर शेष कुमार तिवारी का बांसुरी वादन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर समृद्धि श्रीवास्तव के स्वर में भजन और गीत सुनिएगा। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। 10:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे श्याम लाल बेगाना, दिनेश कुमार और अभयराज यादव और साथी। सुबह 11:00 कार्यक्रम एक ही कलाकार प्रसारित किया जाएगा।

11:30 पर यूथ एक्सप्रेस कार्यक्रम सुनिएगा। दिन में 12:30 पर हेलो फरमाइश प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में महिलाएं सुनेंगी डॉक्टर स्तुति श्रीवास्तव की वार्ता, भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा का क्या हमारी जड़ों में छिपा है भविष्य का रास्ता। दोपहर 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित किया जाएगा। नन्हे मुन्ने सुनेंगे कार्यक्रम नन्ही दुनिया शाम 5:00। युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे कमलेश चंद्र यादव से लोकगीत के अलावा शिवांकी सिंह की वार्ता, राष्ट्र के विकास में भारतीय ग्रामीण महिलाओं की महती भूमिका। रात 8:30 पर अक्षय वट कार्यक्रम में सुनेगा अनिल कुमार श्रीवास्तव की वार्ता, वृद्धावस्था में अकेलेपन की समस्या। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा प्रसारित किया जाएगा रात 9:30 पर। रात 10:00 आप सुनेंगे नाटक टूटा पंख, आलेख है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतम् आपूर्ति श्रृंखलानां शस्त्रीकरणस्य मध्ये विश्वसनीयस्य अर्धचालक विनिर्माणस्य वैश्विक केन्द्र रूपेण प्रतिष्ठापितमस्ति। असौ उक्तवान् यत् विश्वं नूतनानां विश्वसनीय विनिर्माण केन्द्राणाम् अन्वेषणं करोति तथा भारतम् एतस्याः आवश्यकतायाः पूर्तये निरन्तरं सज्जीकरोति। सः प्रतिपादितवान् यत् महत्वपूर्णेषु उद्योगेषु भारतस्य प्रगतिः वैश्विकाः आपूर्ति श्रृंखलाः सुदृढीकरिष्यति तथा विश्वे परिवर्तमानानाम् आपूर्ति श्रृंखला सम्बद्धानाम् आह्वानानां मध्ये नूतनावसराणां सृजनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री ह्यः नवदिल्ल्यां यशो भूमौ सेमिकॉन इण्डिया इत्येतस्य पञ्चम संस्करणस्य उद्घाटनं कुर्वन् एतत् उक्तवान्।
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है, और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: ततः परं कार्यक्रमस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् सेमिकॉन 2.0 इति पारिस्थितिकतन्त्रस्य अन्तर्गतम् अद्यावधि प्रायः 1,00,000 कोटि रूप्यकाणां निवेश सम्बद्धाः प्रतिबद्धताः प्राप्ताः सन्ति। भाजपेति दलेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः 670तमस्य जन्मदिवसस्य उपलक्ष्ये ह्यः मासैक पर्यन्तं प्रवर्तमानस्य राष्ट्रव्यापिनः सेवा संकल्पाभियानस्य शुभारम्भः कृतः। अस्य अभियानस्य मुख्योद्देश्यं जनसेवायां प्रधानमन्त्रिणः प्रतिबद्धतां प्रकाशयितुं तथा जनान् विशेषतः युवकान् सेवाकार्येषु प्रवर्तयितुं प्रोत्साहयितुं च अस्ति। अनेन अभियानेन गुजरात राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण श्रीमोदिनः 1,00,000 वर्षस्य अक्टूबर मासस्य सप्तमे दिनांके शपथ ग्रहणस्य 25 वर्ष पूर्तिरपि स्मर्यते। अभियानम् आगामी मासस्य 17 दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। विदेश मंत्रालयेन पारपत्र संशोधन नियमाः 26/26 इति अधिसूचिताः, येन 80-90% वर्षस्य पारपत्र नियमेषु संशोधनं कृतमस्ति। संशोधनानुसारं 15 वर्षात् न्यून वयस्काय बालकाय प्रदत्तं 36 पृष्ठयुतं साधारण पारपत्रं 5 वर्षपर्यन्तं उतवा तस्य 18 वर्ष वयः प्राप्तिपर्यन्तं एतयोः यत् पूर्वं भवति तत् पर्यन्तं वै

0: भविष्यति। अमेरिका देशे भारतस्य राजदूतः विनय मोहन क्वात्रा उक्तवान् यत् भारतं विश्वस्य शीघ्रतम वर्धमानासु प्रमुखासु अर्थव्यवस्थासु अन्यतमं तथा ऊर्जसः तृतीयः बृहत्तमः उपभोक्ता अस्ति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः थिम्फू नगरे भूटान नरेशेन जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डॉ जयशंकरः उक्तवान् यत् भारत भूटानयोः मध्ये विद्यमानां विशिष्टां मैत्रीं इतोपि सुदृढीकर्तुं भूटान नरेश द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शनं महत्वपूर्णमस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ नवदिल्ल्याम् आयोजिते तृतीये विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय द्वन्द्वे भारतेन अफगानिस्तान दलं 27.1 धावनांकहि पराजित्य त्रिस्पर्धात्मिका श्रृंखलायां सर्वासु तिसृषु स्पर्धासु विजयः अधिगतः इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु पर अपना प्रभाव पुष्ट होता देख उन्हें बताया कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है और मात्र उसी शाप से उनका नाश हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। अतः राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी मुनि एक तनु ने कहा, उपाय तो बहुत हैं किंतु वे कष्ट साध्य हैं। राजा ने एक तनु के चरण पकड़ लिए। तपस्वी बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम पूरी निष्ठा से मेरे भक्त हो गए हो, किंतु योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यदि मैं भोजन बनाऊं तुम परोसो और कोई मुझे जानने ना पावे तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह पूरी तरह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मों से भजन, आइए सुनते हैं केदारनाथ फिल्म का ये भजन अमित त्रिवेदी की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना केदारनाथ फिल्म का ये भजन अमित त्रिवेदी की आवाज थी, संगीत भी अमित त्रिवेदी ने दिया था और रचना थी अमिताभ भट्टाचार्य की। आइए अब सुनते हैं अग्निपथ फिल्म का ये भजन, अजय की आवाज है, संगीत है अजय अतुल का और रचना अमिताभ भट्टाचार्य की।

अभी आपने सुना अग्निपथ फिल्म में अजय को, और अब फिल्म से भजन का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू हुआ सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी से गुजरात के वडनगर तक की सेवा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में हुए विविध आयोजन। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत राज्य भर में जलाए गए दिए। मुख्यमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर मार्जिन मनी ऋण पोर्टल का किया शुभारंभ। योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित किए चेक। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां जारी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिरवा ने महोबा में ईवीएम वेयर हाउस और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी से कल सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री की कर्मभूमि वाराणसी से उनकी जन्मभूमि गुजरात के वडनगर जाने वाली सेवा संकल्प बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 250 बाइकों पर सवार 500 युवा इस यात्रा को पूरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई मिशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।
1: आज भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तमाम यूनिट भारत के अंदर स्थापित करने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है, उसका प्रोडक्शन करना प्रारंभ किया है। भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में काम कर रहा है। भारत का एआई मिशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी के एक हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। रोबोटिक के क्षेत्र में भारत की सफलता नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।
0: कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तकनीक को आम नागरिक की जिंदगी का हिस्सा बनाकर जीवन आसान बनाना ही प्रधानमंत्री का विजन है।
2: कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि हर नागरिक तक बैंक की सुविधा पहुंचेगी, लेकिन यह करिश्मा भी भारत में पहली बार जी किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। यूपीआई से लेन देन यह हो सकता है, इसकी भी किसी ने कल्पना नहीं। अब एक सेकंड में यूपीआई के माध्यम से आप जहां से चाहें दूसरे स्थान पर पैसा भेजना सहज तरीके से भेज सकते। साथियों, मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को बड़े शहरों और दफ्तरों से निकालकर आज आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने का काम किया है।
0: इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों में हर दिशा में अपनी सोच को स्थापित किया है और आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। कार्यक्रम में शामिल हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आज देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। आयोजन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल हुए। इस अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की गई और धाम के पुरोहित, आचार्यों तथा स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री के जनसेवा से राष्ट्र सेवा के 25 वर्षों पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। सेवा संकल्प अभियान के तहत कल शाम राज्य भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश भर में कल शाम को जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और लाभार्थियों ने सार्वजनिक स्थानों, अस्पतालों, घरों और प्रतिष्ठानों पर दीप जलाकर सेवा संकल्प अभियान में हिस्सा लिया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के तहत कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अहिल्याबाई घाट पर 76 बटुकों ने मां गंगा का पूजन किया और मां गंगा को 76 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की गई। लखनऊ में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने वृहद सफाई अभियान शुरू किया। बस्ती जिले में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी ने सेवा सुशासन पखवाड़े की शुरुआत की। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने भी सेवा संकल्प अभियान में हिस्सा लिया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का 25 वर्ष का राजनीतिक सफर देश के विकास और सुशासन से जुड़ा रहा है। सेवा संकल्प अभियान के तहत कल शाम प्रदेश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इस दौरान गोरखपुर में वहां के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल की अगुवाई में कल शाम आशीर्वाद के दिए जलाए गए। एक अन्य कार्यक्रम में वहां के महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने मशाल जलाकर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद नगर निगम की ओर से करीब 5100 दिए जलाए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रस्तुत है MyGov प्लेटफॉर्म को लेकर एक विशेष रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट्स से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
2: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
1: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में विश्वकर्मा स्वरोजगार और स्वदेशी मेला 2026 पर आधारित प्रदर्शनी तथा मार्जिन मनी ऋण पोर्टल का शुभारंभ किया। इसकी शुरुआत विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के दूसरे चरण के तहत की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और टूल किट भी वितरित किए। इससे पहले मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में आयोजित विश्वकर्मा पूजन उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी हस्तशिल्पियों और कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा के रूप में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है।
3: नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सभी हस्तशिल्पी और कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा के रूप में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो भी देश अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को अपने आर्टिजन्स का सम्मान करता है वह आगे बढ़ता है।
0: प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कल महोबा में ईवीएम वेयर हाउस और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करके निर्वाचन की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग का एक प्रमुख उद्देश्य आगामी चुनाव के मतदान दिवस पर मशीनों में होने वाली खराबी की आशंकाओं को कम से कम करना है। मथुरा जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के सियारा गांव में कल शाम बोरिंग करते समय हुए एक विद्युत हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उस समय हुई जब 11,000 वोल्ट की लाइन के संपर्क में आने के कारण बोरिंग मशीन में

0: प्रिंट उतर आया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू हुआ सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी से गुजरात के वडनगर तक की सेवा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में हुए विविध आयोजन। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत राज्य भर में चलाए गए दिए। मुख्यमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर मार्जिन मनी ऋण पोर्टल का किया शुभारंभ। योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित किए चेक। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां जारी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने महोबा में ईवीएम वेयर हाउस और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं कमला बोस का ख्याल गायन राग है नट भैरव।

अभी आप सुन रहे थे कमला बोस का ख्याल गायन, राग था नट भैरव। आपके साथ तबला संगत कर रहे थे अनूप कुमार बैनर्जी और हारमोनियम पर शमशाद अहमद खान। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए UGC नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने इसे अवैध बताया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
2: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल 2 प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
3: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
4: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर

0: चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
4: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था, वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
5: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद, माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था, वहाँ टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
4: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
6: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
4: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
1: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन

यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी।

0: पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ है शशांक कुमार।
1: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशियाई खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
0: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमेरिकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमेरिका की दो टूक, भारत अपने हित खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईटी, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, जेई मेन UGC नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। CCTV की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकानों में ही CCTV अनिवार्य होगा, थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए UGC नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमन अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके चुनाव निशान पर रोक लगा दी है और हरीफ ग्रुपों से कहा है कि वो मगरबी बंगाल जिमनी इंतखाबात के लिए नए नाम और नए चुनाव निशान का इंतखाब करें। गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने के तरमीमी बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की पहली मीटिंग आज होगी। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के जून में कराए गए UGC NET इम्तिहान की हतमी आंसर कीज जारी कर दी हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने बिहार, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खत्ते, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से करारी शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। इंतखाबी कमीशन ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दोनों हरीफ ग्रुपों से कहा है कि वो मगरबी बंगाल में आइंदा होने वाले असेंबली जिमनी चुनाव के दौरान पार्टी का नाम और चुनाव निशान इस्तेमाल न करें। अपने उबूरी हुक्म में कमीशन ने दोनों ग्रुपों से कहा है कि वो आज दिन में 11 बजे तक अपने अपने ग्रुपों के नाम पेश करें ताकि कमीशन उन्हें तस्लीम कर सके। चुनाव कमीशन ने ममता बनर्जी और अरूप रॉय की जेर क्यादत पार्टी के दोनों ग्रुपों के रहनुमाओं के मौकफ की समात के बाद उबूरी हुक्म जारी किया। बाद में कमीशन ने कहा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दो ग्रुप हैं जिनमें से एक की क्यादत ममता बनर्जी और दूसरे की जनाब अरूप रॉय कर रहे हैं और दोनों ही ग्रुप अपने आप को असल पार्टी होने का दावा कर रहे हैं। मगरबी बंगाल में नंदीग्राम और रेगीनगर सीटों के लिए असेंबली जिमनी चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को होना है। गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने के तरमीमी बिल 2026 से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की पहली मीटिंग आज होगी। उम्र दाखिला की वजारत के नुमाइंदे बिल की दफात के बारे में कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने 12 अगस्त को गैर मुल्की अदियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल को मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द करने की मंजूरी दी थी। मस्कूरा बिल में गैर मुल्की अदियात को मुंजबित करने से मुतालिक 2010 के एक्ट में तरमीम की बात कही गई है। इसका मकसद गैर मुल्की अदियात के इस्तेमाल को और ज्यादा शफाफ और जवाबदेह बनाना है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में लोकसभा के 21 मेंबर हैं जिन्हें स्पीकर ने नामजद किया है। इसके अलावा इसमें राज्यसभा के भी 10 अरकान हैं जिन्हें चेयरमैन मौसूफ ने नामजद किया है। लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट संजय जायसवाल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी में शामिल लोकसभा के सरकर्दा अरकान में तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनिका गुरुस्वामी हैं। कमेटी को अपनी रिपोर्ट मौसम सरमा के इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक ऐवान में पेश करना है। दिल्ली से विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सप्लाई चेन को बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर काबिल भरोसा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज करार दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया नए और काबिल भरोसा मैन्युफैक्चरिंग मकामात तलाश रही है और मुल्क इस जरूरत की खातिर मुसलसल खुद को तैयार कर रहा है। उन्होंने उजागर किया कि हम अहम सनतों में भारत की तरक्की आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम करेगी और दुनिया भर में सप्लाई चेन से मुतालिक चैलेंजों के दरमियान नए इम्कानात पैदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कल नई दिल्ली में यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही।
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है। और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी

0: महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के जून में कराए गए UGC NET इम्तिहान की हतमी आंसर कीज जारी कर दी हैं। ये NTA की वेबसाइट UGCNET.NTA.NIC.IN पर दस्तियाब हैं। ये इम्तिहान मुल्क के 272 शहरों में 454 मराकज पर इस महीने की 9 और 10 तारीख को कराया गया था। एजेंसी ने इम्तिहान कराने के ताल्लुक से 16 अगस्त को नोटिस जारी किया था। उम्मीदवार अपने अपने मजामीन की हतमी आंसर कीज देखने के लिए अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। NTA ने सभी उम्मीदवारों को यह सलाह दी है कि वो इम्तिहान से मुतालिक ताज़ा जानकारी के लिए UGC NET वेबसाइट को बाकायदगी से देखते रहें। किसी भी तरह की वजाहत के लिए उम्मीदवार वेबसाइट पर राब्ते के लिए फराहम की गई तफसीलात के जरिए NTA हेल्प डेस्क से रुजू कर सकते हैं। हतमी आंसर कीज का जारी करना UGC NET के इवेलुएशन के अमल में एक अहम कदम है, जिसके जरिए भारतीय यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदों और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अहलियत का तायुन किया जाता है। वजारत खजाना नई दिल्ली में विकसित भारत की जानिब भारत के सफर की माली एयानत पर 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगी, जिसका आगाज आज से हो रहा है। वजारत ने कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़रा खजाना और फाइनेंस सेक्रेटरीज के लिए होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन मुख्तलिफ वज़रा आला और रियासतों के वज़रा खजाना के हमरा कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी अवामी जिंदगी के 25 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। उनका यह सफर अवामी खिदमत के जरिए मुल्क की खिदमत के मंत्र पर मबनी है और यह सिलसिला आज तक जारी है। खिदमत और अच्छी हुकुमरानी के नजरिए से तहरीक पाकर हुकूमत 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के हदफ के लिए मुसलसल कोशां हैं। सबकी शमूलियत वाली तरक्की और समाजी तौर पर बाख्तियार बनाए जाने के अहद के तहत लोगों की जिंदगियों में यकसर तब्दीली आ रही है। इस सिलसिले में आज हम नक्सलिज्म के खात्मे पर एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ के बस्तर खित्ते में नक्सलिज्म के खात्मे के बाद गोलियों की आवाज़ों के बजाय एक बार फिर स्कूल की घंटियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं। बस्तर खित्ते में सिक्योरिटी कैंप शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से जदीद अवामी खिदमात के मराकज़ में बदल गए हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पांडुम बस्तर की बदलती हुई तस्वीर की अक्कासी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो इलाके दहशतज़दा थे वो अब हुनर के लिए मौके पैदा कर रहे हैं।
0: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
2: रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजारत खारजा ने 1980 के पासपोर्ट जाब्तों में तरमीम करते हुए पासपोर्ट से मुतालिक तरमीमी जाब्तों 2026 को नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किया गया 36 सफहात पर मुश्तमिल एक आम पासपोर्ट 5 साल तक या उसकी उम्र 18 साल होने तक जो भी पहले हो काबिल कबूल रहेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में हल्के जंगी तैयारे तेजस फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस ट्विन सीटर ट्रेनर्स और HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारतीय फिजाइया को सौंपेगी। वो पवन हंस लिमिटेड को आइंदा सिलसिले के ध्रुव हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस तकरीब में वजीर दिफा राजनाथ सिंह और शहरी आवाबाजी के वजीर राममोहन नायडू शिरकत करेंगे। वजारत दिफा ने कहा है कि इन प्लेटफॉर्म्स को शामिल किया जाना अंदरून मुल्क सलाहियतों के इस्तेहकाम और गैर मुल्की जराए पर इन्हिसार को कम करने की जानिब एक और कदम है। दिफाई अमले के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने रूस के अपने 3 रोजा सरकारी दौरे के तहत रूस की जमीनी अफवाज के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस राब्ते में फौजी

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सभी श्रोताओं को सुबह का नमस्कार। हेलो श्रोताओं, कैसे हैं आप? जाहिर सी बात है अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं आपकी रेडियो दोस्त सोनम लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय की बात करेंगे जो आज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। मोबाइल फोन, टीवी, कंप्यूटर और लैपटॉप, इनके बिना आज की ज़िंदगी की कल्पना करना मुश्किल लगता है। पढ़ाई हो, नौकरी हो, मनोरंजन हो या दोस्तों और परिवार से बातचीत, हर जगह स्क्रीन हमारे साथ है। श्रोताओं, आज का हमारा जो विषय है स्क्रीन टाइम से बढ़ता तनाव। आज बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, युवा सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म पर समय बिताते हैं, नौकरी करने वाले लोग कंप्यूटर पर घंटों काम करते हैं और घर के बड़े भी मोबाइल पर समाचार, मनोरंजन या बातचीत में काफ़ी समय बिता रहे हैं। यानी स्क्रीन अपने आप में गलत चीज़ नहीं है, असली बात यह है कि उसका इस्तेमाल कितनी देर और किस तरह करते हैं हम। जब स्क्रीन इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे और उसकी वजह से हमारी नींद, पढ़ाई, काम, परिवार, शारीरिक गतिविधियां या आराम प्रभावित होने लगे, तो हमें अपने स्क्रीन इस्तेमाल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो श्रोताओं, आपको सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा गीत और लौटते हैं गाने के बाद अपने कार्यक्रम में।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं स्क्रीन टाइम की। लगातार स्क्रीन पर बने रहने से हमारा दिमाग लगातार नई जानकारी, संदेश, वीडियो और सूचनाओं के संपर्क में रहता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर कई बार हम अपनी जिंदगी की तुलना करने लगते हैं। किसी की नई नौकरी, किसी की यात्रा, किसी की चमकदार तस्वीर देखकर मन में सवाल उठ सकता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं। यही तुलना धीरे धीरे चिंता या तनाव की भावना को बढ़ा सकती है। इसके अलावा लगातार आने वाले नोटिफिकेशन भी हमारा ध्यान भटका सकते हैं। लोग रात को सोने से पहले मोबाइल देखते हैं और फिर एक वीडियो से दूसरा वीडियो, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट को देखते हुए काफ़ी देर बिता देते हैं। नतीजा, सोने का समय पीछे खिसक जाता है और जब नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान में परेशानी महसूस होती है। सोशल मीडिया ने दुनिया को हमारे हाथ में ला दिया है। हम कुछ सेकंड्स में देश दुनिया की खबरें देख सकते हैं और दूर बैठे लोगों से जुड़ सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर चीज़ जिंदगी की पूरी तस्वीर नहीं होती। हमने कितनी देर स्क्रीन पर समय बिताया है, इस बात का हमें खास ध्यान रखना होगा, तभी हम तनाव से मुक्त हो पाएंगे। स्क्रीन से दूर रहने के लिए आप किताबें पढ़ें, अपने दोस्तों से मिलें, अपने घर परिवार के साथ समय बिताएं, घूमने टहलने जाएं। इससे आपको अच्छा भी लगेगा और आपका स्क्रीन से दूर रहना भी संभव हो पाएगा।

स्क्रीन हमारी सुविधा है, जिंदगी नहीं। जब स्क्रीन का समय बढ़ता है तो तनाव भी धीरे धीरे बढ़ सकता है। आइए कुछ पल मोबाइल से दूर होकर खुद के करीब आएं, थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करें, अपनों के साथ समय बढ़ाएं और मन को सुकून दें। तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाए, तनावपूर्ण नहीं। श्रोताओं, इन्हीं शब्दों के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर। तो श्रोताओं, आपसे कल मिलेंगे नए विषय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
3: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
2: अरे क्यों?
3: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
2: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
4: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
2: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
3: दे रे भाई।
5: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर की आवाज में अजब प्रेम की गजब कहानी से ये गीत, जिसे लिखा था इरशाद कामिल ने और सुरों से सजाया था प्रीतम। अब लीजिए सुनिए दूसरा गीत आनंद राजानंद की आवाज में फिल्म वेलकम से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म वेलकम का ये गीत, जिसके गीतकार और संगीतकार थे आनंद राज आनंद। अब सुनिए फिल्म 10 का केके की आवाज में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म 10 से केके की आवाज में ये गीत। गीतकार थे पंछी जलोनवी और संगीतकार थे विशाल शेखर। तो ये था हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दूसरे कार्यक्रम।

0: आपसे बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आपसे थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मुजफ्फरनगर और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मुजफ्फरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रणवीर सिंह सैनी का।
2: मुजफ्फरनगर जिले में बीते माह भारी बारिश रही। गंगा, सोलानी नदी, काली नदी और हिंड नदी के किनारों के गांव में कुछ स्थानों पर बाढ़ की स्थिति रही। जिला प्रशासन यहां पूरी तरह चौकन्ना रहा और बाढ़ के कारण कोई जनहानि नहीं हुई, न ही अत्यधिक नुकसान हुआ है। मुजफ्फरनगर जिले की मुख्य फसल गन्ना है और गन्ने की फसल पककर तैयार हो रही है। 1 अक्टूबर से कोल्हुओं में गन्ने की पेराई प्रारंभ हो जाएगी। चीनी मिलों ने भी गन्ने की पेराई को लेकर चीनी मिलों में मरम्मत आदि का कार्य प्रारंभ कर दिया है। मुजफ्फरनगर के चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा लगभग 8,14,00,000 की लागत से नवनिर्मित भारोत्तोलन हॉल, वॉलीबॉल कोर्ट एवं बैडमिंटन क्रीड़ा हॉल के जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है। 12,55,00,000 की लागत से कराए जा रहे सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का निर्माण का कार्य भी चल रहा है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जनपद बिजनौर की थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट टीम के सदस्यों के साथ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न हो तथा कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि जनपद के खिलाड़ियों को आधुनिक हॉल एवं सिंथेटिक ट्रैक की सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। श्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं एवं खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं के उपलब्ध होने से स्थानीय खिलाड़ियों को अपने अभ्यास एवं प्रशिक्षण के लिए बेहतर संसाधन मिलेंगे तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्य समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से पूर्ण कराए जाएं, जिससे मुजफ्फरनगर के खिलाड़ियों को इन आधुनिक खेल सुविधाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। मुजफ्फरनगर में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत ईडी की टीमों ने मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और फरीदाबाद में कुल 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है। इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई मुजफ्फरनगर में देखने को मिली। 5 अलग अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की गई। मुजफ्फरनगर जनपद की फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने न्याय का एक ऐसा इतिहास लिख दिया है। न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर एक बार फिर से न्याय की गाथा लिखकर चर्चाओं में है। इस बार उन्होंने मुजफ्फरनगर जनपद में 9 संगीन मामलों में 22 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाने का काम किया है। मुजफ्फरनगर में पुरकाजी विधानसभा और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के गांव रोहाणा स्थित रेलवे स्टेशन पर कोविड काल से किसी भी ट्रेन का ठहराव नहीं था। क्षेत्रवासी लंबे समय से इसकी मांग करते आ रहे थे, जिसको लेकर क्षेत्रीय विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और बिजनौर सांसद चंदन चौहान के माध्यम से मांग पत्र भी रेल मंत्री तक कई बार पहुंचाया। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से भी मुलाकात की गई। जयंत चौधरी के माध्यम से कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और सांसद चंदन चौहान को यह सफलता मिली और दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस जो हरिद्वार से चलकर देवबंद के रास्ते रोहाणा पहुंची और जहां उसका ठहरा हुआ। रेलवे स्टेशन पर पहले से ही मौजूद कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, सांसद चंदन चौहान और उनके समर्थकों ने ट्रेन का स्वागत किया। नेपाल में आई भीषण आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप की पहल पर चलाए गए नेपाल हेल्पिंग हैंड अभियान के तहत एकत्र खाद्य सामग्री को टाउन हॉल मैदान से नेपाल के लिए रवाना किया गया। पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने खाद्य सामग्री से भरे वाहन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने अभियान में सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार जताया और कहा कि संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की सहायता करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे में मुजफ्फरनगर से सहायता सामग्री भेजने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप द्वारा चलाए गए अभियान को विभिन्न वर्गों का व्यापक समर्थन मिला। नगर पालिका परिषद के सभासदों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संगठनों ने भी अभियान में बढ़ चढ़ कर भागीदारी की। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र सहित जनपद की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पिछले 9 वर्षों में लगभग 300 करोड़ के विभिन्न विकास कार्य कराए गए हैं। इन कार्यों में नए विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण, क्षमता वृद्धि, नई विद्युत लाइनों का निर्माण, नए विद्युत वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। 78,82,00,000 की लागत से 132/33 KV विद्युत उपकेंद्र सुजड़ू एवं संबंधित 132 KV लाइन का निर्माण हुआ। 62,13,00,000 की लागत

0: केवी विद्युत उपकेंद्र बधाईकला का निर्माण कराया गया। दीनदयाल योजना के अंतर्गत 50 नए विद्युत ट्रांसफार्मरों की स्थापना की गई, जिस पर लगभग 1.9 करोड़ की लागत आई। मुजफ्फरनगर के ग्राम दूधली में स्थित ऐतिहासिक एवं प्राचीन जहारवीर गोगा महाड़ी पर 3 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन हुआ। शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर उन्होंने जहारवीर गोगा जी की महाड़ी पर विधिवत दर्शन एवं पूजन कर क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली, उत्तम स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना की। ऐतिहासिक मेले में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान सहित कई राज्यों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। श्रद्धालु गोगा महाड़ी पर प्रसाद चढ़ाकर अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तथा परिवार एवं समाज के सुख शांति की कामना करते हैं।
1: मुजफ्फरनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश सिंघल का।
2: हाथरस जनपद के इतिहास, पौराणिक विरासत एवं 115वें श्री दाऊजी महाराज लक्की मेले की भव्यता को अब सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी अतुल बस ने कलेक्टर सभागार में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के साथ बैठक कर जनपद हाथरस के इतिहास, पौराणिक विरासत, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर तथा 17 तारीख को लगने वाले 115वें राजकीय श्री दाऊजी महाराज लक्की मेले की विशेषताओं को व्यापक स्तर पर प्रचारित प्रसारित किए जाने के संबंध में विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि हाथरस का इतिहास, यहाँ की पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाएं, सांस्कृतिक विरासत और श्री दाऊजी महाराज का प्रसिद्ध लक्की मेला जनपद की विशिष्ट पहचान है। इनमें जुड़ी अनसुनी एवं रोचक कहानियों को आधुनिक डिजिटल माध्यमों के जरिए देश दुनिया तक पहुंचाने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने सभी इन्फ्लुएंस से अपील की कि वे जनपद की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत पर उच्च गुणवत्ता की तथ्यपरक और आकर्षक वीडियो तैयार कर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। हाथरस जिले में ईवीएम एवं वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग MLC का कार्य संपन्न हुआ। विधानसभा चुनाव 2027 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल बस तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीति दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग निर्धारित प्रोटोकॉल एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप प्रारंभ की गई। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत जिला गंगा समिति हाथरस द्वारा आज कृषि विज्ञान केंद्र सिकंदर राव में किसानों के लिए प्राकृतिक खेती विषय कार्यशाला एवं कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यशाला में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक खेती की विभिन्न पद्धतियां और उनसे लाभों तथा रासायनिक उर्वरकों एवं अन्य रसायनों पर निर्भरता कम करने के संबंध में सरल एवं व्यवहारिक जानकारी दी। किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाकर मिट्टी एवं जल स्रोतों के संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के योगदान देने के लिए जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के निरंतर सेवा काल की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने तथा प्रत्येक नागरिक को विकसित भारत 2047 के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़े जाने के संबंध में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर सभागार में बैठक करते हुए जिलाधिकारी अतुल वस्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित दायित्वों का निर्वहन शासन की मंशा के अनुरूप करने के निर्देश दिए। 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ के अवसर पर विकास भवन सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सदस्य राज्य महिला आयोग रेणुकौर एवं मुख्य विकास अधिकारी PN दीक्षित ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक परियोजना से एक एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, जिन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत अपनी परियोजना में सर्वाधिक फार्म भरवाए को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने के साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी हाथरस ग्रामीण सोनी कुमारी ए बाल विकास परियोजना अधिकारी सिकंदराव कल्पना दुबे को जिले के प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत सर्वाधिक फार्म भरवाने पर सम्मानित किया गया। आगामी त्योहारों विशेषकर दीपावली के दृष्टिगत जनपद में पटाखों के सुरक्षित भंडारण, परवान एवं बिक्री की व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी अतुल बस ने पुलिस अधीक्षक चंद्रजीव सिन्हा के साथ पटाखा गोदाम हाथरस का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने गोदाम में पटाखों के भंडार

0: करंट की व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा उपकरण, फायर हाइड्रेट, पानी की टंकी, प्रेशर पंप तथा अन्य सुरक्षा संसाधनों की बारीकी से निरीक्षण किया।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल समाप्त हुई।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेशे खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: मुहिब्बा ने उर्दू के बाजौक सामईन का उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है। मैं आपका मेजबान शमसुल आरफीन सलाम कबूल फरमाए। सामईन, एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हुए हैं महफिल मुशायरा। आज की इस खूबसूरत महफिल में हमारे साथ शिरकत करने वाले शोरा इकराम हैं मोहतरम जनाब राम प्रकाश बेखुद साहब, मोहतरम जनाब कारी आजम साहब जहांगीर आबादी और मोहतरम जनाब मंजर यासीन साहब। आप तीनों का हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है। सामईन, आइए अब इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए मैं मोहतरम जनाब मंजर यासीन साहब को इस शेर से दावत देता हूँ कि बिस्मिल का खुदा हाफिज, कातिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज।
2: क्या कहने,
1: आ जाओ जो महफिल में एक जान सी आ जाए, उठ जाओ जो महफिल से महफिल का खुदा हाफिज। मोहतरम जनाब मंजर यासीन साहब माइक पर।
2: मैं एक मतलब और एक शेर पेश कर रहा हूँ।
1: जी अता करें मोहतरम।
2: जब से नजरें फिरी आपकी जिंदगी दर्द सर हो गई।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: बहुत खूब। जब से नजर

0: दोपहर हो गई। सच्चाई सरेदार जो हम देख रहे हैं,
1: सच्चाई सरेदार जो हम देख रहे हैं।

0: करम देख रहे
1: वाह वाह वाह वाह सब अहले सियासत
0: सब
1: का
0: अहले सियासत का करम देख रहे हैं। शेर समाज फरमाइए
1: जी अता करें मोहतरम
0: कि बिखरी हुई तहजीब के मातम का तमाशा, मातम का तमाशा, चुपचाप खड़े अहले कलम देख रहे
1: हैं। क्या सदाकत बयान कर दी भाई, बहुत ही खूब
0: खड़े अहले कलम देख रहे हैं। दीवानगी मंजिल की तरफ लेके चली है,
1: मंजिल की तरफ लेके चली है,
0: लेके चली है। दीवाने मेरे नक्श कदम देख रहे हैं,
1: दीवाने मेरे नक्श कदम देख रहे हैं, बहुत ही खूब
0: कदम देख रहे हैं। उन पर भी तेरी नजर

0: मिले सबसे सरे बजम व मंजर,
1: वाह हंस के मिले सबसे वो
0: सरे बजम व मंजर, हंस हंस के मिले सबसे सरे बजम व मंजर, सरे बजम व मंजर, लेकिन वो मेरी समत ही कम देख रहे
1: क्या बहुत खूब है, लेकिन वो मेरी समत ही कम देख रहे हैं,
0: समत ही कम देख रहे हैं, बिखरी

0: शाह चुपचाप खड़े अहले कलम देख रहे हैं। बहुत
1: वाह, बहुत ही खूब। सामिन, ये थे जनाब मंजर यासीन साहब, जिनके कलाम से आप हजरात लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अब आइए इसके बाद मैं मोहतरम जनाब राम प्रकाश बेखुद साहब को उन्हीं के शेर से दावत देता हूँ कि हर तरफ जाले थे बिल थे घोंसले छप्पर में थे, हर तरफ जाले थे बिल थे घोंसले छप्पर में थे, जाने कितने घर मेरे उस एक कच्चे घर में थे। मोहतरम राम प्रकाश बेखुद साहब माइक पर।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, चंद अशार पेश कर
1: जी अदा करें।
2: अर्ज करता हूँ कि तमाम कैसे हुआ जीस्त का सफर देखो।
1: वाह, तमाम कैसे हुआ जीस्त का सफर देखो।
2: तमाम कैसे हुआ जीस्त का सफर देखो, शिकस्ता पाँव न देखो बुलंद सर देखो।
1: शिकस्ता पाँव न देखो बुलंद सर।
2: तमाम कैसे हुआ
1: बहुत खूब
2: जीस्त का सफर देखो, शिकस्ता पाँव न देखो बुलंद सर देखो। अब शेर सुने खास तौर से
1: जी, अता करें
2: कि शिकस्ता पाँव न देखो बुलंद सर देखो, हवा चराग बुझाती नहीं जलाती है।
1: हवा चराग बुझाती नहीं जलाती है।
2: हवा चराग बुझाती नहीं जलाती है, यकीन आए तो सांसों को रोक कर देखो।
1: वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त शेर है भाई, बहुत ही खूब।
2: हवा चराग बुझाती नहीं जलाती है, यकीन आए तो सांसों को रोक कर देखो। और ये आखिरी शेर के इसी को कहते हैं दीवानगी की हद बेखुद, वो दिल के पास रहे तुम इधर उधर देखो।
1: बहुत वो दिल के पास रहे तुम इधर उधर देखो, बहुत
2: इसी को कहते हैं दीवानगी की हद बेखुद, वो दिल के पास रहे तुम इधर उधर देखो। और एक मतलब और एक शेर और
1: जी मतलब
2: पढ़ता हूँ कि बेगरज बेसबब,
1: बेगरज बेसबब
2: नहीं मिलते,
1: नहीं मिलते
2: पहले मिलते थे अब नहीं
1: मिलते। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
2: कोई अपना कहे तो मिलते हैं,
1: कोई अपना कहे तो मिलते हैं।
2: इस मिसरे को खास तौर से दोहराने की जरूरत है, कोई अपना कहे
1: तो मिलते हैं,
2: तो मिलते हैं, गैर कहने में लब नहीं मिलते,
1: नहीं मिलते गैर कहने में। वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
2: अर्ज किया है कि मोहब्बत के निशान भी दूर तक पाए नहीं जाते,
1: मोहब्बत के निशान भी दूर तक पाए नहीं जाते,
2: मोहब्बत के निशान भी दूर तक पाए नहीं जाते, यहाँ तो गैर क्या अपने भी अपनाए नहीं जाते।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, यहाँ तो गैर
2: मोहब्बत के निशान भी दूर तक पाए नहीं जाते, यहाँ तो गैर क्या अपने भी अपनाए नहीं जाते। ये दुनिया जीते जी क्या मर के भी मिलने नहीं देती।
1: वाह,
2: कभी एक कब्र में दो लोग दफनाए नहीं
1: दफनाए नहीं जाते। वाह वाह वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त शेर है।
2: प्रिय गजल के चंद अशार पेश करके जहमतें तमाम करता हूँ कि बने हुए हैं जो दुश्मन ये जान के आंसू,
1: बने हुए हैं ये दुश्मन,
2: बने हुए हैं जो दुश्मन
1: ये
2: जान के आंसू, न जाने आए हैं क्या दिल में ठान के आंसू।
1: वाह,
2: के लहू किसी को नजर इसलिए नहीं आता,
3: लहू किसी को नजर इसलिए
1: नहीं आता,
2: लहू किसी को नजर इसलिए नहीं आता, बहा रहा हूँ मैं पलकों से छान के आंसू।
1: वाह वाह वाह वाह, मुझे गालिब साहब याद आ रहे, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। बहुत ही खूब।
2: लहू किसी को नजर इसलिए नहीं आता, बहा रहा हूँ मैं पलकों से छान के आंसू, ये आबशार की सूरत जो बहते रहते हैं।
1: वाह,
2: ये आबशार की सूरत
3: जो बहते रहते
2: हैं, पिघलती बर्फ है या है चट्टान के आंसू,
1: पिघलते बर्फ है या है चट्टान के आंसू। वाह,
2: आबशार की सूरत जो बहते रहते हैं, पिघलती बर्फ है या है चट्टान के आंसू, पिघलती बर्फ है या है चट्टान के आंसू। ये भी शेर के अगर समझ लें तो हम मुस्कुरा ना पाए कभी।
1: अगर समझ लें तो हम मुस्कुरा ना पाए,
2: अगर समझ लें तो हम मुस्कुरा ना पाए कभी, जो बोलते हैं किसी बेजुबान के आंसू।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या
2: अगर समझ

0: तो हम मुस्कुरा न पाए कभी।
1: वाह वाह वाह।
0: जो बोलते हैं किसी बेजबान के आंसू, और आखिरी शेर के उड़ा रहे हैं जो नींदे गरीब की बेखुद।
1: हाँ, उड़ा रहे हैं जो नींदे गरीब की बेखुद।
0: उड़ा रहे हैं जो नींदे गरीब की बेखुद, टपकती छत है के उसके मकान के आंसू।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत ही खूब।
0: मतला और दो तीन शेर पेश कर देता हूँ कि हर तरफ जाले थे, बिल थे, घोंसले छप्पर में थे।
1: वाह।
0: हर तरफ जाले थे, बिल थे, घोंसले छप्पर में थे, जाने कितने घर मेरे उसे कच्चे
1: घर में थे। वाह वाह।
0: दस्ते शहजादी से नाजुक कम न थे दस्ते कनीज।
1: वाह।
0: दस्ते शहजादी से नाजुक कम न थे दस्ते कनीज, एक में मेहंदी लगी थी एक सने गोबर में थे।
1: वाह वाह वाह वाह वाह। एक में मेहंदी लगे थे एक सने गोबर में थे।
0: और आखिरी एक शेर और एक मक्ता के हश्र में हर आदमी एक बार सोचेगा जरूर।
1: हश्र में
0: हर आदमी
1: एक बार सोचेगा
0: जरूर, मर के हम महशर में हैं या जीते जी महशर में थे।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: मर के हम महशर में
1: हैं
0: या जीते जी महशर में थे। आजकल तो आदमी में आदमी मिलता नहीं, पहले सुनते हैं कि बेखुद देवता
1: पत्थर में थे। वाह वाह।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वाह वाह वाह वाह। सामईन, ये थे जनाब मोहतरम राम प्रकाश बेखुद साहब, जिनके कलाम से ये महफिल अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। अब आइए इस प्रोग्राम के आखिर में मैं मोहतरम जनाब कारी आजम साहब को इस शेर से दावत देता हूं कि किसी की देखकर दौलत गुलामी हम नहीं करते। किसी की देखकर दौलत गुलामी हम नहीं करते, नशे में चूर लोगों से कलामी हम नहीं करते। और तकबर से जो इतराते हो दौलत देखकर अपनी, तकबर करने वालों को सलामी हम नहीं करते। मोहतरम कारी आजम साहब माइक पर।
2: आज तक जारी लबों पर तज़किरे ऐसे भी हैं। आज तक जारी लबों पर तज़किरे ऐसे भी हैं, दिल को रोशन कर रहे हैं सिलसिले ऐसे भी हैं। आज तक जारी लबों पर तज़किरे ऐसे भी हैं, फख्र से कुर्बान हो जाते हैं तेरी आन पर।
1: वाह। फख्र से कुर्बान हो जाते हैं।

0: भी
1: जमीन तेरे लाडले एफसी भी
0: जारी लबों पर तज़किरे से भी हैं। और गजल का मतलब
1: जी अता करें मतलब
0: समाज फरमाए अब समझ में ये बात आई है
1: समझ में ये बात आई है।

0: भाई बहुत ही
1: मेरे मौला तेरी दुहाई है। और शिमला जाओ
0: जी, यथा करे
1: कि झूठ कहने पर क्यों हो आमादा।
0: अरे वाह, क्या मिस्र है।
1: झूठ

0: और ये भी शेर देखें,
1: हम अतन गोश मोहतरम,
0: क्यों उठाते हो अब तो सोने दो,
1: क्यों उठाते हो अब तो सोने दो,
0: क्यों

0: क्या शेर है भाई साहब, बहुत ही
1: खूब। के नींद आई है
0: बहुत ही खूब।
1: और पूछ

0: जान लेने को मुफलिसी मेरे घर
1: में आई है।
0: यकीनन सबरी ही होता है,
1: अब समझ में बात आई है। और मक्ता भी मुला जाओ
0: जी, अता करें
1: कौन शोला फिशा है आजम,
0: कौन शोला फिशा है।

0: कहता है
1: कि टपकता है तेरे गम में जो मेरी चश्मे पूर्णम से,
0: टपकता है तेरे गम में जो
1: टपक

0: آصف اقبال کی۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان شمس العارفین کو دیں اجازت۔ آداب۔
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं समृद्धि श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये भजन।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम

0: बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल दो प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड और ओडिशा में 7 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती कार्रवाई जारी है। ईडी के मुताबिक ये कार्रवाई बैंक के सरायकेला शाखा में कथित बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी की जांच के तहत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देंगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। भारत ने फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें अगले सप्ताह अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने पिछले वर्ष भी वीजा नहीं मिलने के बाद वीडियो के जरिए संबोधन किया था। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दिल्ली में भी आज बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। एशियन गेम्स 2026 में आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम मेजबान जापान के खिलाफ पहली बार खेलेगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला जापान के कुरोगी एथलेटिक पार्क में खेला जाएगा। भारत की टीमें आज सॉफ्ट टेनिस और टेक बॉल में भी मुकाबले खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। आइए सुनते हैं डॉक्टर मुकेश उपाध्याय से नेहा गुप्ता।

0: श्रोता नमस्कार, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ प्रयाग। पिछले दो एपिसोड में हमारे साथ रहे हैं डॉक्टर मुकेश। आप NCZCC में उपनिदेशक के पद पर तैनात हैं और श्रोताओं, हमने आपसे जाना थिएटर के बारे में, थिएटर की जो टेक्निकलिटीज हैं उनके बारे में, और हमारे साथ अभय जी भी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का।
1: जी धन्यवाद।
0: अभय जी, एक बात जो बहुत सारे लोगों में कॉमन है और उसका जो उपाय है वो मुकेश जी के पास है। मन में थोड़ा वो हुआ ना, बिजली सी कौन थी, क्या है जो मेरे ही पास है। बहुत सारे लोगों को नॉलेज तो है, जीवन में बहुत कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं, लेकिन एक शाइनेस है
1: जी।
0: वो इतना शर्माते हैं या भय में रहते हैं कि जैसे ही वो स्टेज पर जाते हैं या फिर स्टेज पर नहीं भी जाते हैं, क्लासरूम्स में कुछ कहने से वो घबराते हैं, जो आता है वो भी भूल जाते हैं। और आप तो शिक्षक रहे हैं थिएटर के।
1: ऐसा है कि लगभग सभी बच्चे ऐसा पहली बार जब किसी को देखते हैं तो एक वो खुल नहीं पाते
0: जी।
1: तो थिएटर की वर्कशॉप होती है तो उसमें हम प्रयास करते हैं कि बच्चों को उस तरीके से उनको हम नर्चर करें कि जिसमें बच्चा अपनी बात कहने से घबराए नहीं। कई बार होता है कि उसको ये डर होता है कि सामने वाला हमें डांटेगा या हम ऐसे कुछ करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उसके मन में चलती रहती हैं। तो एक तो पहले कि जब मंच पे आए तो एक बार खुले दिल से आपको जो बोलना है वो आप बोलो, ठीक है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपके अंदर जो अभी तक बातें छुपी हुई हैं, जो आप कहना चाहते हो अपने पिता से, अपने शिक्षक से, अपने दोस्तों से, आपने अभी तक नहीं कही तो आप सारी बातें बोलिए।
0: लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, अभी थोड़ा कम होता है। पहले व्हेन आई वाज स्टैंडिंग टू स्पीक इन माय स्कूल डेज, तो होता क्या था कि किसी को देख लिया और लाइन भूल गए। अब तो वो याद ही ना आए, लोग चाहे जितनी मर्जी इनकरेज कर डाले लेकिन वो लाइन याद नहीं आई, तो फिर क्या करें। उस समय तो मुझे कुछ सॉल्यूशन ही नहीं पता था।
1: क्या है कि जब हम ऐसे वर्कशॉप्स करते हैं तो उसका यही मेन मोटो होता है कि बच्चों को जब एक समूह में लेके आते हैं तो वो कुछ उसमें ऐसे गेम्स होते हैं, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस होती हैं जिसको हम जब कराते हैं तो बच्चे धीरे धीरे उसमें खुलने का प्रयास करते हैं, आपस में भी और शिक्षक से भी जो सिखा रहा होता है। क्योंकि बच्चों के अंदर जितनी क्रिएटिविटी है, जितनी रचनात्मकता है, वो बच्चों के अंदर कूट कूट के भरी है।
0: मतलब जितनी प्रैक्टिस होगी छोटे बड़े मंचों पर, जगहों पर, दो तीन लोगों के सामने, वो करते रहना है।
1: देखिए शुरुआत में ऐसा क्या होता है कि मैंने जैसे बताया कि कुछ एक्सरसाइजेस हैं, कुछ गेम्स हैं जिसको हम करेंगे तो मतलब कभी होता है ट्रस्ट गेम होता है, बच्चे एक दूसरे पर उस टीम में ट्रस्ट करना सीख जाएं, कुछ ऐसा होता है, इमोशंस के गेम्स होते हैं, रस के कुछ गेम्स होते हैं, जैसे नौरस की बात की हमने तो रस को हम बच्चों को बोलते हैं कि ये रस है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ म्यूजिक पे कुछ उनकी वॉक्स होती हैं, कुछ काउंटिंग पे वॉक्स होती हैं। तो इस तरह करके जब बच्चे करते हैं कुछ उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो वो स्वयं जाते हैं बच्चे, जैसे छोटे बच्चे तो नहीं पर थोड़े से बड़े बच्चे जाते हैं तो जब वो मार्केट में घूमते हैं तो ऑब्जर्वेशंस करते हैं बहुत सारे कि जो करेक्टर्स उनको दिख गया कोई तो उसको देखा उन्होंने और हूबहू अगले दिन आके वो प्रयास करते हैं कि वैसा ही ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने देखा उस करेक्टर के रूप में वो आके यहाँ पे पोर्ट्रे करें, मतलब उसकी प्रस्तुति करें।
0: यानी अभी जी इन्वॉल्वमेंट भी है, इससे उत्तर मिल रहे हैं कि जिन बच्चों के साथ ऐसा उनको और इन्वॉल्व किया जाए
1: जी
0: और अभ्यास
2: इन्वॉल्व किया जाए। क्योंकि देखिए मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा जो हम लोगों के अंदर है, मुझे मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा है कि एक रहता है गलती कर देने का डर कि मैं कहीं ऐसा ना बोल दूं कि मुकेश जी हंसने लगे कह रहे इनको इतना भी नहीं आता, ये डर जो है बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर भी बहुत ज्यादा होता है। कि तो ये गलती कर देने का डर मुझे लगता है कि आपने जैसे बताया कि अभ्यास से ही निकाला जा सकता है।
1: देखिए गलती तो हम भी करते हैं, अभी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर उस चीज को बैठा लेना मन में कि हम गलती करके, क्योंकि गलती करने से हम सीखते हैं। कई बार जब मान लीजिए, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई फेल हो गया तो वो फेल होके मतलब ये नहीं कि वो उस लायक नहीं है, उसने अचीवमेंट एक हासिल की, मुझे लगता है कि वो फेल हुआ तो वो ज्यादा अभी और मेहनत करेगा और मतलब सीखने की प्रक्रिया उसमें चल रही है
0: जी,
1: उसको हम अंत ना मान लें फेल होने पे।
0: बिल्कुल, और ये बात कितनी बढ़िया से निकल के आ रही है, किसी बात को मन में बैठाने से अच्छा उसको चला दें।
2: चलिए हम और गलती नहीं करते हैं, हम श्रोताओं को सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत
1: जी,
2: तो आप पसंद बताइए अपनी।
1: चुरा के दिल मेरा,
0: सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, अभी हम लोगों ने गीत सुना। अक्षय कुमार जी पर ये गाना फिल्माया गया था और शिल्पा शेट्टी जी भी हैं। उस समय लोग इनको खूब पसंद करते रहे
1: बिल्कुल अच्छी
0: हैं,
1: जोड़ी थी ये काफी।
0: बहुत सुंदर जोड़ी थी। मैं जानना चाहूंगी कि आपका फेवरेट एक्टर अभिनय के क्षेत्र में कौन है, जिसको आप देखते हैं तो लगता है यस ही इज ही एक्चुअली।
1: पता नहीं, ये तो मैं आज तक मैं सोच नहीं पाया। ये मेरे अंदर अभी एक कमी मानूं या क्या है कि मैं अभी तक किसी ऐसे निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाया कि मैं
0: जी
1: किसी को फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस बोल पाऊं। पर मेरा ये है कि सबको देखते रहो और सबसे कुछ ना कुछ सीखते रहो।
0: तो कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद आता रहा है?
1: राज कपूर जी,
0: राज कपूर जी, कौन सी फिल्म उनकी अच्छी लगी आपको,
1: मेरा नाम जोकर,
0: क्यों अच्छी लगी?
1: मतलब उस समय छोटे ही थे वो, और उसमें जो बचपन का किरदार था, फिर धीरे धीरे वो कैसे इनोसेंस है उस किरदार में, वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और वो है भी, उनमें काफ़ी कैपेबिलिटी है, और मतलब मेरे हिसाब से तो उनको किसी ऐसे अवार्ड और मिलने चाहिए थे उनके उस। और
0: शोमैन थे हम लोगों के, हमारे देश के
1: जी
0: क्या रशिया में उनको बहुत जाना जाता रहा है
1: देवानंद
0: उनको।
1: जी भी काफ़ी, जी गुरुदत्त जी भी,
0: गुरुदत्त जी, हाँ
1: जी
0: गुरुदत्त जी पे तो हम लोगों ने कई एपिसोड्स बनाए
1: जी
0: हमारे केंद्र ने, तो बहुत कुछ उनका लाइटिंग वर्क और जो उनका थॉट प्रोसेस रहा है किरदारों को लेकर के, भावों को लेकर के, जीवन को लेकर के, हम लोगों ने देखा, जाना और समझा। डॉक्टर मुकेश, अभी भी आपके मन में ऐसा कुछ है वर्तमान में चल रहा हो कि ये मेरा ड्रीम हो सकता है, इस पर कुछ मिले अपॉर्चुनिटी तो काम हो?
1: देखिए, ऐसा तो मेरे अंदर नहीं होता। मैं प्रयास करता हूँ कि कोई भी मंच है वो मेरे लिए बड़ा है, और मेरा मन हमेशा ये करता है कि मैं अलग अलग विधाएं सीखता रहूँ, क्योंकि मैं यूपी से हूँ तो यहाँ के फोक फॉर्म जो नौटंकी है मैंने सीखने का प्रयास किया, कुछ हद तक सीखा भी। पर अभी भी मेरे अंदर ये रहता है कि मैं कुछ कुछ जो भी और भारत की अन्य विधाएं हैं उसमें मैं जाके अभ्यास करूँ, उसको सीखूँ, उसमें आके मंच पे प्रदर्शन करूँ उसका। मैं
0: जी
1: तो मंच
0: जी
1: मेरे लिए सभी बराबर हैं, और बस ये कि करते रहना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं करता रहूँ बस।
0: जी
2: इसी से जुड़ा हुआ मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था डॉक्टर मुकेश जी, कि आप पहले अभिनेता हैं, निर्देशक हैं, एक शिक्षक हैं,
1: जी
2: और अभी उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र से जुड़े हुए हैं, उसके
1: जी
2: उपनिदेशक हैं।
1: जी
2: तो जहाँ आपका कार्य है कि जो लोक कलाओं और जनजाति कलाओं को संरक्षित और संवर्धित

0: करने का। तो
1: जी
0: जब आप लोक कलाओं और जनजाति कलाओं को देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो ये आपको एज एन एक्टर और एक डायरेक्टर के रूप में कितना समृद्ध बनाता है, कितना आपको ये हेल्प करता है कि आपके काम में?
1: देखिए, मैं तो एक छात्र हूँ, क्योंकि हम अपने भारत को जितना जान पाए उतना कम है,
2: जी
1: क्योंकि हमारे भारत में इतनी विविधता है और हर चीज़ में है, चाहे वो आपके इतने हमारे राज्य हैं और उनमें इतने आपके फोक फॉर्म है, ट्राइबल फॉर्म है, तो उसको हम जाने और समझें तो ये हमें एक ज़िंदगी में तो नहीं हो पाएगा हमारे लिए, मतलब मेरे को लगता है कम है। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं लगभग जो भी हमारे यहाँ की जितने ट्राइबल फॉर्म है, फोक फॉर्म है, उसको जानने का प्रयास रहता है, उनके कलाकारों से मिलने का प्रयास रहता है। और ये भी है कि ऐसे कलाकार जिनको मंच नहीं मिल रहा है उनको मंच देने का प्रयास मेरा ये रहता है कि मैं उनको मंच दूँ, क्योंकि कलाकार ऐसे हैं जो आज के जीवन में, ऐसे कलाकार जो कुछ मतलब उनको कितने कार्यक्रम दे पाएंगे, एक दो कार्यक्रम, तीन कार्यक्रम, उसके बाद उनका जीवन अगर हम जाके देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उस कला को, हमारी उस परंपरा को जीवित रखे हुआ है। तो ये
2: ये बड़ी
1: उनका
2: बात है,
1: जी,
2: ये बड़ी बात
1: और
2: है
1: इसी कारण वो मतलब मुझे लगता है कि वो एक देवता स्वरूप है, उस कला को जीवित रख रहे हैं।
2: जी। आपके माता पिता जब आपको देखते हैं
1: जी
2: इन सब कार्यों को करते हुए, कैसा महसूस करते हैं वो?
1: पहले तो मुझे मुझे इस काबिल नहीं मानते थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा इधर थिएटर के क्षेत्र में नहीं आया, जब से पढ़ाई नहीं शुरू की, मैं थोड़ा सा उद्दंड था, तो वो मेरे भविष्य को लेकर चिंता करते थे,
2: जी
1: जो अक्सर माता पिता करते हैं। तो जब से मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया, थोड़ा सा धीरे धीरे अपने आप को मैं इस काबिल बना रहा हूँ कि और मैं सभ्य रहूँ, और एक जो
2: चेहरे से देख के बिल्कुल नहीं लगता कि आप उदंड रहे हैं।
1: तो अपने उस जो चरित्र है उसको थोड़ा सा और एक सामान्य करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि एक सभी कूल डाउन रहूँ और सबके साथ एक उस तरह का व्यवहार रखूँ,
2: जी
1: और थोड़ा सा जो पहले नहीं था।
2: तो एक गाना फिर से सुनते हुए चलें।
0: बिल्कुल।
3: ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन।

0: तो क्या है।
1: डॉक्टर मुकेश, जो पिछला प्रश्न था कि लोक कलाओं के बारे में, जनजाति कलाओं के बारे में, लोक कलाएं, जनजाति कलाएं जो काफी आज हासियत चली गई हैं, मर रही हैं, जिनको संरक्षित कर रहे हैं आप, संवर्धित कर रहे हैं, तो एक प्रश्न उठता है कि देखिए कोई चीज़ जो प्रचारित प्रसारित तो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उसको हम भी कर रहे हैं, आकाशवाणी भी ये कार्य बखूबी कर रही है, लेकिन आम जो धारणा होती है कि इसको हम जीवित रखने के लिए, इसको और प्रसारित करने के लिए हमें मार्केट से जोड़ना होगा, मार्केट्स जोड़ेंगे तभी ये जिंदा रह पाएगी और फलेगी फूलेगी। लेकिन कुछ जो संरक्षणवादी लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, उससे छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी जो मूल भावना है, जिसकी मूल सुगंध है, जो सुगंध है वो नहीं मिटनी चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो आपकी क्या मान्यता है इसमें?
2: मेरी ये मान्यता है कि मिलावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब कुछ ऐसे चीज़ें जो बाहर जानी चाहिए उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास इस तरह से करना चाहिए, जैसे कि आज हम उसको जैसे फ्यूजन बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जिसमें फोक जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको ऐसे कह देते हैं कि आप अपनी टीम को लेके आइए, तो उसमें मैं देखता हूँ कि कीबोर्ड आता है उसमें, उसमें मैं देखता हूँ पैड आता है, ठीक है। तो आने वाले भविष्य में जो हमारे ऐसे अभी तो जेंजी चल रहे हैं और उसके बाद जो भी आएंगे हमारे, तो वो यही सोचेंगे कि फोक फॉर्म में ये कीबोर्ड, ये फोक फॉर्म का ये हमारे पारंपरिक वाद्य का ये हिस्सा है, ये कीबोर्ड है, ये कीपैड है, ये भी हमारे उस वाद्य का हिस्सा है, तो ये चीज़ हमारे आगे पास ऑन होगी, तो जो मूल तत्व है वो हट जाएगा, हम उसका विकृत स्वरूप देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी बने रहना चाहिए,
1: उसका मूल स्वरूप बना रहे,
2: बना रहना चाहिए,
1: मूल स्वरूप बना रहे, लेकिन उसको हम कहीं ना कहीं प्रचारित प्रसारित करने के लिए उसमें कुछ प्रयास तो हमें करना ही होगा।
2: जी, अभी हम देखेंगे कि एक सॉन्ग था वो कचौड़ी गली है ना, एक फोक सॉन्ग है वो, ऐसा अभी उनको फ्यूजन किया और वो गाना भी देखिए किस स्वरूप में, उसको कितने लोग सुन पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता था वो फोक सॉन्ग, लगभग ऐसी हर जुबान पे है वो।
1: तो ऐसे कई गीत हैं, ऐसी कई कलाएं हैं जिनको हमें और प्रचारित और प्रसारित करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर मुकेश जी, आप घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि समय समाप्त हो रहा है, तो चलते चलते कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
2: चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना,

तो श्रोताओं, आज का हमारा वॉइस ऑफ प्रयागराज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मुकेश उपाध्याय से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत का तीसरा भाग। वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं श्याम लाल बेगाना, दिनेश कुमार और अभय राज यादव और साथी। पहले आपको सुनवाएंगे श्याम लाल बेगाना और साथियों के स्वर में ये देवी गीत।

अभी आप श्यामलाल बेगाना और साथी के स्वर में ये देवी गीत सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं इन्हीं के स्वर में कहरवा गीत।

अभी आपने सुना दिनेश कुमार और साथी के स्वर में ये लचारी गीत, और अब आपको सुनवाएंगे अभय राज यादव और साथियों के स्वर में ये देवी गीत।

अभी आप अभय राज यादव और साथी के गाए ये देवी गीत सुन रहे थे। लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत है हमारे इस खास संगीतमय सफर में। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो केवल पर्दे पर

अभिनय नहीं करते बल्कि किरदारों को अपनी रूह सौंप देते हैं। एक ऐसी ही अदाकारा जिन्होंने समानांतर और व्यावसायिक सिनेमा के बीच फासले को मिटा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री शबाना आजमी की। आज यानी 18 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

श्रोताओं, सादगी से भरा ये नगमा सुनकर दिल तरोताजा हो जाता है। शबाना जी ने हमेशा ऐसे किरदार चुने जिनमें एक महिला के आत्मसम्मान और उनके स्वाभिमान की झलक मिली। 1982 की फिल्म अर्थ उनके करियर का एक ऐसा मील का पत्थर है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब रिश्ते टूटने की कगार पर होते हैं और सवाल बहुत सारे होते हैं, तब कैफी आजमी साहब की लिखी गजल हर बिखर

फिल्म अर्थ के इस खूबसूरत कलाम के बाद आइए माहौल में थोड़ा सा रोमांस और अपनापन खोलते हैं। शबाना आजमी जी ने न केवल गंभीर भूमिकाएं निभाई बल्कि रोमानी गीतों को भी एक अलग नफासत और गरिमा दी। जब दो लोग एक दूसरे के बिना कुछ कहे समझ लेते हैं तो महफिल में ऐसी ही धुनें गूंजती हैं।

दर्पण खोलते हैं। शबाना आजमी जी ने न केवल गंभीर भूमिकाएं निभाई बल्कि रोमानी गीतों को भी एक अलग नफासत और गरिमा दी। जब दो लोग एक दूसरे के बिना कुछ कहे समझ लेते हैं तो महफिल में ऐसी ही धुनें गूंजती हैं।

श्रोताओं, बात जब शबाना जी के शुरुआती दौर की होती है तो नज़र आती है वो सादगी जो सीधे दिल में उतर आती है। सन 1974 में आई फिल्म अंकुर से उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की, लेकिन 1975 की फिल्म निशांत और फिर स्वामी ने उन्हें हर घर की पहचान दिलाई। श्रोताओं, जब इंसान का दिल खामोशी से किसी का इंतज़ार करता है तो ये धुन जैसे खुद ब खुद जुमा पर आ जाती है।

श्रोताओं, शबाना जी को 1978 में फिल्म स्वामी के लिए, 1984 में फिल्म अर्थ के लिए और 1985 में फिल्म भावना के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। सन 1988 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा।

इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की वंदना श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, एक ही कलाकार में आज की कलाकार थी अभिनेत्री शबाना आजमी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस, एक ऐसी ट्रेन जो सीधे आपके दिल से होकर गुजरेगी।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूथ एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अंजलि श्रीवास्तव। सुबह का वक्त है, हो सकता है किसी के हाथ में चाय हो या कॉफी हो, किसी के सामने किताबें खुली हों, कोई ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हो और कोई अभी भी अलार्म को 3 बार स्नूज करने के बाद फाइनली बेड से बाहर आया हो। लेकिन एक चीज है जो हम में से ऑलमोस्ट सबके साथ है, फोन। और फोन के साथ एक पूरी दुनिया, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, फोटोज, स्क्रीनशॉट्स, रील्स, मेल्स, नोट्स, सेव्ड पोस्ट्स विद इन इनवर्टेड कॉमा, राइट, अनरेड चैट्स एंड पता नहीं कितनी ऐसी चीजें जो हमने कभी डिलीट नहीं करी। कभी फोन की गैलरी खोली है और सोचा है ये फोटो मैंने कब ली थी? एक स्क्रीनशॉट किसी कोट का, एक किसी रेसिपी का, एक किसी एग्जाम नोटिफिकेशन का। और फिर रियलाइज होता है कि फोन की स्टोरेज तो भरती जा रही है, लेकिन कभी कभी लगता है कि दिमाग की स्टोरेज भी फुल हो चुकी है। नहीं तो इसीलिए आज के यूथ एक्सप्रेस में हम बात करेंगे 3 ऐसी चीजों की जो हमारी एवरीडे लाइफ का हिस्सा है। सबसे पहले डिजिटल क्लटर, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारी थिंकिंग, और आखिर में गैप ईयर, करियर स्विच और वो सवाल लोग क्या कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यूथ एक्सप्रेस। बातें होंगी अलग अलग टॉपिक्स पर जैसे हमने कहा, मगर उसके साथ साथ आपको गीत भी सुनाए जाएंगे।

वेलकम बैक दोस्तों। अब जरा अगर फोन अभी आपके पास है ना, तो एक बार गैलरी ओपन करिए। कितनी फोटोज हैं? 500।

0: 300
1: 3,000
0: या 5,000, और स्क्रीनशॉट्स, नोट्स के स्क्रीनशॉट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, बुक्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स। किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ इंपॉर्टेंट भेजा तो स्क्रीनशॉट ले लिया, किसी रील में यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी तो सेव कर लिया। और कई बार हम खुद नहीं जानते कि हमने क्या क्या सेव कर रखा है। हमारा फ़ोन धीरे धीरे एक डिजिटल कबर्ड बनता जाता है। लेकिन डिजिटल क्लटर सिर्फ फ़ोन की स्टोरेज का इशू नहीं है, इसका एक दूसरा हिस्सा भी है, मेंटल क्लटर। एक नोटिफिकेशन आया, आपने देखा, रिप्लाई नहीं किया कि बाद में करूँगा, फिर दूसरा मैसेज, फिर सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन, फिर मेल्स, फिर किसी ग्रुप में 4700 मैसेजेस। आपने पढ़ा नहीं लेकिन दिमाग ने नोट कर लिया कि इसका रिप्लाई करना है, बाद में करना है। फिर किसी फ्रेंड का मैसेज आता है कि कल बात करनी है, टीचर का मैसेज आता है असाइनमेंट सबमिट करना है, डेडलाइन आ गई है। एक स्क्रीनशॉट ये बाद में पढ़ना है। और धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन बहुत हो जाती है लेकिन अटेंशन छोटे छोटे पीसेस में बट जाती है। और फिर हम फ़ोन इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं, एस्केप के लिए खोलते हैं। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अचानक 20 मिनट्स डिसअपियर। फ़ोन क्यों खोला था, याद ही नहीं। रिलेटेबल है ना? लेकिन फ़ोन हमारा एनिमी नहीं है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत कन्वीनियंट बनाया है। सवाल फ़ोन यूज़ करने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या हम फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं या फ़ोन हमारी अटेंशन को यूज़ कर रहा है। इसीलिए कभी 15 मिनट निकाल कर डिजिटल क्लीनिंग करके देखिए। अनवांटेड स्क्रीनशॉट्स डिलीट करिए, डुप्लीकेट फ़ोटोज़ हटाइए, अनयूज्ड ऐप्स जो हैं उनको देखिए और उनको अनइंस्टॉल करिए, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को बंद करिए, और अपने सेव्ड कंटेंट को भी देखिए कि वो कितना ज़रूरी है, रखने लायक है या नहीं। जो चीज़ मंथ्स से यानी महीनों से आपके पास सेव्ड है और अब तक नहीं देखी, शायद वो उतनी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। डिजिटल डीक्लटरिंग का मतलब फ़ोन को एम्प्टी करना नहीं है, मतलब है इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए मेंटल स्पेस भी बचाना। तो अगली बार जब फ़ोन की स्टोरेज क्लीन करें, थोड़ा अटेंशन भी क्लीन करके देखिए और ख़ुद से पूछिए, जो चीज़ मेरे फ़ोन में है क्या वो मेरे दिमाग में भी जगह डिजर्व करती है? और अगर आंसर नो है तो डिलीट कर देना अलाउड है।

तो दोस्तों, इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद अब बात करते हैं आज के सबसे करंट टॉपिक्स में से एक की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस, एआई। आज स्टूडेंट्स असाइनमेंट का स्ट्रक्चर बनवाने के लिए एआई यूज़ कर सकता है, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझ सकता है, प्रेजेंटेशन के जो आइडियाज़ हैं वो जनरेट कर सकता है, लैंग्वेज इम्प्रूव कर सकता है, कोडिंग में हेल्प ले सकता है, और रिसर्च के जो इनिशियल आइडियाज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकता है। और ऑनेस्टली एआई ने बहुत से काम ईजी भी कर दिए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ईजी का मतलब हमेशा बेटर होता है क्या? मान लीजिए आपको एक ऐसे लिखना है, आप एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं, राइट? कुछ सेकंड्स में पॉलिश आंसर सामने आते हैं, इंट्रोडक्शन, आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन, लैंग्वेज भी इम्प्रेसिव है। लेकिन अगर टीचर पूछ ले कि व्हाई डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू, क्या आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? यही डिफरेंस है इन्फॉर्मेशन रिसीव करने में और थिंकिंग डेवलप करने के बीच। एआई को टूल की तरह यूज़ करना और एआई को अपनी जगह थिंकर बना देना दोनों अलग अलग बातें हैं। एआई एक्सप्लेनेशन दे सकता है, एग्जाम्पल्स दे सकता है, आइडियाज सजेस्ट भी कर सकता है, लेकिन ये डिसाइड करना कि आंसर सही है या मीनिंगफुल, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि एआई का आंसर फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट हो सकता है, लेकिन फ्लुएंट आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर नहीं होता, नॉट नेसेसरीली। इसीलिए एक हैबिट रखिए, डोंट जस्ट आस्क एआई, क्वेश्चन एआई। अगर कोई क्लेम दिया गया है तो पूछिए इसका एविडेंस क्या है। अगर कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है तो पूछिए कि इसका अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। एकेडमिक वर्क हो तो सोर्सेज वेरीफाई कीजिए और ओरिजिनल मटेरियल जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको रेफर कीजिए। और एआई को फाइनल अथॉरिटी मत बनाइए। एआई का क्रिएटिव यूज़ भी पॉसिबल है, आप उससे 10 आइडियाज़ मांग सकते हैं, लेकिन कौन सा आइडिया अच्छा है, कौन रियलिस्टिक है और कौन सा नहीं, ये जजमेंट आपको करना है। आप रफ ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, लेकिन उसमें अपनी वॉइस कैसे लगानी है ये आपका काम है। इसलिए शायद फ्यूचर का इम्पॉर्टेंट स्किल सिर्फ एआई यूज़ करना नहीं होगा, एआई को इंटेलिजेंटली यूज़ करना होगा। एआई को शॉर्टकट के बजाय थिंकिंग पार्टनर बनाइए। पहले खुद सोचिए, फिर एआई से पूछिए इसमें क्या मिसिंग है, इस आर्ग्यूमेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है, इस एक्सप्लेनेशन को और क्लियर कैसे बना सकते हैं। इस तरह एआई आपकी थिंकिंग को रिप्लेस नहीं करेगा, उसे चैलेंज करेगा। तो बैलेंस यही है, ना एआई को रिजेक्ट करना, ना एआई को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। यूज इट, क्वेश्चन इट, वेरीफाई इट, और सबसे इम्पॉर्टेंट, थिंक फॉर योरसेल्फ।

तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए यूथ एक्सप्रेस में अब हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत सारे यंग पीपल के लिए पर्सनल हो सकता है। कभी लगा है सब लोग मुझसे आगे निकल गए हैं, स्कूल के फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं, किसी का MBA हो गया, किसी का गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो गया, किसी का फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, किसी ने स्टार्टअप शुरू कर दिया, किसी ने करियर स्विच कर लिया। और आप अभी भी डिसाइड ही कर रहे हैं कि आपको करना क्या है। और यहीं से शुरू होता है टाइमलाइन का प्रेशर। अब तक तो जॉब मिल जानी चाहिए थी, अब तक डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, अब करियर सेटल कर लेना चाहिए। और अगर कोई कहे कि मैं एक साल ब्रेक लेना चाहता हूँ, तो सवाल क्यों? करियर चेंज की बात करें तो अब क्यों, और लेट स्टार्ट करें तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन एक सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। हम अपनी लाइफ का डिसीजन अपनी सिचुएशन देखकर ले रहे हैं या दूसरों की टाइमलाइन देखकर? हर गैप ईयर फेलियर नहीं होता। किसी को एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए समय चाहिए, कभी फाइनेंशियल रीजंस होते हैं, कभी फैमिली सर्कमस्टांसेस या कंस्ट्रेंट्स, कभी करियर डायरेक्शन नहीं क्लियर होता है, कभी बस ये रियलाइज़ होता है कि चुना हुआ पाथ सही था या नहीं। और करियर स्विच का मतलब ये भी नहीं है कि पहले का टाइम वेस्ट हो गया। एक फील्ड में सीखी गई स्किल्स दूसरी फील्ड में भी काम आ सकती हैं। कम्युनिकेशन, रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइटिंग, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, पीपल स्किल्स। लेकिन करियर स्विच को रोमांटिसाइज करना भी सही नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया देखकर करियर चेंज करना समझदारी नहीं है दोस्त।

करियर डिसीजंस में फाइनेंशियल रियलिटी होती है, स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं, क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत हो सकती है, टाइम लग सकता है, इसलिए डिफरेंट रूट चुनिए लेकिन प्लानिंग के साथ। गैप ईयर लेना है तो पूछिए कि मैं इस साल का यूज़ किस पर्पस के लिए करूँगा। करियर स्विच करना है तो मैं कौन सी स्किल डेवलप करूँगा। हायर स्टडीज़ के लिए है तो डिले करना है तो इस एक्स्ट्रा टाइम से मेरी प्रिपरेशन जेन्युइनली इम्प्रूव होगी या नहीं। ये क्वेश्चंस लोग क्या कहेंगे से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक बात, हम अक्सर सक्सेसफुल लोगों का फाइनल रिजल्ट देखते हैं, उनका मैसी मिडल नहीं। हमें दिखता है उसने करियर स्विच किया और सक्सेसफुल हो गया, लेकिन कितने रिजेक्शंस थे, कितनी बार प्लान चेंज हुआ, कितनी बार डाउट हुआ, और वो सब सोशल मीडिया की पोस्ट में नहीं दिखता दोस्तों। इसलिए अपनी जर्नी को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर करना अनफेयर है। आपकी लाइफ का टाइमलाइन किसी कैलेंडर पर प्रिंटेड नहीं है। 21 पर क्या करना है, 23 पर क्या अचीव करना है, 25 पर क्या सेटल करना है, 30 पर क्या होना चाहिए, ये यूनिवर्सल रूल्स नहीं हैं। हाँ, प्रैक्टिकल डेडलाइंस होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, लेकिन लाइफ का एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइमलाइन नहीं होता दोस्तों। और अगर आप किसी डिफरेंट रूट पर हैं, मे बी आप लेट नहीं हैं, मे बी आप सिंपली डिफरेंट रूट पर हैं, बस एक डिस्टिंक्शन याद रखिए, डिफरेंट और डायरेक्शनलेस सेम नहीं होते। डिफरेंट रूट चुनिए लेकिन डायरेक्शन के साथ, गैप लीजिए लेकिन पर्पस के साथ, करियर स्विच करिए लेकिन रिसर्च और प्लानिंग के साथ। और जब अगली बार कोई पूछे कि लोग क्या कहेंगे, एक सेकेंड रुक कर खुद से पूछिए मैं क्या चाहता हूँ और फिर उसके लिए मुझे रियलिस्टिकली क्या करना चाहिए। शायद यही दोनों क्वेश्चंस आपको सबसे यूजफुल आंसर देंगे।

0: तो दोस्तों, इन्हीं थॉट्स के साथ आज की यूथ एक्सप्रेस को हम यही पॉज करते हैं। आज हमने तीन अलग अलग टॉपिक्स पर बातें की, फोन में जमा होता डिजिटल क्लटर, एआई के साथ हमारी चेंजिंग रिलेशनशिप विद थिंकिंग, और लाइफ में डिफरेंट रूट चूज करने का प्रेशर। तीन टॉपिक्स अलग लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन तीनों के सेंटर में एक ही चीज़ है, चॉइस। हम क्या कंज्यूम करते हैं, हम किस टेक्नोलॉजी को कितनी पावर देते हैं, और अपनी लाइफ का रूट कैसे चूज करते हैं। टेक्नोलॉजी बदल रही है, करियर ऑप्शंस बदल रहे हैं, यूथ की लाइफस्टाइल भी बदल रही है, लेकिन एक चीज़ की इम्पोर्टेंस शायद और भी बढ़ गई है, खुद सोचने की एबिलिटी। तो फ़ोन को थोड़ा ऑर्गेनाइज कीजिए, एआई को इंटेलिजेंटली यूज़ कीजिए, और अपनी जर्नी को दूसरों की टाइमलाइन से मेजर करना थोड़ा सा कम कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ और नई कॉन्वर्सेशन के साथ। तब तक के लिए कीप थिंकिंग, कीप क्वेश्चनिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कीप बीइंग क्यूरियस। एंड डोंट फॉरगेट टू सेंड योर रिव्यूज़ ऑन आवर फोन नंबर 8004926250। दिस इज़ यूथ एक्सप्रेस, हैव अ वंडरफुल डे। I'm Anjali Srivastav signing off. Bye-bye.
1: अभी युवा श्रोता यूथ एक्सप्रेस प्रोग्राम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमें ये नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। आइए सांप्रदायिक सद्भाव का प्रण लें। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अनेकता में एकता इसकी विशेषता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 12 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

डॉक्टर जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त

0: मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। एक रिपोर्ट।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजल्टा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से AI को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि AI की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा प्रसारित एक फर्जी वीडियो का सरकार ने खंडन किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश को दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी और AI से निर्मित बताया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर 74,427 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities during his official visit to Bhutan from the 16th to the 18th of September. Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart, Leonpol D.N. Thungyel, reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance. The two sides appreciated the progress in strengthening the special and multifaceted India-Bhutan partnership. Both ministers also jointly inaugurated and launched several development projects. These included the 65-bedded Gyaltsuen Jetsun Pema Mother and Child Hospital in Mongar, the Jagannathan Bridge on the Samdrup Jongkhar Trashigang Highway, and the transfer of 43 Jersey cows from India to the National Cattle Breeding Centre in Bumthang. India also handed over 54 electric vehicles to the Bhutanese government. The ministers also laid the foundation stone for the 500-kilowatt Lunana hydropower project. Northern Army Commander Lieutenant General Pratik Sharma has commended the White Knight Corps for success.

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। टूटा हुआ पंख, दिलीप कुमार तिवारी का लिखा ये नाटक आप सुनेंगे आज रात 10 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात में 10:30 पर सुनिएगा कमला बोस का ख्याल गायन और दिन में 12:15 पर आप सुनेंगे शेष कुमार तिवारी का बांसुरी वादन।

दिन में 1:15 पर बहने गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में निखार के अंतर्गत डिटेन के घरेलू उपाय जानेंगी और डॉक्टर स्तुति श्रीवास्तव की वार्ता सुनेंगी। भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा, क्या हमारी जड़ों में छिपा है भविष्य का रास्ता।

एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुनिएगा दिन में 2:30 पर। बच्चे नन्ही दुनिया कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5:00।

शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई पंचायत घर कार्यक्रम में कमलेश चंद्र यादव और साथियों के गाए लोकगीत सुनेंगे और शिवांकी सिंह की बातचीत सुनेंगे। राष्ट्र के विकास में भारतीय ग्रामीण महिलाओं की महती भूमिका।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर कलाकार होंगे महेश बरदयाल। अक्षवट कार्यक्रम होगा रात में 8:30 पर। आज इस कार्यक्रम में अनिल कुमार श्रीवास्तव की वार्ता सुनिएगा, वृद्धावस्था में अकेलेपन की समस्या। गजलों पर आधारित कहकशा प्रोग्राम आप सुनेंगे रात में 9:30 पर।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए शेष कुमार तिवारी का बांसुरी वादन। प्रस्तुत है बांसुरी पर राग मधुवंती। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं महावीर प्रसाद भट्ट।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप शेष कुमार तिवारी से बांसुरी पर राग मधुवंती सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे महावीर प्रसाद भट्ट। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है प्रोग्राम हेलो फरमाइश, पेश कर रही हैं मधु कुमार।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताएं।
1: और मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और 107.3 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा हम सबको मन पसंदीदा फोनिंग कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम पे मैं हूँ राजेंद्र, मन पसंदीदा फरमाइश लेकर पत्नी कुंडा प्रताप ने। नमस्कार।
0: नमस्कार राजेंद्र जी, बताइए कौन सा गीत चुना है आज आपने?
1: फिल्म का नाम है संगम।
0: संगम जी,
1: और इसके बोल है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना।
0: जी, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना चुना है राजेंद्र जी ने प्रतापगढ़ से। तो वही फरमाइश आ गई है और पूरी करनी पड़ेगी, तो लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश। हेलो,
1: वो तहसील के थाना गांव मुकरानी में प्रयागराज प्रेमचंद जी बोल रहे हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद जी, बताइए आपके कौन सी फरमाइश है आज?
1: फिल्म का नाम है पत्ती कुल मीटर जादू।
0: अच्छा जी,
1: तो गाने के बोल हैं, वो जो आँख से पर नाम

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी।
1: रेखा यादव कुहार या प्रयागराज से बोल रही
0: जी जी जी रेखा जी बताइए कौन सा गाना सुनेंगी?
1: बीवी हो तो ऐसी,
0: बीवी हो तो ऐसी का कौन सा गाना है?
1: सासु जी तूने मेरी कदर नहीं जानी।
0: भैया हर बहू की यही वो रहती शिकायत।
1: मैडम जी हम अपने सास के साथ नहीं रहते हैं
0: तब भी शिकायत है
1: क्योंकि हमारी सास ने अपने मम्मी पापा के साथ छोड़ दिया जो हमारे नाना नानी हैं।
0: अच्छा जी ये बात है। तो चलिए भाई आपको जो पसंद है गाना रेखा जी हंडिया से जो बात कर रही है हमारे साथ श्रोताओं, तो इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है वो भी रेखा के ऊपर फिल्माया हुआ गाना है। आइए सुनते हैं। चलिए आइए सुनते हैं।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: परम आदरणीय दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। कौन सा गीत सुनेंगे?
1: दीदी, गीत सुनने के पहले मैं आपको, आकाशवाणी परिवार को, सभी श्रोताओं को राधा अष्टमी जो 19 सितंबर को मनाई जाएगी,
0: जी
1: बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।
0: जी
1: राधा
0: जी
1: अष्टमी राधा उत्सव के रूप में मनाया जाता है और बरसाने में बड़ी धूम रहती है।
0: चलिए, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। जो लोग नहीं जानते होंगे उनको भी ये बात समझ में आ गई होगी। भाई देखिए, मथुरा में राधा कृष्ण की तो धूम मची ही रहती है। अभी देखिए,
1: जी
0: जन्माष्टमी हुई
1: बिल्कुल,
0: थी।
1: आपने सही कहा कि जब भगवान कृष्ण का अवतार का दिन आता है कृष्ण जन्माष्टमी, तब
0: जी
1: से लेके राधा अष्टमी तक इतनी धूम रहती है। उत्साह, उमंग, आस्था, श्रद्धा का वातावरण रहता है।
0: जी जी
1: अनेकों पर्यटक, श्रद्धालु, भक्त आते हैं और दिव्य दर्शन करके अभिभूत हो जाते
0: तो
1: हैं।
0: मथुरा में तो हर तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई पड़ते होंगे इस समय।
1: जी जी दीदी बिल्कुल,
0: जी
1: बहुत भीड़ रहती है।
0: अच्छा, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है राधा का संगम।
0: जी,
1: ओ राधा
0: तेरे बिना ये
1: तेरे,
0: शाम है आधा। वाह भाई
1: जी
0: वाह,
1: जी
0: गाना भी आपने बहुत सटीक चुना है।
1: जी राधा अष्टमी के अवसर पर आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ और शामिल करना चाहता हूँ। प्रेमचंद यादव हंडिया से हैं, राकेश कुमार जी भैया मेजर से हैं, और राजेंद्र कुमार जी हैं, लोकेन वर्मा, राजू यादव, इन सभी दोस्तों के साथ में आकाशवाणी प्रयाग सुनने वाले सभी श्रोताओं को ये प्यारा सा खूबसूरत गीत सादर समर्पित करता हूँ।
0: तो आपको सुनवाते हैं राधा का संगम फिल्म का ये गाना।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। हेलो, अपना नाम बताएं।
1: मैम आपको नमस्ते, मैं प्रयागराज के मीरापुर से शिवानी यादव बोल रही हूँ।
0: जी शिवानी जी, कैसी हैं आप?
1: मैम मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ शिवानी जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम मुझे धर्मा फिल्म की कव्वाली सुनना है, राज की बात कह दूँ तो फिर
0: जाने महफिल में फिर क्या। वाह भाई वाह, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की ये ज़ोरदार कव्वाली की फरमाइश आई है शिवानी जी से, जो हमें कॉल कर रही हैं मीरापुर प्रयागराज से।
1: एक बात कहना चाहती हूँ।
0: जी बोलिए।
1: और जो हमारे और भी श्रोता जो अपना कार्यक्रम सुनते हैं उसमें जो है शारदा प्रसाद अंकल जी, मेरे पापा उनसे बहुत प्रभावित हैं, मतलब
0: अच्छा।
1: और जी हाँ, मतलब जो वो शारदा प्रसाद अंकल जी जो उनका बोलने का अंदाज और हर फिल्म नई पुरानी जो सुनते हैं, हमारे पिताजी को उनके मतलब बहुत पसंद है।
0: अच्छा वही शारदा प्रसाद जी सुन रहे होंगे इस बात को।
1: हाँ तो वो आपका कार्यक्रम सुन, पहले वो फोन नहीं करते हैं बट वो आपका कार्यक्रम सुनते हैं।
0: चलिए हमारी तरफ से उनको धन्यवाद कह दीजिएगा, और आप अपनी फरमाइश आपने जो बताई है धर्मा फिल्म की कव्वाली की उसे हम सुनवाने जा रहे हैं शिवानी जी, लीजिए सुनिए।
1: मैम नमस्ते।

0: अभी आप हेलो फरमाइश प्रोग्राम सुन रहे थे। पेश कर रही थी मधु कुमार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आकाश में सितारों की तरह आपस में मिलजुल कर रहिए। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। एक बजने को है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने UPI आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान के वायुसेना में शामिल होने से सैन्य पायलट प्रशिक्षण में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। उत्तरी

0: सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से एआई को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि एआई की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर अधिकारियों और लोगों के लिए मितव्ययिता संबंधी उपायों की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ईंधन के इस्तेमाल और अधिकारियों की विदेश यात्रा में कटौती की घोषणा की है। साथ ही नए सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी गई है और आधिकारिक रात्रि भोजों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों को सीमित कर दिया गया है। बाजारों और शॉपिंग केंद्रों को रात 9 बजे तक और रेस्तरां को रात 11 बजे तक बंद करने को कहा गया है। भारतीय एजेंसियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में इसके संभावित असर को देखते हुए वे इन कथित वित्तीय माध्यमों पर नजर रखे हुए हैं। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रूपये की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से यात्रा की दूरी, समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 74,547 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23,336 पर था। 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ कल से जापान के आइचे नागोया में हो रहा है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तुर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Valsa Williams. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities during his official visit to Bhutan from the 16th to the 18th of September. Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart Leon Po Dien Thungyel reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance. The two sides appreciated the progress in strengthening the special and multifaceted India-Bhutan partnership. Both ministers also jointly inaugurated and launched several development projects. These included the 65-bedded Galsuen Jetsun Pema Mother and Child Hospital in Mongar, the Jagannathan Bridge on the Samdrup Jongkhar Trashigang Highway, and the transfer of 43 Jersey cows from India to the National Cattle Breeding Centre in Bumthang. India also handed over 54 electric vehicles to the Bhutanese government. The ministers also laid the foundation stone for the 500-kilowatt Lunana hydropower project. Northern Army Commander Lieutenant General Pratik Sharma has commended the White Knight Corps for successfully neutralizing two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur. Lieutenant General Pratik Sharma complimented the White Knight Corps for their swift, precise and professional action in neutralizing two terrorists during Operation Sohan in Majalta area of Udhampur district. Our Jammu correspondent reports that the successful intelligence-based operation conducted in seamless synergy with JNK police and CRPF once again underscores the strength of joint interagency coordination in the counter-terrorism grid. Bangladesh Prime Minister Tariq Rahman has extended warm birthday greetings to Prime Minister Narendra Modi on his 76th birthday. In a message posted on X, PM Rahman extended his warmest birthday wishes to Modi by wishing

0: him good health and high spirits as he continues his dedicated service to the people of India. PM Modi responded by thanking Rahman for his message. The message was shared by the High Commission of India in Bangladesh on its official Facebook page. Earlier, the Prime Minister's office also posted a greeting card featuring PM Modi's photograph on its official Facebook page, wishing the Indian Prime Minister on his birthday. Defence Minister Rajnath Singh will visit Kerala and Karnataka today. In a social media post, Mr. Singh said that he will attend the inaugural ceremony of an event organised by Janmabhoomi, a prominent Malayalam daily, in Kochi, Kerala. Later in the evening, the Defence Minister will attend a handing over ceremony in Bengaluru for the light combat aircraft Tejas final operational clearance twin-seater trainer and Hindustan Turbo Trainer 40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force and Dhruv NG helicopters to Pawan Hans Limited. The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. Both Houses of Parliament on the 12th of August gave their nod to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to a joint parliamentary committee for further scrutiny. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. India has voted for a United Nations General Assembly resolution to allow Palestine President Mahmoud Abbas to address the high-level meeting of the Assembly in New York in the US next week via video. Earlier, the US refused to give him a visa to come to New York. The resolution was passed overwhelmingly yesterday with 152 votes, while only the US, Israel and Paraguay voted against it. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 233 points to 74,547, while the Nifty added 66 points to 23,336 when reports last came in. Double Olympic medalist Manu Bhakar and defending Asian Games shot put champion Tajinder Pal Singh Toor have been named India's flag bearers for the opening ceremony of the Asian Games. The opening ceremony is scheduled to take place tomorrow. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं. दिन के 1:10 होने को है. अब आप इलाकाई खबरें सुनेंगे.
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 76वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ और वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह ने कल वाराणसी से सेवा संकल्प अभियान का आगाज़ किया. इस मौके पर वज़ीर-ए-आला और वज़ीर-ए-दिफा ने सेवा संकल्प बाइक यात्रा को वज़ीर-ए-आज़म के काम की जगह वाराणसी से उनकी जाय पैदाइश गुजरात के वडनगर तक रवाना किया. अपने खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आला ने कहा कि आज मुल्क क्वांटम कंप्यूटिंग, AI मिशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स के शोबों में नई बुलंदियां हासिल कर रहा है.
3: आज भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तमाम यूनिट भारत के अंदर स्थापित करने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है. उसका प्रोडक्शन करना प्रारंभ किया है. भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में काम कर रहा है. भारत का AI मिशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है. भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी के एक हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है. रोबोटिक के क्षेत्र में भारत की सफलता नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है.
2: तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि वजीर आजम का विजन टेक्नोलॉजी को आम शहरियों की जिंदगी का हिस्सा बनाकर जिंदगी को आसान बनाना है.
4: कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि हर नागरिक तक बैंक की सुविधा पहुंचेगी, लेकिन यह करिश्मा भी भारत में पहली बार यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया. UPI से लेन देन यह हो सकता है, इसकी भी किसी ने कल्पना नहीं. अब एक सेकंड में UPI के माध्यम से आप जहां से चाहें दूसरे स्थान पर पैसा भेजना सहज तरीके से भेज सकते हैं. साथियों, मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को बड़े शहरों और दफ्तरों से निकालकर आज आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने का काम किया है.
2: इस मौके पर मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा कि वजीर आजम ने गुज़िश्ता 12 सालों में हर सिमत में अपना नुक्ता नज़र कायम किया है और आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है. आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू

बाबू नायडू ने कहा कि आज मुल्क बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। इस तकरीब में बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी ने भी शिरकत की। इस मौके पर काशी विश्वनाथ धाम में खसूसी दुआएं की गईं और धाम के पुजारियों, आचार्यों और सफाई कारकुनों को एजाज से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म की 25 साल आवामी खिदमत और कौमी खिदमत पर मबनी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। सेवा संकल्प अभियान के एक हिस्से के तौर पर कल शाम रियासत भर में आशीर्वाद का दिया नामी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल में प्रोग्राम में शिरकत की। रियासत भर में अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और इस्तीफादा कुनिंदगान ने कल शाम अवामी मकामात, अस्पतालों, घरों और इदारों पर चरागाह करके सेवा संकल्प अभियान में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 76वें सालगिरह के मौके पर जनभवन कॉम्प्लेक्स में बनाए गए गंगा सागर नमो नमः प्रोजेक्ट का कल गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। दोनों नायब वज़रा केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब के

0: सेवा संकल्प अभियान के एक हिस्से के तौर पर कल शाम रियासत भर में आशीर्वाद का दिया नामी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल में प्रोग्राम में शिरकत की। रियासत भर में अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और इस्तीफादा कुनिंदगान ने कल शाम अवामी मकामात, अस्पतालों, घरों और इदारों पर चरागा करके सेवा संकल्प अभियान में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 76वें सालगिरह के मौके पर जनभवन कॉम्प्लेक्स में बनाए गए गंगा सागर नमो नमः प्रोजेक्ट का कल गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। दोनों नायब वज़रा केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब के दौरान तलबा ने सकाफती परफॉर्मेंस पेश की। इससे पहले वजीर आज़म की सालगिरह पर जनभवन में 9 से 14 साल की उम्र की 100 लड़कियों को HPV के खिलाफ टीका लगाया गया। इसके अलावा जनभवन के ओहदेदारों और मुलाजमीन ने तपेदिक के 76 मरीजों को गोद लिया और उन्हें गजाइत के पैकेट तकसीम किए। भगवान विश्वकर्मा जयंती के मौके पर योगी हुकूमत ने रियासत के रवायती कारीगरों, दस्तकारों और दस्ती मजदूरों को खुद रोज़गार से जोड़ने और उनके कारोबारी इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी और मार्केट से जोड़ने के लिए अहम इकदाम किए हैं। कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुनक़द एक प्रोग्राम में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा श्रमिक सम्मान योजना 2.0 के तहत विश्वकर्मा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्वदेशी मेला 2026 पर मबनी नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आला ने मार्जिन मनी लोन पोर्टल का भी आगाज़ किया और मुख्तलिफ स्कीमों के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक और टूल किट्स तकसीम की। रियासती चीफ इलेक्टोरल अफसर नवदीप रणवा ने इंतखाबी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए कल महोबा में EVM गोदाम और स्ट्रॉन्ग रूम का मुआयना किया। चीफ इलेक्टोरल अफसर ने बताया कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए रियासत भर में तैयारियां जारी हैं। उन्होंने वजाहत की कि EVM की पहली सतह की जाँच का एक अहम मकसद पोलिंग के दिन मशीन में खराबी के इम्कान को कम करना है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: बड़ा अनमोल है इसका रखिए ध्यान, बीता हुआ पल लौटे नहीं यही इसकी पहचान।
1: जो करना है आज करें, कल पर ना टाले काम, समय का जो मान रखे जग में उसका नाम।
0: तो बहनों, इसी भावनाओं के साथ स्वीकार कीजिए रितंद्रा मिश्रा
1: और शारदा सिंह का प्यार भरा नमस्कार।
0: आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गैलक्ष्मी, और बहनों हमें कहना ये है कि समान श्रम का मिले सम्मान, समान वेतन बने पहचान, मेहनत का जो हो उचित मोल, ना हो भेदभाव का कोई बोल।
1: नारी पुरुष एक समान, दोनों का हो पूरा नाम, श्रम का अधिकार रहे महान, समान वेतन सशक्त इंसान।
0: बहनों, आज यानी 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि समान या समान मूल्य के काम के लिए महिलाओं और पुरुषों को समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल दीदी, और ये रोजगार और आय से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि समानता, सम्मान और सामाजिक न्याय से जुड़ा सवाल है। और बहनों जरा सोचिए कि यदि दो लोग समान जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो केवल लिंग के आधार पर उनके वेतन में अंतर क्यों हो?
0: और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस का उद्देश्य समाज और कार्यस्थलों में उस सोच को बढ़ावा देना है जिसमें किसी व्यक्ति के काम का मूल्यांकन उसके काम, योग्यता, जिम्मेदारी और योगदान के आधार पर हो, न कि उसके महिला या पुरुष होने के आधार पर।
1: भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में ये विषय पर चर्चा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे देश में महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान, चिकित्सा, कानूनी, पत्रकार

0: पत्रकारिता, कला, खेल, उद्योग और अनेक अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इसके बावजूद रोजगार और पारिश्रमिक में से जुड़ा असमानताओं पर लगातार चर्चा की आवश्यकता बनी रही है।
1: बिल्कुल सही कहा शारदा। और देखो, बहनों से एक बात भी कहना चाहेंगे कि जो समान वेतन है वो केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, ये पूरे समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ा विषय है। जब किसी व्यक्ति को उसके श्रम का उचित मूल्य मिलता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और समाज में समान अवसरों की भावना विकसित होती है।
0: बिल्कुल। और हमें ये समझना होगा कि समानता का अर्थ किसी को विशेष लाभ देना नहीं, बल्कि समान परिस्थितियों में समान अवसर और समान मूल्यांकन सुनिश्चित करना है, जो अंतर्राष्ट्रीय समान सुनिश्चित वेतन पर हम एक ऐसी कार्य संस्कृति भी की कल्पना कर सकते हैं जहाँ किसी व्यक्ति से ये न पूछा जाए कि वह महिला है या पुरुष, बल्कि ये देखा जाए कि वो अपने काम के प्रति कितना सक्षम है, ईमानदार है।
1: और देखो, जो हमारी चर्चा है आज की विषय, इसमें हम कहना चाहेंगे, अगर हम बात जैसे जो मजदूर तबके की अगर महिलाओं की ले लें, तो मैंने देखा है समाज के अंदर उनमें भाई जो काम कार्यशैली है या जो काम लेते हैं लोग, तो उसमें अंतर रखते हैं। जो पुरुष वर्ग है उसको वेतन थोड़ा बढ़ा के देते हैं, जो महिला है या नहीं बोल पाती है तो उसके अधिकारों का वहाँ हनन किया जाता है। तो प्लीज ऐसा ना करें,
0: ऐसा
1: है ना?
0: ना करें, बिल्कुल दीदी। हम तो मतलब अब तो देखते हैं कि जो घरों में भी काम हो रहा है, कहीं घर कोई भी कंस्ट्रक्शन है, जो घर बन रहा है, छोटे घर भी बन रहे हैं, तो महिलाएं पुरुष एक साथ मतलब मजदूरी कर रही हैं। तो इसमें लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के ऐसे भेदभाव ना करें कि महिलाएं तो उन्हें कम दिया जाए, पुरुष है तो उन्हें ज़्यादा दिया जाए। भाई, मेहनत जब बराबर का है तो उनका जो मेहनताना भी बराबर का होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और इस खूबसूरत संदेश के साथ बहनों, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: तो भाई इस खूबसूरत से गीत के बाद बहनों अभी हम चर्चा कर रहे थे महिलाओं की और महिला के अधिकार की, महिला के समान वेतन की। तो जो हमारी अगली चर्चा है वो भी जुड़ी हुई है महिलाओं से ही, और वो है रिटायरमेंट प्लानिंग महिलाओं के लिए क्यों ज़रूरी है।
1: तो हम बहनों से कहना चाहेंगे कि रिटायरमेंट की तैयारी आज से करें, भविष्य के सपनों को सुरक्षित करें, बचत की आदत बने आधार, आर्थिक स्वतंत्रता हो हर बार।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अपने कल का रखें ध्यान, न रहे किसी का किसी पर निर्भर, महान आज की योजना कल की मुस्कान, सुरक्षित भविष्य महिला की पहचान। बिल्कुल, और देखो शारदा, आखिर महिलाओं को अपनी रिटायरमेंट की जो बात है या उनकी योजना की बात है ना, वो हमें क्यों बनानी है? क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि समाज के अंदर हो या परिवार के अंदर है, महिलाओं की जो ज़िंदगी है ना, उसमें कई भूमिकाएं होती हैं, और उसमें भूमिकाओं में है बेटी है, पत्नी है, माँ है, बहू है, और प्रोफेशनल रिश्ता भी है अगर काम करती है तो। कई बार परिवार की जो जिम्मेदारी है या जिम्मेदारियों के कारण उनका जो करियर बीच में रुक जाता है या उनकी आय लंबे समय तक नियमित नहीं रहती है ना?
1: बिल्कुल दीदी, और यही कारण है कि रिटायरमेंट प्लानिंग को केवल नौकरी करने वाली महिलाओं तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए, गृहिणी भी आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए पूरी हकदार है।
0: बिल्कुल, लेकिन सवाल है शुरुआत कैसे करें, है ना? तो सबसे पहले अपनी वर्तमान आय, खर्च और बचत का जो हिसाब है वो समझिए, फिर एक अनुमान लगाइए कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने कितनी राशि की आवश्यकता होगी, और इसके साथ महंगाई को भी जरूर ध्यान में रखें, है ना?
1: और दीदी, महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश अपने वित्तीय फैसलों में स्वयं शामिल करनी चाहिए कि वो बैंक खाते, निवेश, बीमा, पेंशन और परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने पास रखें, है ना? क्योंकि आर्थिक आत्मनिर्भरता केवल कमाई का एक नाम नहीं है, अपने भविष्य के लिए आर्थिक निर्णय लेने की एक क्षमता भी आत्मनिर्भरता का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: बिल्कुल सही कहा, और देखो अभी हम बात जब कर रहे थे ना कि क्या नाम है, आय का जो खर्च है उसका हिसाब कैसे लगाएं, तो आज अगर कोई खर्च मान लो कि 20,000 रुपये है तो जरूरी नहीं कि 20 या 30 साल बाद भी उतने में ही जीवन शैली चल सके। इसलिए लक्ष्य आधारित बचत, नियमित निवेश, आपातकालीन निधि और पर्याप्त बीमा जैसी जो चीज़ें हैं उन पर भी हमें ध्यान देना होगा, और साथ ही अपने निवेश को समझने बिना किसी की सलाह पर पैसा लगाना उचित नहीं है। यहाँ पर इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारी निवेश वाली जो कंपनियाँ हमसे संपर्क करती हैं, तो ऐसा ना करें, उनको समझे पहले, या अगर खुद समझ में नहीं आ रहा है तो जो उसके एक्सपर्ट हैं उनको समझ के तभी वो मूल्य उसका जो है लगाएं, क्योंकि होता क्या है कि जब हम समझते नहीं हैं चीज़ों को तो वहाँ पे हम धोखा भी खा जाते हैं, और हमारी पूंजी जो है कहीं ना कहीं वो फिर रोते हैं बैठ के कि हम इतने समय से हमने कमाई, हमारी एक झटके में चली गई, तो वो ये ज़रूरी है। और रिटायरमेंट बहनों कोई अचानक आने वाला पड़ाव नहीं है, इसकी तैयारी आज से ही शुरू की जा सकती है, चाहे

0: आप नौकरी करती हों या व्यवसाय करती हों या घर भी संभालती हों, अपने भविष्य के लिए एक स्पष्ट वित्तीय योजना जरूर बनाइए, क्योंकि सुरक्षित भविष्य केवल संयोग से ही बनता है। उसके लिए आज की गई छोटी छोटी तैयारियां महत्वपूर्ण होती हैं, और आज की समझदारी जो है आर्थिक स्वतंत्रता। और इसी संदेश के साथ देखो सुनते हैं आज की एक विशेष वार्ता, भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा, क्या हमारी जड़ों में छिपा है भविष्य का रास्ता। वार्ताकार हैं डॉक्टर स्तुति श्रीवास्तव, प्रस्तुति है अभयकांत तिवारी की।
1: प्राचीन भारत में विद्वानों ने, ऋषियों ने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और धातु विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सदियों से अवलोकन किया है और उन विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या की है। यहाँ पर जो पहला उदाहरण है वो है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के प्रथम शिष्य लॉर्ड वेव द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसे किताबों में लिखा गया। उनकी जो एक पुस्तक है वो सूर्य सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि की गणना करने के लिए अपने नियम बताए हैं। ये सभी खगोलीय गणनाएं हैं और आज के समय में भी ये सभी खगोलीय गणनाएं बहुत ही सटीक हैं। ग्रहों की गति के बारे में बताया है और वर्ष की सटीक लंबाई बताई है। उसके अलावा उन्होंने साथ में सभी ग्रहों का व्यास और पृथ्वी के चारों ओर उनकी अनुमानित वृत्ताकार कक्षाओं की परिधि का भी अनुमान लगाया है। तो ये था हमारा खगोल विज्ञान, जो कि प्राचीन भारत की एक परंपरा रही है, और प्राचीन भारत में भी खगोल विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है और उस पर हमारे प्राचीन विद्वानों ने अवलोकन किया था। दूसरा जो यहाँ पर एक उदाहरण है वो है हमारा पर्यावरण विज्ञान से संबंधित। हमारी वैदिक सभ्यता में शुरू से ही पर्यावरण संरक्षण हमारी वैदिक सभ्यता का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। हम अगर वेदों के मंत्रों को जानें और समझें तो हमने पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्राचीन समय से ही हमने जल, पृथ्वी, मृदा आदि सबको एक ऑनर दिया। हमने जीव जंतुओं को भी एक ऑनर दिया और उनको हमेशा से ही पूजा। अथर्ववेद के 12वें कांड का पहला सूक्त, जो कि पृथ्वी सूक्त है, वो कहता है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसकी पुत्री हूँ। यह सूक्त हमें पृथ्वी का दोहन करने के बजाय उसका संवर्धन करने और पृथ्वी को हानि न पहुंचाने की प्रेरणा देता है। और आज के समय में अगर हम पर्यावरण विज्ञान में एक जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप, यानी कि मानव और प्रकृति के बीच में संबंध, दूसरा मेरा उदाहरण वो है कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान की अगर हम बात करें तो वेदों की सूक्तियों के, वेदों के मंत्रों में, ऋग वेदों के मंत्रों में कृषि शब्द का उपयोग किया गया और उसे समृद्धि का प्रतीक बताया गया। कृषि पराशर एक पुस्तक लिखी गई महर्षि पराशर के द्वारा, ये ग्रंथ थे हमारे, इन्होंने कृषि विज्ञान के बारे में व्याख्या की और उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी, जो आज के समय में भी उसको लागू किया जाता है। और वैदिक कृषि जो आज के समय में हम कर रहे हैं, जो आज के समय में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या हम ऑर्गेनिक क्रॉप्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में वर्णन बहुत पहले ही हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में किया जा चुका है। वैदिक कृषि, खेतों में उपज, फसल काटने पर उत्सव मनाना, जैसे आज हम लोहड़ी मनाते हैं, खिचड़ी मनाते हैं, ये सभी चीजें ग्रंथों में हमारे पहले से ही दी गई हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को अगर हम पढ़ें, करसना यानी कि जुताई, किसी नुकीले ब्लेड से, लांगल हल, हल से खेत जोतना, बीज बोना, खाद डालना, सिंचाई, फसल काटना, वर्षा का अनुमान लगाने के तरीके, बीज संरक्षण, भूमि की देखभाल, तो ये सभी बातें पहले से ही दी गई हैं ऋग्वेद के मंत्रों में और कृषि पराशर जैसी पुस्तकों में इसकी विस्तृत वर्णन किया जा चुका है। अब मैं बात करूंगी आपसे नासिदीय सूक्त के बारे में। नासिदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां भजन है, जो कि ब्रह्मांड की रचना के बारे में प्रश्न उठाता है। इसमें एक ऐसी स्थिति का वर्णन है जब कुछ भी नहीं था, और इसमें एक प्रश्न उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, जो कि आज की आधुनिक वेस्टर्न बिग बैंग थ्योरी से मिलता जुलता है। उसने कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा, ये बात ये इस चीज को प्रस्तुत करती है। ये जो नासिदीय सूक्त में प्रश्न उठे सृष्टि के निर्माण के बारे में,

ये बताते हैं कि हमारे वैदिक ऋषियों और मुनियों का प्राचीन काल से एक तर्कपूर्ण दृष्टिकोण रहा है। उन्होंने प्रश्न उठाए, उनके मन में जिज्ञासा थी। एक दूसरा उदाहरण देखें, पतंजलि का योग सूत्र, तो उसको आज के मेडिकल साइंसेज ने भी प्रमाणित किया है। एक और उदाहरण अगर मैं लूं, 1200 वर्ष पहले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर में जो सन डायल का निर्माण किया गया, वो समय का मापन करता है। और समय का मापन वो कैसे करता है? सूर्य की रोशनी के आधार पर। सूर्य की रोशनी जिस तरह से उस सन डायल पे पड़ती है और जैसे जैसे सूर्य की स्थिति बदलती है, उस तरह से वो सन डायल दिन के समय समय का मापन करता है। एक और उदाहरण, कोणार्क मंदिर की इंजीनियरिंग बहुत ही प्रसिद्ध है और ये भी हमारे प्राचीन ज्ञान को बताती है कि कितना हमारा प्राचीन ज्ञान संवर्धित था। ये मंदिर सूर्य देव के विशाल रथ जैसा है जिसमें 24 पहिए हैं और 7 घोड़े हैं। 24 पहिए यानी कि एक दिन में 24 घंटे और 7 घोड़े एक हफ्ते के 7 दिन को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये सभी उदाहरण ये बताते हैं हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में शुरू से ही एक चिंतन अपने वास्तविक जगत को जानने के लिए, अपने वास्तविक जगत का अवलोकन करने के लिए प्रमाणों को एकत्रित करना, चिंतन करना, तर्कपूर्ण व्याख्या करना, ये हमारी सभ्यता बहुत शुरू से ही रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो आता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, हमने कभी भी विज्ञान और अध्यात्म को अलग-अलग नहीं किया है। हमारे यहाँ साइंस ने स्पिरिचुअलिटी को सपोर्ट किया है, विज्ञान ने अध्यात्म को हमेशा अपने साथ लिया है और अध्यात्म ने वैज्ञानिक तर्कों को भी अपने साथ जोड़ा है। यहाँ पर एक उदाहरण मैं लेना चाहूंगी कि हमारी परंपरा में विज्ञान और अध्यात्म कैसे साथ साथ रहे। तो देखिए, पंचतत्व की हमारी संकल्पना रही जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हमने 5 तत्वों के बारे में जाना शुरू से ही वेदों में और हमारी संस्कृति में कि 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये एक भौतिक विज्ञान है, ये एक वैज्ञानिक संकल्पना रही है और साथ में हमने इन तत्वों के साथ एक नैतिक संबंध को भी देखा है। हमने इनको डिवाइन इम्पोर्टेंस दिया है, हमने इनको देवता के समान माना, क्योंकि अगर ये 5 तत्व हैं तभी हम हैं, इनके बिना हम नहीं हैं। अगर हम इनका विनाश करेंगे तो इससे क्या होगा? पूरी मानव जाति, पूरी पृथ्वी विनाश की तरफ जाएगी। तो इसीलिए देखिए, हमारा हमेशा से एक नैतिक संबंध रहा विज्ञान के साथ, जो ये पंच तत्व की संकल्पना थी उसमें। एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर योग का उदाहरण, तो योग में ध्यान और जितने भी योगासन हैं उसको जब हमने चिकित्सा में उसका अध्ययन किया तो ये पाया है कि कोई भी रोग हो, चाहे वो आपकी सर्कुलेटरी डिजीजेज हो, सर्कुलेटरी सिस्टम की, हार्ट से संबंधित या श्वसन से संबंधित कोई भी श्वसन रोग हो, कोई भी आपका हृदय संबंधी रोग हो, तो वहाँ पर योग और मेडिटेशन का सकारात्मक प्रभाव रहा है। ये प्रूवन है, इसको प्रमाणित किया जा चुका है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जो कि हमारा योग एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, तो हमने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी साइंटिफिकली प्रूवन किया है, उसको वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया है। तीसरी बात मैं यहाँ पे करूंगी उपनिषदों के बारे में। तो उपनिषद 2 प्रकार की विद्या के बारे में बताते हैं। पहली विद्या है पराविद्या और दूसरी विद्या है अपराविद्या। और उपनिषदों ने ये भी कहा है कि दोनों प्रकार की विद्याओं का अर्जन जरूरी है, उतना ही पराविद्या को ग्रहण करना जरूरी है जितना कि अपराविद्या। पराविद्या क्या है? पराविद्या भौतिक जगत की विद्या, यानी कि खगोल विज्ञान, गणित विज्ञान, कृषि, चिकित्सा आदि के बारे में जानना, ये है हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड, हमारे बाह्य जगत के बारे में जो जानकारी है, जो विद्या है, उसको क्या कहते हैं उपनिषदों में? पराविद्या। और दूसरी जो विद्या है वो है अपरा विद्या, यानी कि लौकिक विद्या, लौकिक जगत के बारे में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में। तो उपनिषदों में पराविद्या और अपराविद्या दोनों के बारे में ही जानना जरूरी बताया गया है। पराविद्या यानी कि भौतिक जगत की विद्या, गणित, खगोल विज्ञान, कृषि आदि के बारे में जानकारी, चिकित्सा के बारे में जानकारी, क्योंकि वास्तविक जगत में रहने के लिए हमें पराविद्या की जरूरत है। और अपराविद्या यानी कि लौकिक विद्या, जिसमें हम अध्यात्म, आत्मबोध की यात्रा करते हैं और सत्य के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, ये जिज्ञासा है सत्य के प्रति। तो उपनिषद

0: अनुसार दोनों ही प्रकार की विद्याएं जरूरी हैं। तो इस तरह से आज के युग में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा हमें प्रेरित करती है कि हम आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट को कनेक्ट करें, यानी कि वैज्ञानिक स्वभाव को जोड़ें, क्योंकि विश्व की भलाई के लिए दोनों ही जरूरी है और प्रगति के लिए, पृथ्वी का कल्याण के लिए ये दोनों ही जरूरी है। और हमारा लक्ष्य पृथ्वी का कल्याण है और हम इससे किसी भी अंधविश्वास से बचेंगे। अध्यात्म और विज्ञान दोनों को ही जोड़ करके हमें कोई भी निर्णय लेना है और अपने जीवन में कोई भी कार्य करना है।
1: तो भाई शारदा, बहुत ही सुंदर चर्चा थी, वार्ता थी। और बहने अभी ये जो अभी विशेष वार्ता सुन रही थी, भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा क्या हमारी जड़ों में छिपा है, भविष्य का रास्ता, वार्ताकार थी डॉक्टर स्तुति श्रीवास्तव और प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की। और बहनों, इस सुंदर वार्ता के साथ, जानकारी के साथ, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: गजल है ना। और देखो कभी कभी मूड होता है ना कि घर में हो या कहीं, मतलब कभी बहुत ज़्यादा शारदा अगर थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब है तो अगर तुम गजल लगा लो ना उस समय, तो जैसे मन को सुकून देता है। अगर हल्के से वॉल्यूम पे लगा के सेट करके सुनो तो बहुत मज़ा आता है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: बहनों को भी पसंद आया होगा, क्योंकि ये हमारी एक श्रोता की पसंद पे हमने आज ये इस गज़ल को सुनवाया है। और अब है भाई बहनों, जो हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, और वो
1: बिल्कुल
0: अगला सेगमेंट है हमारा निखार का।
1: निखार का
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: तो
1: दीदी।
0: शारदा दीदी
1: और
0: बताएंगी।
1: आजकल मौसम देखिए किस तरीके
0: हाँ
1: से बदल रहा है, कभी

0: खूब तो कभी बारिश है ना, तो इसमें पूरा प्रभाव इससे हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता ही है, क्योंकि हम बाहर भी निकलते हैं, घर के काम भी करते
1: स्वास्थ्य पे
0: हैं,
1: पड़ता है,
0: हाँ
1: स्किन पे
0: त्वचा
1: पड़ता
0: पे पड़ता
1: है।
0: है। तो इससे होता क्या है कि आजकल टैनिंग या डिटैन, यूँ कह लें कि डिटैन, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हमें देख सकते हैं कि तुरंत चेहरे पर, हाथ पांव पे दिखने लगता है। तो इससे, इसको आज हम दूर करने के लिए कुछ अच्छी सी पैक लेकर आए हैं। तो इसमें सबसे अच्छा पैक है कि बेसन और दही पैक बनाएं, डिटैन पैक बनाएं। इसमें 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच दही और 1 चुटकी हल्दी, हल्दी, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला करके एक गाढ़ा पेस्ट बना लें और चेहरे और टैनिंग वाले जगहों पर अच्छी तरह से लगा दें। और 15-20 मिनट के बाद ठंडे या नॉर्मल पानी से इसको मसाज करते हुए हल्के हल्के हाथों से इसको धुल लें। आप देखेंगे कि आपकी त्वचा साफ हो जाएगी।
1: तो ये बहुत अच्छा नुस्खा तुमने बताया। हालांकि जो घरेलू उपाय हैं तो हम लोगों ने तो अपने विरासत में घरों में भी देखा है, दादियों को देखा है, मम्मियों को देखा है। तो अगर हम थोड़ा समय निकाल के बहनों अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो मुझे लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा जो बाज़ार की वस्तुएं हैं उसको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सारी जो सुविधाएँ हैं, जो घरेलू उपाय हैं, हमारे किचन में उपलब्ध है ना।
0: बिल्कुल दीदी। और देखिए, नींबू और शहद का भी एक पैक है, उसको 1 चम्मच आधा चम्मच से नींबू का रस ले लेते हैं, 1 चम्मच शहद ले लेते हैं और इसको भी अच्छी तरीके से मिला लें। आप किसी कटोरी या चम्मच में अच्छे से मिला लें और इसको फेस पर या हाथों पर अच्छे से खुली जगहों पर अच्छे से लगाएं। लगाने के बाद फिर वही 10 या 15 मिनट के बाद वॉश कर दें। और दीदी, जैसे कि आपने गीत
1: ये
0: संगीत
1: जो ये भी
0: की
1: दूसरा तरीका बताया ना, यहाँ पे मैं जैसे नींबू की बात की, तो नींबू हर व्यक्ति के त्वचा पर मतलब बहुत वो नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता, का
0: हाँ
1: रिएक्शन करता
0: हाँ
1: है उसका। क्योंकि मैं नहीं लगाती, एक बार
0: अच्छा
1: मैंने ट्राई
0: अच्छा
1: किया तो दाने उभर आए थे, तो मैंने फिर कभी
0: नहीं तो
1: नींबू ट्राई
0: इसमें
1: नहीं किया।
0: ऐसी दही भी है
1: हाँ,
0: दीदी,
1: तो
0: ऐसी दही भी है कि अगर आप
1: हाँ,
0: दही
1: अगर
0: भी
1: रिएक्शन
0: लगाती हैं
1: करता
0: तो
1: है तो आप
0: उसका,
1: उसको ना
0: हाँ
1: लगाएं।
0: तो पहले मतलब कहीं भी हाथों पर या कहीं भी हल्के से गर्दन पे थोड़ा सा लगा करके देखिए कि आपको अगर उसका साइड इफेक्ट कुछ दिख रहा है तो वो कोशिश करें कि उसको ना
1: और एक
0: लगाएं।
1: बहुत देसी नुस्खा मैं बताऊं तुमको, मैंने दादी को देखा था, जो मुल्तानी मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं, वो बहुत ही, अब वो पैक में भी आने लगा है, ले या घर पे भी आप मिट्टी खरीद के बना सकते हो। तो वो बड़ा उसमें जो है वो पावरफुल भी है और स्किन भी बहुत एक तरीके से चमकदार और वो भी बनती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर उसका भी प्रयोग करें बहने तो जो,
0: और एक
1: हाँ
0: और भी वस्तु है जैसे कि हमारे किचन में मिल जाती हैं, और वो है लाल मसूर का दाल।
1: अच्छा
0: हाँ, अब अगर रात में 1 या 2 चम्मच लाल मसूर का दाल कच्चे दूध या पके दूध में ही, मलाई ना हो, उसमें फुला दे, फ्रिज में ही रख दे उसको, और
1: अच्छा
0: फिर उसको अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। फिर उसमें थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी मिला करके घोल करके और उसको जहाँ जहाँ भी आपको टैनिंग है वहाँ लगा करके हल्के नॉर्मल पानी से, ठंडा नहीं हो क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो, थोड़ा ठंडा पानी से उसको धुल लें। आप देखेंगे आपकी त्वचा मतलब कि निखरने के साथ साथ थोड़ा कसाव भी महसूस होगा।
1: अच्छा, तो बहनों मुझे लग रहा है ये सारे नुस्खे शारदा जो है अप्लाई करती तभी इसके चेहरे पे निखार भी है। तो ये जो छोटे छोटे नुस्खे हैं हमारी बहनें भी जरूर आजमाती होंगी, तो बहुत सुंदर बताया। और इस सुंदर से निखार के जो घरेलू नुस्खे बताएं, इसी के साथ अगर बहनों को एक गीत सुना दें तो
0: तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गाना।

0: तो भाई शारदा, वास्तव में गीत तुमने बहुत ही
1: बहुत
0: सुंदर
1: प्यारा
0: चुना था,
1: गीत था दीदी।
0: है
1: हाँ
0: ना। और देखो, एक बात और मैं कहनी थी, आज हम लोग ने बहुत सारी बातें की महिलाओं से संबंधित, उनके समान वेतन से संबंधित बातें की, उनके उससे भी बातें की, रिटायरमेंट में कैसे अपनी। कुछ लोग या कुछ महिलाएं हमसे भी प्रश्न करती हैं जब कि, तो मैं हालांकि जब मुझे समय मिलता है अपने, जब भी प्रोग्राम में समय मिलता है तो उनको छोटी छोटी जानकारियां मैं जरूर देती हूँ। तो आज मैं कुछ सिविल रूल से संबंधित कुछ महिलाओं ने प्रश्न किया था मुझसे, तो
1: अच्छा
0: वो मैं सोच रही हूँ कि बता दूँ कि एक, जैसे कि मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट की न्यायालय में अगर कोई महिला या जो भी पीड़ित पक्ष है, अगर उसका मुकदमा, उसको लगता है कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, या जो मजिस्ट्रेट न्यायालय है उसके साथ उसने अच्छा, मतलब अच्छा आदेश नहीं दिया है, या उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या कर सकती है। तो वो उसके लिए सिविल रूल में ही सीपीसी की धारा 96 जो है, वो उसमें अपील का प्रावधान है, जिसके विरुद्ध वो जो मूल डिग्री है, यानी कि जब आदेश हो जाता है तो उसकी मूल डिग्री लेकर उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है, और कानून इसकी अनुमति देता है। और अपनी पक्ष, अपना पक्ष, लेकिन ये होना चाहिए जरूर कि जो बातें हम मजिस्ट्रेट की अदालत में हुए आदेश का जो हम लेके जा रहे हैं न्यायालय के अंदर, वो दस्तावेजीकरण हो, वो आदेश में सम्मिलित हो। ये नहीं कि जो हमारी जो ट्रायल की पोजीशन थी, जो हम लोअर कोर्ट के मुकदमे में जो हमने अब मुकदमे लड़े, वो मुकदमा मुकदमे में वो कहीं पार्ट ऑफ एनेक्चर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो होगा तभी उस पे अपील की सुनवाई हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात इसी से क्षेत्र से जुड़ा है कि अधिकार क्षेत्र क्या होगा। तो धारा 115 जो है, अधीनस्थ न्यायालय जो है, इस जो आदेश है, अगर अधिकार क्षेत्र का कोई गलत उपयोग करके अगर कोई आदेश पारित होता है, तो सीपीसी की धारा 125 जो रिवीजन है, वो कुछ परिस्थितियों में हाईकोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय की कार्रवाई की समीक्षा करने की शक्ति देती है। यानी कि कोर्ट को इनहेरेंट पावर है कि वो

0: उस ऑर्डर को चाहे अपील कर सकता है सेशन कोर्ट में, या कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे अगर मान लीजिए एक उदाहरण के स्वरूप मान लीजिए धारा 12 में हम कभी कभी क्या होता है कि 29 में सेशन कोर्ट में गए तो सेशन कोर्ट से भी हम संतुष्ट नहीं होते तो उसकी हम क्या करते हैं कि कॉपी निकाल के फिर हम डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि उसकी अपील या रिविजन, क्रिमिनल अपील तो है लेकिन रिवीजन नहीं है, तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील करते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा बहनों से भी चाहूँगी उनके बीच में रखूँ। इसी तरह धारा 100 है, इसी में जो सिविल प्रक्रिया है, सीपीसी की प्रक्रिया है, 100 है, तो इसमें हर अपील में हाई कोर्ट जाना है अगर तो संभव नहीं है। इसके लिए भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डायरेक्ट, कभी कभी क्या होता है कि मजिस्ट्रेट की अदालत में कोई ऑर्डर पास हुआ तो वो डायरेक्ट चले जाते हैं हाई कोर्ट, तो वो ऐसा हाई कोर्ट तब कभी कभी जिनको जानकारी नहीं होती है, विधिक जानकारी नहीं होती है, उनकी रिट खारिज भी हो जाती है। वो इसलिए खारिज हो जाती है कि क्योंकि उसके अपीलीय कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट के बाद जो है अपील होता है, अगर अपील में उस ऑर्डर को अगर वो डायरेक्ट ले आएंगे तो खारिज होएगा, क्योंकि उसका नियम है कि जो सीपीसी में जो अभी हमने बताया 96 में अगर वो अपील करेंगे तभी वो, उसके बाद अगर वहाँ आपकी सुनवाई नहीं होती है या आप खारिज हो जाते हैं तो अब आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, और इसी की जानकारी के बाद अगर हम लोग एक छोटा सा प्यारा सा और गीत सुन ले तो
1: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: भाई इस सुंदर से गीत में वास्तव में मेरे भी पैर थिरकने लगे और मन कहने लगा, मन मग्न मुग्ध होता है खुशी से नाचती हूँ मैं, कसौटी पर परस्पर नेह को जब जांचती हूँ मैं, मिलन की आस में सहसा तड़प उठता हृदय मेरा, तुम्हारी प्रेम की पाती को जब भी बांचती हूँ मैं। और भाई देखो अब समय भी अपने कार्यक्रम को कह रहा है कि समाप्त हो रहा है और हमारी जो अनाउंसर महोदय इशारा कर रही हैं, है ना
1: अरे तो, भाई दीदी क्यों ना हम अपने श्रोता बहनों से, आप इतना सुंदर बोली हैं तो एक संदेश दी कि बहनों आपको पता है हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, तो अपना हमें जरूर लिख भेजें, अपना संदेश जरूर दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250।
0: बिल्कुल, इससे हमें आज का कार्यक्रम कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताएं। और अपने कार्यक्रम का समय हो रहा है तो अपने बहनों से कहते हैं नमस्कार।

0: Group A match 2 encounter against Japan's Yui Na Sakamoto to seal a hard-fought 2-1 victory. The Indian debutant followed it up with a convincing 2-0 win over Cambodia's Kom Yin DY in Group A match 3. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, eastern Rajasthan, Gujarat, Lakshadweep, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds is expected to prevail over the Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. Both countries review bilateral cooperation and issues of mutual importance. Hindustan Aeronautics Limited to hand over LCA Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force in the presence of Defence Minister Rajnath Singh in Bengaluru today. Railways approve 493 crore rupee project for construction of new rail line between Mukundan and Gadchandur in Maharashtra. Security forces killed 2 Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur district of Jammu and Kashmir. Global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth to 7% for current financial year. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को एलसीए तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टैगबॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
2: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने UPI आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ये भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्रे ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री

0: दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS-4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
1: फुल ऑपरेशन क्लियरेंस प्राप्त LCA तेजस HTT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। यह रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 MHz पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
3: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम

0: नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीनी स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
2: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
1: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
3: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगरी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गांव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं।
4: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गांव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
1: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
0: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है नशा मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच

0: भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेग बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की युना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LC-Tejas और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। तो करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत विचार से, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी ने। लिखते हैं, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक सच्चा व्यवहार और प्रेम ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। आप सबका आभार संदेश भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल। ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी, सादर नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जो गीत कार्यक्रमों में जवानों उठो, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला, वो बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। सबसे बढ़िया मुझे देशभक्ति गीत लगे। आप सबके उम्दा संदेशों के लिए एक बार फिर से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर की उन मजेदार लेकिन साथ ही साथ गंभीर परंपराओं के बारे में रोचक जानकारियाँ। तो श्रोता मित्रों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अजब गजब परंपराओं की। अब तक हमने बात की उन जंगलों की, जहाँ लोगों को संदेश दिया जाता है कि जंगल मत काटो। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जिसे काटना तो दूर कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। पिछले दो दिनों में हमने जापान और रूस का भ्रमण किया। आइए अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में। वहाँ की खासी जनजाति एक अद्भुत पर्यावरण से जुड़ी परंपरा का पालन करती है। वहाँ के कुछ विशेष जंगलों को लाव क्यंटांग कहते हैं। खासी भाषा में लाव यानी वन और क्यंटांग यानी पवित्र होता है, यानी पवित्र वन या जंगल। इसे लेकर एक सुंदर लोक कथा है जो अलग अलग प्रकार से सुनाई जाती है। बहुत पहले की बात है, एक गाँव के किनारे घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली फूल, पक्षियों की आवाजें और बीच से बहती छोटी सी जलधारा। गांव के बच्चे उस जंगल को देखकर कहते, ये हमारा जंगल है। लेकिन गांव के बुजुर्ग उन्हें रोक कर कहते, नहीं, ये हमारा जंगल नहीं है, हम तो बस इसके रखवाले हैं। गांव के मुखिया और बुजुर्ग सबको यही समझाते, जंगल हमारा नहीं है, ये प्रकृति का वो वरदान है जिसकी रक्षा के लिए

0: हमें नियुक्त किया गया है। लोक कथा कहती है, एक दिन गांव में एक व्यक्ति को लकड़ी की जरूरत पड़ी। उसने सोचा, जंगल इतना बड़ा है, अगर एक पेड़ काट भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ पर पहला प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, उसे बुजुर्ग की बात याद आई, कुछ लेने से पहले इस जंगल से जरूर पूछना, क्योंकि ये जंगल तुम्हारा नहीं है। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। जितने भी लोग जंगल में पेड़ काटने आते, यदि उन्हें अपने बुजुर्गों की बात याद आ जाती तो वे भी अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ जाते। समय बीतता गया, एक पीढ़ी गई, दूसरी आई, फिर तीसरी। लोगों ने घर बनाए, खेती की, बाजार बनाए, लेकिन उस पवित्र जंगल को वैसा ही रहने दिया। न कोई पेड़ काटता, न शिकार करता, न वहां से लकड़ी उठाता, और जंगल वो हर वर्ष और घना होता चला गया। उसकी जड़ें मिट्टी को थामे रहीं, उसकी जड़ों ने और वनस्पतियों ने जल स्रोतों को संभाला, पक्षियों और छोटे जीवों को आश्रय मिला। लोग कहते, इस गांव में सबसे ज्यादा हरियाली है। श्रोताओं ध्यान से सुनिए, जब हम कहते हैं पेड़ लगाइए, जंगल बचाइए, जल बचाइए, तो खासी समुदाय की ये पुरानी परंपरा हमें एक और गहरी बात सिखाती है। वो ये कि प्रकृति की रक्षा केवल नियम बनाकर नहीं, उसके प्रति सम्मान पैदा करके भी की जा सकती है, क्योंकि नियमों से जो काम नहीं होते वे सम्मान देकर आसानी से किए जा सकते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, लोक कथा बताती है कि वहां एक जंगल को बचाने के लिए हजारों पहरेदारों या वन रक्षकों की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, हम जंगल के मालिक नहीं, रखवाले हैं। और शायद आज हमारी धरती को इसी विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो खासी समुदाय के पुराने लोगों ने दिया है, और वो विचार है, ये जंगल हमारा नहीं है, हम जंगल के रखवाले हैं। तो श्रोताओं, आप तो सुविचार भेजते ही रहते हैं, आज सुनिए उमंग कार्यक्रम की ओर से ये सुविचार। आज अगर हम परिवार और आसपास के एक पेड़ को सिर्फ पेड़ न मानकर परिवार का सदस्य मान लें, तो दुनिया और ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। अगर ये विचार आज हम धारण कर लें, तो शायद हमारी धरती थोड़ी और हरी हो जाए। शायद आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद दें कि हमने उन्हें केवल इमारतें नहीं, एक जीवित धरती भी विरासत में दी है। तो श्रोता मित्रों, कैसी लगी जानकारी पवित्र वन की, जरूर लिखकर बताइएगा। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताजा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF, और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को तुच्छ, निकृष्ट और छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी के काम आ सकता है।
1: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद।
2: अरे महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसीलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए।
4: शेर और चूहे की दोस्ती, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब सुनिए अबला को सबला बनाने वाली अबला। ये कार्यक्रम सुप्रसिद्ध भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस की पत्नी श्रीमती अबला बोस के जीवन और नारी उत्थान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताता है।
0: इतिहास में बहुत सारी नायिकाएं ऐसी भी हैं जिन्हें शायद बहुत अधिक स्मरण नहीं किया जाता, जिनका नाम दुनिया के प्रसिद्ध लोगों की सूची में नहीं मिलता, उनकी सराहना में प्रशस्ति गान नहीं लिखे गए और न ही उन्होंने अखबारों की सुर्खियां बटोरी, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया उसकी मिसाल दुर्लभ है।
5: जनस्मृति से भले ही वे नाम धूमिल और विस्मृत हो जाएं, लेकिन इतिहास उन्हें आदर सहित याद रखता है और कभी ना कभी उन्हें आभार सहित प्रकट अवश्य कर देता है। ऐसा ही एक नाम है अबला बोस का।

0: 19वीं सदी का अविभाजित भारत, देश में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार, दहेज जैसी कई स्त्री विरोधी कुप्रथाएं थीं, जिन्हें चाहकर भी समाप्त नहीं किया जा सका था। ऐसे समय में प्रादुर्भाव हुआ बंगाल की महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, संघर्षशील और नारी अधिकारवादी विदुषी अबला बोस का।
1: उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया, लेकिन कौन थी अबला बोस? बता दें, वे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की पत्नी थीं। जगदीश चंद्र बोस

0: पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी और जीव भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया।
1: कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यदि कहा जाए कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की सफलता के पीछे भी उनकी पत्नी अबला बोस का हाथ था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अबला बोस का जन्म 8 अगस्त 1865 को बरिशाल में हुआ था। बरिशाल तब अविभाजित भारत का हिस्सा था और अब ये बांग्लादेश में है।
0: अबला के पिता दुर्गा मोहन दास ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता और समाज सुधारक थे। अबला की मां ब्रह्ममयी परित्यक्त विधवा और घरेलू हिंसा के शिकार स्त्रियों के उत्थान के लिए काम किया करती थी। एक दिन की बात है, अबला की मां ब्रह्ममयी किसी मोहल्ले में रहने वाली मजदूर स्त्रियों का हाल चाल पूछने गई थी। उनके साथ अबला भी थी।
2: पानी ले आ रहा है?
0: कल रात तो फिर भी कर आ गया।
3: क्या बताऊं दीदी, रोज का यही है। हम औरतों की तो हालत बहुत बुरी है दीदी।
0: न कमाता है न धमाता है, ऊपर से रोज जमा था
3: दीदी।
0: अरे इनको तो
3: दीदी।
4: अरे आलोका, तुम सब ठीक तो है ना?
3: नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
4: अरे
3: जिस दिन आप परिवार वालों को समझाने आई थी,
4: हाँ हाँ,
3: उसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब फिर।
4: अब फिर क्या?
3: मुझको कहते हैं तू अपने आदमी को खा गई।
4: अरे?
3: हमारे साथ नहीं रह सकती, कहीं और अपना इंतजाम कर ले। कल रात मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ दीदी, मायके में भी कोई स्वीकार नहीं करेगा।
4: रो मत आलोका। आज तुम नारी रात्रि पाठशाला में ही रुक जाओ, मैं सारी महिलाओं के साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। बहनों कल सभी तैयार रहें।
5: जी दीदी।
4: हम सब आलोका के घर चलेंगे।
5: बिल्कुल चलेंगे।
4: आज इसके साथ हो रहा है, कल किसी के भी साथ हो सकता है।
5: जी दीदी।
6: जी दीदी,
5: हम सब तैयार हैं।
1: उन दिनों स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सिस्टर निवेदिता जैसे प्रगतिशील विचारों के प्रभावशाली लोगों के कारण समाज में परिवर्तन आ रहा था। इस कारण ब्रह्ममयी दीदी के नेतृत्व में आलोका जैसी अनेक स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा हो सकी।
0: बालिका अबला ने ऐसी बहुत सी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। वो ऐसे वातावरण और परिवार में पली जहां नारी उत्थान के लिए काम किया जाता था, नारियों को सशक्त स्वावलंबी और शिक्षित बनाने पर जोर दिया जाता था।
1: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना हुई। वे मात्र 10 वर्ष की थी कि तभी उनकी माता का देहांत हो गया। लेकिन अबला के बाल मन पर उनकी माता की जो छाप पड़ी वो आजीवन उनके साथ रही।
0: प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने बंग महिला विद्यालय और फिर बैथ्यून कॉलेज में दाखिला लिया और फिर मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वे मद्रास चली गईं, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।
1: लेकिन सेहत खराब होने के कारण वे बंगाल लौट आईं और कभी वापस चेन्नई नहीं गईं। वापस नहीं जाने का कारण था 23 वर्ष की आयु में उनकी सर जगदीश चंद्र बोस से शादी। ये था वर्ष 1887 का।
0: समय बदल रहा था। व्याख्यान देने और शोध कार्य के लिए

0: उनके पति सर जगदीश चंद्र बोस को अक्सर विदेश जाना होता था, तो वे भी उनके साथ हुआ करती थीं।
1: एक बार की बात है, शोध के सिलसिले में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए।

0: यूरोप और अमेरिका विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने उन देशों की महिलाओं की सशक्त सामाजिक, आर्थिक और रहन सहन की स्थिति को ध्यान से देखा। अबला बोस ने देखा कि यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत उन्नत है। किसी भी कार्यक्षेत्र और विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी उन्होंने देखा कि जितने पुरुष कर्मी थे लगभग उतनी ही स्त्रियां भी थी।
1: और यहीं से शुरू हुआ उनका आगे का सफर, जिसने एक गौरवशाली इतिहास रच दिया। एक और महत्वपूर्ण घटना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1917 में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि मिली।
0: लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बहुत से देशों के वैज्ञानिक इस अवसर पर निमंत्रित थे।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वेलकम्स यू ऑल एट दिस ओकेजन। We have gathered here to facilitate Dr. Jagdish Chandra Bose, the great scientist from India. Now, I request the President of Royal Society to confer knighthood to Dr. Bose. From today, he will be the esteemed Fellow of the Royal Society. Now, I request him to kindly come on the dais to receive the knighthood. And ladies and gentlemen, it is said, behind every successful man, there is a woman. So now I request the great woman, Lady Bose, his wife, to come on the dais. Give this lady a standing ovation.
0: तब से वे लेडी बोस के नाम से जानी जाने लगी। उस रात डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस अपनी पत्नी अबला बोस के साथ भोजन के बाद बातें कर रहे थे।
3: वाह, सचमुच खाना तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट था ना?
4: जी।
3: बैठो। अच्छा एक बात बताओ, आखिर बात क्या है? आज तुम थोड़ी चुप चुप सी लग रही हो।
4: नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं कुछ सोच रही थी।
3: सोच रही थी क्या?
4: मैं सोच रही थी कि यहाँ की स्त्रियाँ कितनी स्वतंत्र और सशक्त हैं। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ समाज में उनका बराबर का स्थान है, उनका भी सम्मान उतना ही होता है जितना कि पुरुषों का होता है।
3: बिल्कुल।
4: आपने देखा नहीं, आज आपके नाइटहुड सम्मान के दौरान आपकी पत्नी होने के नाते मुझे कितना सम्मान मिला।
3: हाँ, वो तो है अबला। इसीलिए इन लोगों ने इतनी तरक्की की है।
4: वो तो है। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे अपने देश की स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए।
3: हाँ।
4: हमें उन्हें शिक्षित और स्वावलंबी बनाने की जरूरत है।
3: बिल्कुल।
4: आपको नहीं लगता?
3: लगता है अबला, बिल्कुल लगता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात होगी। देखो अबला, तुम जो कुछ भी कर सकती हो जरूर करो। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
4: हाँ, हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही हमारे देश की स्त्रियों को उनका अस्तित्व दिलाएगी।
3: सही कहा तुमने, मुझे तुम पर गर्व है अबला। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा।
4: मुझे भी तो आप पर गर्व है। आपने विज्ञान में बड़ी साधना की है और अपने

0: मुझे अपना आसमान ढूंढना है।
1: बिल्कुल।
0: एक ऐसा आसमान जहां हमारे देश की स्त्रियां उड़ान भर सकेंगी, इज्जत से किसी आजाद परिंदे की तरह।
1: ऐसा ही होगा अबला, बिल्कुल ऐसा ही होगा।

0: फिर क्या था, यूरोप की यात्रा से वापस आकर वे लग गईं अपने अभियान में। अशिक्षा और पुरुषों पर आर्थिक और सामाजिक निर्भरता के कारण भारत में उस समय स्त्रियों की दशा दयनीय थी।
1: उन्होंने संघर्ष किया और 1919 में नारी शिक्षा समिति की स्थापना की, जिसका काम प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, उनके लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना, मातृत्व बाल केंद्र और विधवाओं हेतु कल्याण केंद्र खोलना था। उनके द्वारा खोले गए व्यावसायिक स्कूलों में विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर स्त्रियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और चमड़े का काम सिखाया जाता था।
0: इतना ही नहीं, अबला बोस के प्रयासों से कलकत्ता और झारग्राम में महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से महिला शिल्प केंद्र की स्थापना की गई।
1: अबला बोस के प्रयासों को देखते हुए बंगाल महिला शिक्षा लीग ने उन्हें अपना पहला अध्यक्ष बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और बंगाल में स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा। स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ने लगी।
0: अबला यानी लेडी बोस को बड़ी खुशी होती जब स्त्रियां उन्हें बताती कि शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से किस तरह उनके जीवन में खुशी आई है।
2: मेरी तो दुनिया ही बदल गई।
3: अरे दीदी, जब से बुनाई का काम सीखा है तब से घर वाला भी
4: बड़ी इज्जत करता है। जब बच्चे हैं ना, जब कमा के ले जाती हूँ।
3: दीदी, जिंदगी इतनी खुशहाल हो गई है कि क्या ही बताऊँ। जब से मैंने वो टोकरी बनानी शुरू की है, घर के कामों में भी बहुत मदद मिल जाती है।
4: देखो मेरा पर्स, ये मैंने ही बनाया है।
3: अरे अपनी बहुत खड़ी है, किसी के आगे क्यों मांगना। सही बात है, हमें नहीं मांगना चाहिए किसी से। अब तो हम अपना काम कर रही है, अब हम सशक्त बन रही है।
4: बिल्कुल।
0: इस समय तक अबला बोस देश की प्रभावशाली महिलाओं के संपर्क में आ चुकी थीं, जिनमें भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू, रमाबाई रानाडे, सिस्टर निवेदिता जैसी महिलाएं प्रमुख थीं। उन दिनों देश में महिलाओं को मताधिकार देने की बात चल रही थी। साल 1921 में भारत में पहली बार बॉम्बे और मद्रास में महिलाओं को मताधिकार मिला।
1: अबला ने बंगाल की महिलाओं के लिए आवाज उठाई और 1925 आते आते बंगाल की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा था,
5: मताधिकार के द्वारा अब बंगाल की महिलाएं भी समानता का अनुभव कर सकेंगी, ये सुनिश्चित कर सकेंगी कि उन्हें सम्मान पूर्वक जीने के लिए किसको चुनना है।

0: सन 1937 में उनके पति श्री जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने उनसे वादा लिया कि नारी उत्थान के कार्य को वे निरंतर करती रहेंगी। अबला ने महिलाओं के हक में काम करना जारी रखा और उनके हित के लिए अथक प्रयत्न करती रही।
1: अपने जीवन के अंतिम समय में वो दार्जिलिंग में बस गईं। 26 अप्रैल 1951 को इस महान महिला अधिकारवादी नेत्री लेडी अबला बोस का निधन हो गया।

देश उनके अतुल्य योगदान को श्रद्धा सहित स्मरण करता है और अपना आभार प्रकट करता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: अभी आप NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे उमंग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुने नन्ही दुनिया।

0: बच्चों
1: जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद। बच्चों आज हमारे साथ है रितंद्रा दीदी।
1: और हमारे साथ है शारदा दीदी।
0: दीदी हमारे जो नन्हे साथी है ना, ये स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने दोस्तों के साथ खूब खेलते हैं, खूब मस्ती
1: भाई ये तो
0: करते
1: सही
0: हैं।
1: बताया शारदा दीदी ने। और बच्चों एक बात मुझे कहनी थी कि भाई बच्चे जो है मन के बहुत सच्चे होते हैं और अच्छे अच्छे साथियों के साथ खेलते भी हैं, हेल्प भी करते हैं एक दूसरे की और एक दूसरे को सीख भी देते हैं। तो दोस्ती हमेशा बच्चों अच्छे बच्चों से करनी चाहिए, है ना? और कैसे बच्चों से, जिनके पास अच्छे अच्छे गुण हों, है ना? और इससे जो है हमारी दोस्ती भी पक्की रहती है और एक दूसरे को हम मदद भी कर सकते हैं। और बच्चों देखो बात दोस्ती की आ रही है, अच्छे दोस्तों की आ रही है, तो एक अच्छी बात और है कि शारदा दीदी आज आप लोग कभी कभी खाते हो ना घर में ठंडी ठंडी चीज़ें और उसको रखते हो फ्रिज में, तो कहते हो ना कि ठंडी, ये फ्रिज ठंडा कैसे करता है? तो आज इस बात ठंडा फ्रिज क्यों करता है ये शारदा दीदी बताएंगी, है ना?
0: बिल्कुल दीदी, ये तो सच में बहुत ही आश्चर्य की बात है कि फ्रिज में कोई भी सामान, कोई भी चीज़ इतना ठंडा क्यों हो जाता है। चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे कुछ भी हो। तो बच्चों फ्रिज असल में अंदर ठंडक नहीं पैदा करता, बल्कि वो अंदर की गर्मी को खींच कर बाहर फेंक देता है। और ये पूरा काम एक खास लिक्विड गैस, जिसे हम रेफ्रिजरेटर या कूलेंट कहते हैं, की मदद से होता है। ये प्रक्रिया कई मुख्य चरणों में होता है। पहली चरण, गर्मी खोजना। फ्रिज के अंदर की दीवारों के पीछे पतले पाइप होते हैं, जिसमें ठंडा रेफ्रिजरेटर लिक्विड बहता रहता है, जिसके अंदर रखी चीज़ें जो हवा की गर्मी को यह लिक्विड सोख लेता है। गर्मी मिलते ही यह लिक्विड उबल कर गैस वाष्प जैसा बन जाता है। दूसरा चरण, अब यही गैस फिर कंप्रेशर में जाती है, जो फ्रिज का दिल कहलाता है। कंप्रेशर इस गैस को जोर से दबाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल में हवा भरने पर पंप गर्म हो जाता है, वैसे ये भी दबने के बाद गैस बहुत ही गर्म हो जाता है और हाई प्रेशर वाली हो जाता है। और तीसरा चरण अब आया, गर्मी के बाहर, गर्मी जो उसके अंदर हो उसको बाहर छोड़ना। यह गर्म गैस फ्रिज के पिछले लगी काली जाली वाले पाइपों में भेजी जाती है। यहाँ गैस अपनी सारी गर्मी बाहर कमरे की हवा में छोड़ देती है और जो वापस लिक्विड बन जाती है। फिर चौथा चरण आया, दबाव कम होना या दोबारा ठंडा होना। इसके बाद लिक्विड एक बहुत ही पतले पाइप से गुजरता है। इसका दबाव अचानक कम हो जाता है, जिससे वह अत्यधिक ठंडा हो जाता है। ये ठंडा ठंडा घोल फिर से फ्रिज के अंदर की कॉइल में घूमने चला जाता है और ये चक्र लगातार दोहराया जाता है, जिससे फ्रिज ठंडा ठंडा कूल कूल बना रहता है।
1: और जो हमारे नन्हे मुन्ने साथी हैं दीदी शारदा दी, वो ठंडी चील छोड़िए, गर्मियों में मैंने देखा खूब चिल्ड पानी पीते हैं, जो कि कभी कभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है, लेकिन हमारे बच्चे इसका ध्यान रखेंगे,
0: बिल्कुल।
1: है ना?
0: और आजकल तो देखिए ना दीदी, मौसम
1: हाँ।
0: बदल रहा है ना, तो ऐसे में बच्चों फ्रिज का रखा कोई भी चीज आप खाने से थोड़ा बचिए। खास तौर से ठंडा पानी हुआ, ठंडी आइसक्रीम वगैरह, ये सब तो बिल्कुल ही ना खाएं, है ना दीदी?
1: बिल्कुल। और अब बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी दी है, इतने अच्छे हम लोगों ने बातें की हैं बच्चों से, तो बच्चों को क्यों ना एक गीत प्यारा सा सुनवा दिया जाए।

0: तो बच्चों भाई गीत पसंद आया ना। और भाई देखो, हम आज बच्चों को बहुत चीज़ें बताए हैं कि बच्चे अपना ध्यान रखें, है ना, और एक अच्छे जो दोस्त हैं उनके गुणों को पहचानें और अच्छे बच्चों से दोस्ती करें,
1: और खुद भी
0: है
1: दीदी
0: ना।
1: अच्छे बने ताकि उनसे भी अच्छे बच्चे दोस्ती करें और ये भी अच्छे बच्चों से जैसे अच्छी चीजें सीखते हैं वैसे सामने वाले भी इनसे अच्छी चीजें सीखें, है
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: और कभी कभी ऐसा नहीं है, जो समझदार बच्चे हैं ना, तो देखो स्वभाव होता है एक, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो समझते हैं कि कौन बच्चा, बच्चों से हम क्या चीज़ सीख सकते हैं। या खेलने के मैदान में मैं देखती हूँ, पार्क में जो बच्चे खेलते हैं शारदा दीदी, तो बच्चे जो हैं वो उन्हीं बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं जो बच्चे उनको आमंत्रित करते हैं, भाई चलो हमारे साथ आके खेलो, है ना। तो अच्छे गुणों वाले बच्चों को पहचान भी लेते हैं, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: दीदी, कहने को यही है कि अपने अंदर बच्चों द्वेष, जलन, अहंकार ऐसी कोई भावना मत
0: बिल्कुल।
1: रखिए, सब बच्चों को एक समान मानिए, तभी आप खुश रहेंगे।
0: हाँ, और शारदा दीदी, इसी के साथ अपने कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है, तो बच्चों से कहते हैं जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए विद्यालय में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित मंजरी वी महाजन के साथ बातचीत। संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शिक्षिका है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में अपने गवर्नमेंट स्कूल में, जिसकी वो प्रिंसिपल है, वहां पर बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागृति पर बहुत बहुत बढ़ावा दिया है। और साथ ही साथ उन्हें अभी 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। मंजरी वी महाजन जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में मंजरी जी, और सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई जो आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
3: धन्यवाद
2: मंजरी जी। अगर हम खास तौर से प्रकृति की बात करें, पर्यावरण के प्रति जो आपने एक संवेदनशीलता दिखाई है और अपने विद्यालय के द्वारा बच्चों में भी उसके प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया है, हमें बता सकती हैं कि कौन सा आपको सबसे प्रमुख पहलू लगता है?
3: हमने एकेडमिक्स के साथ साथ एनवायरमेंटल एजुकेशन पर बहुत फोकस किया है और बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो अध्ययन होता है वो मात्र किताबों से ही नहीं होता। जब हम प्रकृति में जाते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे और ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं।
2: सीख सकते हैं, और प्रकृति हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका संरक्षण। तो आप हमें बता सकते हैं कि एक जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वेस्ट मैनेजमेंट का, उस दिशा में आपने कौन कौन सी पहल है जो आप हमें शेयर करना चाहेंगी ताकि हमारे जो श्रोता है वो भी उससे प्रेरणा ले सके?
3: हमारे स्कूल में विद्यार्थियों ने वेस्ट के ऊपर बहुत काम किया है, वेस्ट सेग्रीगेशन के ऊपर, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे हम वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, जो वेट वेस्ट होता है उसे हम कंपोस्टिंग के लिए डाल देते हैं, और जो ड्राई वेस्ट होता है, खासकर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसे कैंपस से इकट्ठा करके या सराउंडिंग से इकट्ठा करके हम पंचायत में डिपॉजिट करा देते हैं। तो इस तरह से वेस्ट को मैनेज।
2: तो वेट वेस्ट जब आप कह रही हैं, तो वेट वेस्ट में थोड़ा सा अगर हमें विस्तार से बता सके कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो वेस्ट वेस्ट में आती हैं?
3: वेट वेस्ट में आ जाता है जैसे किचन वेस्ट होता है, वेजिटेबल पील्स हैं, और गार्डन वेस्ट है, लीव्स हैं, फॉलन लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, ये सब वेट वेस्ट में आ जाते हैं।
2: सो जो भी बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं, सो इनको आप कह रहे हैं कि इनको एक जगह आप इकट्ठा करते हैं। तो जो आपने कंपोस्टिंग की बात करी, थोड़ा हमें सरल शब्दों में समझा सकती हैं कि कंपोस्टिंग क्या है और क्यों आप कंपोस्टिंग पर इतना बल दे रहे हैं?
3: कंपोस्टिंग में क्या है कि जो वेट वेस्ट होता है इसको हम एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट में डाल देते हैं। बच्चे काम करते हैं, हमारे टीचर्स भी उनको गाइड करते हैं, मैं खुद बच्चों के साथ लग जाती हूँ, और साथ में अर्थवॉर्म्स डाले जाते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और कुछ दिनों के बाद ये जितना भी वेट वेस्ट होता है ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कंपोस्ट बनती है उसे हम यूज कर लेते हैं किचन गार्डन में, हर्बल गार्डन में, या एज पॉटिंग मिक्स। तो ये तो बहुत बेनिफिशियल है, कंपोस्ट हमें आराम से फ्री में मिल जाती है।
2: तो इससे आपको लगता है कि जो बच्चे हैं जो आते हैं, आपके जो छात्र हैं, उनमें भी एक अवेयरनेस पैदा होती है कि हम किस तरह से कूड़े से भी वैल्यू निकाल सकते हैं?
3: एक्चुअली उन्होंने पहले बुक्स में पढ़ा था कि कंपोस्टिंग होती है, वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, ये प्रोसेस है, लेकिन जब वो खुद करते हैं तो फिर उनको ज्यादा अच्छे से नॉलेज मिलता है, और मैंने देखा वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, वो पूछते भी हैं, मैम कितना टाइम लगेगा इसे बनने में, अब ये बन गई अब इसका क्या करेंगे। तो मैंने देखा वो इंक्विजिटिव बनते हैं जब हम उन्हें ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं।
2: एकेडमिकली तो ये सब चीजें सिखाई ही जाती है, डेफिनेशन क्या है, लेकिन यहाँ पर आप एक प्रैक्टिकल उनको वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं जिसको वो आगे चलकर अपनी पूरी जिंदगी में उसको अपना सकते हैं।
3: बिल्कुल।
2: और एक और जो पहलू है पानी का, उसके प्रति किस तरह से आपने उसमें कार्य किया है ताकि उसके जल का जो एक मूल्य है कि जल का संरक्षण करना कितना जरूरी है इसको बच्चे समझ पाए?
3: इसके लिए बच्चों को गाइड किया जाता है कि वो वाटर को वेस्ट ना करें, टैप्स को बंद रखें, इवन जो वेस्ट वाटर होता है जैसे जो टैप से आ रहा है उसको हमारी कोशिश रहती है

0: होती है कि उसको यूज करें, हम रीयूज करें फ्लावर बेड्स के लिए. और स्कूल में सोक पिट लगाया गया है, वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं जिनमें हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं, रेन वाटर को, और जब जरूरत होती है तो प्लांट्स के लिए उनको हम यूज कर लेते हैं वाटरिंग के लिए.
1: सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसके लिए आपने काफी कार्य किया है.
0: रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, मैंने अभी आपसे बताया, स्टोरेज टैंक में हम उसे इकट्ठा कर लेते हैं रेनी सीजन में. और जैसे जैसे फिर सीजन चेंज होता है, वाटर स्केर्सिटी होती है, तो वहां से हम पानी निकाल कर प्लांट्स को दे देते हैं.
1: सो आपको लगता है कि इससे बच्चों में एक अवेयरनेस पैदा होती है कि ये अपने घर जाके अगर जब बताते हैं बाकी लोगों को कि इस तरह से हमारे स्कूल में हो रहा है, तो पूरा जो वो कम्युनिटी है उसमें भी इस तरह के फिर एफर्ट्स और लोग भी करते हैं.
0: बच्चे घर जाते हैं, मदर्स को बताते हैं, तो जब हमारी स्कूल की मीटिंग्स होती हैं, पीटीएम्स होती हैं, तो मैंने देखा जो मदर्स आती हैं वो हमें बताती हैं कि हमारे बच्चे तो हमें भी घर में कूड़ा नहीं फेंकने देते इधर उधर, कहते हैं इसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करो, मम्मा नलका मत चलाओ ऐसे, हमें स्कूल में सिखाया गया है कि पानी वेस्ट नहीं करना है. तो मैंने देखा कि ये जो हम स्कूल में सिखाते हैं वो घरों

0: बच्चे घर जाते हैं, मदर्स को बताते हैं, तो जब हमारी स्कूल की मीटिंग्स होती हैं, पीटीएम्स होती हैं, तो मैंने देखा जो मदर्स आती हैं वो हमें बताती हैं कि हमारे बच्चे तो हमें भी घर में कूड़ा नहीं फेंकने देते इधर उधर, कहते हैं इसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करो, मम्मा नलका मत चलाओ ऐसे, हमें स्कूल में सिखाया गया है कि पानी वेस्ट नहीं करना है। तो मैंने देखा कि ये जो हम स्कूल में सिखाते हैं वो घरों तक पहुंच ही जाता है।
1: आप हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे और जो बच्चे सुन रहे होंगे और छात्र सुन रहे होंगे, उनके लिए बता सकती हैं कि जो ये प्लास्टिक्स है ये कितना हार्मफुल है और इसको अलग से जब हम वेस्ट सेग्रीगेशन करते हैं उस पर इतना बल क्यों दिया जाता है?
0: प्लास्टिक जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो जब हम इसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ डाल देंगे तो जो बायोडिग्रेडेबल है वो तो डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन ये डिग्रेड नहीं होगा, ये एनवायरमेंट में कई ईयर्स तक कैसे ही रहता है। तो इसको सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है ताकि हम इसको सेग्रीगेट करें और इसको फिर प्रॉपरली मैनेज कर सकें, रिसाइकल कर सकें।
1: तो ये रिसाइकल की जो बात कर रही है, सिंगल प्लास्टिक यूज, हमने सुना भी है कि हिमाचल प्रदेश में इसके बारे में काफी ज्यादा एक जागरूकता है कि जो प्लास्टिक, जैसा आप कह रही हैं कि जब वो हमारे जलाशय में जाता है या कहीं भी जाता है तो उससे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो इसके बारे में आप इसको रिसाइकल करने के या अपसाइकल करने के क्या आपके एफर्ट्स हैं?
0: एक तो ये है कि मेरे एरिया में बरसात में बहुत ज्यादा रेन्स होती हैं, तो हमने देखा कि जो वेस्ट इधर उधर पड़ा होता था वो पानी से बहकर सारा ही कोई सड़क के किनारे अक्सर हमने देखा, वो हमें दिखाई देता था। तो मैंने फिर अपने बच्चों को मोटिवेट किया कि देखो बच्चों, किस तरह से हमारी जो ये बावड़ी है, हमारे स्कूल के पास कुछ बावड़ियां हैं तो वहां बहुत प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठी होती थी, तो मैंने बच्चों को गाइड किया और दिखाया कि देखें आप किस तरह से जो प्लास्टिक है ये खराब कर रहा है इनको, तो बच्चे भी थोड़े से उनमें अवेयरनेस आई और फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि एटलीस्ट हमारे जो सराउंडिंग्स में प्लास्टिक वेस्ट है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, हम इसे इकट्ठा करें और फिर इसे पंचायत में दे दें। इसके साथ ही एक और बताना चाहूंगी, जो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं तो हम इनको भी इकट्ठा करते हैं, मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स और हम सब टीचर्स मिलकर सराउंडिंग से, और इनको हम एक पुणे बेस्ड एनजीओ है वहां पर डोनेट कर रहे हैं, और वो जो एनजीओ है वो इनको अपसाइकल करती है, तो हमारा ये भी इनिशिएटिव है।
1: तो अपसाइकल का थोड़ा सा हमें अगर बता सके,
0: अपसाइकल
1: मतलब
0: में ये है कि जो हम वेस्ट रैपर्स उनको भेजते हैं वो एनजीओ उनको कटिंग वटिंग करके उनसे कुछ प्रोडक्ट्स बना लेती है, जैसे बैग्स बना लेगी, कोस्टर्स बना लेगी, तो इस तरह से वो एनजीओ जो है वो इनको रीयूज कर रही है।
1: आप कह रही कि बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, उनके साथ मिलके ये सारा कार्य किया जाता है, कितना चैलेंजिंग होता है बच्चों को प्रेरित करना, क्योंकि स्कूल का एक इमेज कई बार होता है कि वहां आप गए, आपने पढ़ाई करी, एग्जाम दिया, लेकिन ये जो एडिशनल डायमेंशन है कि एनवायरमेंट के प्रति इस तरह की जागरूकता और इस तरह के जमीनी स्तर पर प्रयास करना, उसके लिए प्रेरित करना बच्चों को कितना चैलेंजिंग होता है?
0: मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये था कि मैं जिस स्कूल में काम कर रही हूँ वो रूरल एरिया का स्कूल है, तो जिसकी वजह से वहां पर जियोग्राफिकल कंडीशंस तो डिफिकल्ट है ही, इसके साथ अवेयरनेस की बहुत कमी है, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, ज्यादा अवेयर नहीं होते, डिजिटल नॉलेज नहीं है इतना, डिजिटल डिवाइड है, ना इंटरनेट फैसिलिटीज अच्छी चलती हैं, कई बार उनके पास फोन्स नहीं होते, जिसकी वजह से उनको इन चीजों का ज्यादा नॉलेज नहीं है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से मुझे ज्यादा चैलेंजेस रहे उनको समझाना, उनको ये इम्पोर्टेंस बताना कि वेस्ट को मैनेज करना क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन धीरे धीरे हमने प्रयास किए, टीचर्स ने प्रयास किए, मैंने खुद मॉर्निंग असेंबलीज में बच्चों को गाइड किया, इन्वॉल्व किया, तो वो समझने लगे।
1: तो टीचर्स भी साथ में इन्वॉल्व होती हैं तो फिर बच्चों को लगता है कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए हमने पंचायत मेंबर्स को भी इन्वॉल्व किया, हमने प्रोजेक्ट किया, 2 साल से मैं कर रही हूँ, वेस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी का प्रोजेक्ट है विप्रो अर्दियन की तरफ से, और ये जो प्रोजेक्ट किया तो इसमें हमने कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया, और दोनों ही सालों में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल लेवल पर सिलेक्ट हुआ। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैंने देखा बच्चों में बहुत अवेयरनेस आई, वो छोटी छोटी टर्म समझने लगे और वो इम्पोर्टेंस समझने लगे कि वेस्ट को मैनेज करना क्यों जरूरी है।
1: तो आपको राजकीय स्तर पर भी अवार्ड्स मिले हैं एनवायरमेंट से जुड़े हुए, थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या आपके ऐसे प्रयास थे जिनके लिए आपको सम्मानित किया गया?
0: इसी वर्ष 5 जून को एनवायरमेंट डे वाले दिन हमें हमारे स्कूल को एनवायरमेंट लीडरशिप का अवार्ड मिला, और इसमें हमें 50,000 का प्राइज मिला है, और ये जो अवार्ड है ये हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमें यह अवार्ड दिया, और पिछले वर्ष भी इसी दिन 5 जून को ही हमें वेस्ट वॉरियर का अवार्ड मिला था, वो भी हमें हमारे जो माननीय सीएम हैं उन्हीं से मिला था, तो दोनों ही बार हमारे स्कूल को ये सम्मान मिल चुका है, और ये सम्मान मिला है जो

0: हमने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ की हैं स्कूल में उसके लिए।
1: तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या है, थोड़ा सा आप और विस्तार से बता सकती हैं?
0: सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से हम पॉल्यूशन को कम कर सकें और हमारी जो आने वाली जनरेशंस हैं उनके लिए हम क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें।
1: जी, सो आपने क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट की बात करी, तो आपका जो कैंपस है उसमें भी आपने एक कहें कि एक छोटे लेवल पर इसको अडॉप्ट किया है?
0: जी बिल्कुल, खूब सारे प्लांट्स लगाए गए हैं, किचन गार्डन है, हर्बल गार्डन है और मैंने तो नेस्ट भी इंस्टॉल करवाए हैं और उनमें जो बर्ड्स हैं वो जब नेस्टिंग सीजन होता है तो आकर रहते हैं। मेरे बच्चे जो हैं स्कूल के वो उनको देखते हैं, मुझे बताते हैं, मैम आज उस नेस्ट में एक हमने स्पैरो को जाते देखा, फिर कोई और बच्चा आता है वो कहता है मैम हमने वहां से निकलते हुए देखा। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे भी ये चीजें नोटिस करते हैं, खुश होते हैं। और
1: जी बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे जीवन का, सभी का जो भी लिविंग बींग है, वो है खाना। खाने में भी प्रकृति में हमें तरह तरह के खाने उपलब्ध है, तरह तरह के खाद्य पदार्थ उपलब्ध है और अब जिस तरह का जो एक रिवाइवल हो रहा है पुराने जो मोटे अनाज थे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उसके बारे में एक इंटरेस्ट, जागरूकता फैलाने की तरफ भी आपका कोई प्रयास है?
0: हमारे स्कूल में भी जब हम फूड फेस्टिवल्स लगाते हैं बैग फ्री डेज वाले दिन, तो उसमें जो है मिलेट रेसिपीज को प्रमोट किया जाता है, ट्रेडिशनल फूड्स को प्रमोट किया जाता है।
1: आपने फूड फेस्टिवल की बात करी, उस संदर्भ में आपने जो बैग फ्री डे की बात करी, ये क्या कॉन्सेप्ट है?
0: बैग फ्री डेज होते हैं, ये गवर्नमेंट के निर्देश हैं, हमें साल में 10 बैग फ्री डेज होते हैं और इन डेज वाले दिन बच्चे जो हैं 6 से 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना बैग के स्कूल में आते हैं।
1: अच्छा, बिना किताबों के
0: आते हैं और इसका मकसद ये है कि बच्चों को बियॉन्ड द बुक्स लर्निंग कराई जाए। तो उस दिन हम बच्चों को इसी तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराते हैं और उन्हें सिखाया जाता है बिना बुक्स के।
1: जी,
0: क्योंकि नॉलेज होता है वो बुक से ही नहीं मिलता। कई बार एक हमारे कैंपस में जो प्लांट लगा है वो इटसेल्फ एक बुक बन जाता है, कई बार बारिश की बूंदें बुक्स बन जाती हैं, तो कई बार बीज से निकलता हुआ पौधा भी एक बुक बन जाता है। तो ये कोशिश रही है हमारी कि हम बच्चों को बियॉन्ड द बुक्स और बियॉन्ड द क्लासरूम टीचिंग कराएं।
1: तो ये जो आप 10 बैग फ्री डेज बता रही हैं जिसमें आप कह रही हैं कि बियॉन्ड द बुक्स किताबी जो एक शिक्षा है उसके बियॉन्ड आपके प्रयास होते हैं, तो उसमें किस तरह की, क्या कोई प्रदर्शनी लगा हैं या कोई एक्टिविटीज?
0: इन डेज वाले दिन हमने बहुत बार बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एग्जीबिशंस लगाई हैं, जहां पर बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से कुछ आर्टिकल्स बनाए होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स या कोई भी यूजफुल आइटम्स, तो उनकी एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं स्कूल में। और मेरे एरिया में ग्रास होती है जिसे बग्गड़ ग्रास कहते हैं, तो बहुत साल पहले जो लोकल लोग होते थे वो इस ग्रास से प्रोडक्ट्स बनाते थे, जैसे बैठने के लिए लोकल भाषा में कहते हैं बिन्ने बनाते थे, रूम्स बनाते थे, लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से ना ये जो आर्ट है ये अब खत्म हो रहा है। तो मैंने अपने बच्चों को इससे जोड़ने की कोशिश की है, तो बैग फ्री डेज वाले दिन ही मैं जो लोकल आर्टिसंस हैं उनको स्कूल में बुलाती हूँ, वो बच्चों को सिखाते हैं स्टिचेस लगाना कि किस तरह से इस ग्रास से प्रोडक्ट बन सकता है। और अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बना रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स बनाने लगे हैं, जैसे पेन स्टैंड्स बनाते हैं या वॉल हैंगिंग। तो मैंने देखा कि इस आर्ट के लिए उनमें अब इंटरेस्ट आ गया है।
1: सो एक आर्ट के साथ साथ आपको लगता है कि आगे चलकर शायद उनके लिए एक व्यवसाय भी कुछ बच्चों के लिए बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो सरकार है खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है हमारी जो ट्रेडिशनल वेल्थ है उसको, चाहे वो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हो, तो आपको लगता है कि जो ये इनिशिएटिव है ये आगे चलकर बच्चों को बहुत लाभान्वित भी कर सकता?
0: बिल्कुल करेगा, ये स्किल डेवलपमेंट उनकी हो रही है और आगे जाकर वो इसको एज ऑक्यूपेशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं।
1: तो आप कोई ऐसे कोई एग्जांपल्स बता सकती हैं कि जिन पे इम्पैक्ट हुआ हो, जो भी आपके खास आप कदम उठा रही हैं आउट ऑफ यू नो द आउट ऑफ कैरिकुलम, उससे जो उनको इम्पैक्ट हुआ हो, कोई ऐसे कोई आपके पास उदाहरण हो जो बच्चे बहुत उससे प्रेरित हुए हो?
0: बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है और जो मैंने देखा उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव हुई हैं, क्योंकि जब हम उन्हें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं तो हम उनके व्यूज़ लेते हैं, तो वो अब एक्सप्रेस करना सीख गए हैं। और मैंने कई बार देखा, मैं कई बार गुजर रही होती हूँ तो पीछे से आपस में बात कर रहे होते हैं कि सपोज किसी ने टॉफ़ी पकड़ी है तो वो दूसरा कहता है इसे मत फेंकना, तो क्यों ले आया स्कूल, ये तो अलाउड नहीं है। तब मैंने देखा कि थोड़ा उनमें है कि हमें ये काम नहीं करना है और रैपर्स और इन सबको इधर उधर नहीं फैलाना है।
1: सो मंजरी जी, एक और चीज है कि जिस तरह की अभी

0: प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, या जो एक ग्लोबल वार्मिंग की जो एक संकट है पूरे विश्व के सामने, आपको लगता है कि इसके बारे में भी एक लोकलाइज लेवल पर भी जागरूकता फैल रही है इन प्रयासों से? और कहते हैं कि जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम प्रकृति का जहां तक हो सके संरक्षण करें, वो बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल ज़रूरी है, और ख़ासकर जब हम बच्चों को इसके लिए गाइड करते हैं तो वो जिस स्टेज से गुजर रहे हैं वो इस स्टेज में सीखेंगे, वो ताउम्र उनके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है कि एज टीचर्स हमारा ये बहुत रोल है कि हम बच्चों को प्रॉपरली गाइड करें और उन्हें एनवायरमेंट के साथ जोड़ें।
0: जो एनवायरमेंट के साथ जोड़ने का आपका प्रयास है बच्चों का, ये कौन सी कक्षा से शुरू होता है?
1: हमारे पास 6th ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स हैं 12th तक, तो बस जब से वो आ जाते हैं हमारे पास तो हमारा प्रयास रहता है कि अब हम इनको थोड़ा थोड़ा गाइड करना शुरू कर दें।
0: सो आपको लगता है कि अब जो आप कहें कि उत्साह सब बच्चों में पैदा हो गया है, या एक स्टेज होती है शुरू में आपको लगता है कि थोड़ी रेजिस्टेंस होती है और फिर धीरे धीरे ये उत्साह बढ़ता है?
1: धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से तो नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं जब 6th में आते हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे फिर स्कूल में डेली इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिविटीज में सीखते हैं, तो फिर उनको उसकी आदत पड़ जाती है।
0: पंजरी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम व्यापक तौर पर बात करें, पूरे देश की बात करें, आप अपने एक्सपीरियंस से अगर बता सकें, स्कूल्स कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को? ये जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक बहुत बड़ा मुहिम है जो पूरे विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को?
1: स्कूल्स का तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, टीचर्स का, हेड्स का, क्योंकि हमारे बच्चे उस स्टेज से गुजर रहे होते हैं जिसमें जो वो सीखते हैं वो पूरी उम्र उनके साथ रहता है। तो टीचर्स का बहुत रोल है, हेड्स का रोल है कि उनको प्रॉपरली गाइड करें और एनवायरमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश करें, बच्चे जाहिर है सीखेंगे।
0: इसमें एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करना जरूरी होगा, किस तरह से उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है?
1: इसमें उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी
0: ओके।
1: बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को इन्वॉल्व किया जाता है तो मुझे लगता है तब वो ज़्यादा सीखता है। ऐसे हम उसे पढ़ाएंगे, बुक से पढ़ाएंगे, तो शायद वो इतने डेप्थ में नहीं जाता, तो उनको इन्वॉल्व जितना करेंगे तो वो ज़्यादा
0: मतलब
1: अच्छा,
0: कोलैबोरेटिव
1: बिल्कुल
0: अप्रोच
1: कोलैबोरेटिव अप्रोच रहनी चाहिए, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए।
0: मंजरी जी, इको फ्रेंडली एक अप्रोच डेवलप करने के लिए आपके स्कूल में क्या इको क्लब है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या है उसका प्रमुख पहलू?
1: जी हमारे स्कूल्स में इको क्लब्स ऑपरेट करते हैं, तो हमारे स्कूल में भी इको क्लब है, इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। तो ये जो इको क्लब है इसकी मैं खुद इंचार्ज हूँ, मैंने इसे अपने पास रखा है ताकि मैं बच्चों के साथ कनेक्टेड रहूँ और बच्चों को एनवायरमेंट कॉन्शियस बना सकूँ।
0: सो इको फ्रेंडली एक्टिविटीज जो आप कह रही हैं, वो क्या एक्टिविटीज मेन है?
1: वो एक्टिविटीज़ यही हैं कि किस तरह से हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को डिस्करेज कर सकते हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन कर सकते हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स इसमें आ जाती हैं, और इस तरह से ग्रीन प्रैक्टिसेस, क्लीनलीनेस, ये सब, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर स्टोरेज, वाटर वेस्टेज को कैसे रोक सकते हैं, ये सब इसके अंडर आ जाती हैं इको फ्रेंडली एक्टिविटीज।
0: जमीनी तौर पर इन एक्टिविटीज को एक्चुअली बच्चे जो हैं वो करते हैं आपके
1: वो करते हैं बिल्कुल
0: गाइडेंस में?
1: बिल्कुल करते हैं।
0: सो मंजरी जी, मैं आपको बहुत बहुत मुबारक फिर से देना चाहूंगी पर, और राजकीय स्तर पर तो ऑलरेडी आपका जो काम है उसको अप्रिशिएट किया गया है बहुत बड़े वे में, और आप ये कार्य करते रहें, और आपको बहुत बहुत आगे के लिए भी हमारी बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
1: जी धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विद्यालय में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित मंजरी वी महाजन के साथ बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हो चुके हैं। लीजिए हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी।

मीडिया एंड जर्नलिज्म में एक टर्म है ग्लोबल विलेज, जिस वर्ड का यूज सबसे पहले मार्शल मैकलुहान ने 1962 में किया था। ग्लोबल विलेज यानी वैश्विक गांव। उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट का दायरा इतना बढ़ जाएगा कि पूरी दुनिया एक गांव जितनी सिमट जाएगी, और ये बात आज सच होती दिख रही है। मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट ने हमारी लाइफ को, इवन हमारी थिंकिंग को भी काफ़ी लिमिटेड कर दिया है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि फोन्स पर आने वाली हर चीज़, हमारा हर फीड केवल हमारी अपनी उपज नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम का जाल है। हम अपने फ़ोन से दुनिया के हर कोने से तो कनेक्टेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसी बीच हम खुद से, अपनी रूट से डिसकनेक्टेड होते जा रहे हैं। हो सकता है मेरी ये बात वन साइडेड लग सकती है आपको, लेकिन आप इस बात को अगर एक ओपिनियन के तौर पर नहीं बल्कि व्यवहारिक तौर पर देखें और समझें तो आप भी इस बात से अग्री करेंगे। यही वजह है कि आज की हमारा चर्चा का विषय है, स्क्रीन से मैदान तक युवा खेलों की ओर कैसे लौटें। आप बने रहिए मेरे यानी पूजा यादव के साथ, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सोल स्ट्रिंग रोमांटिक सैड सॉन्ग के साथ।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: जो भी यूथ ऑनलाइन गेम खेलते हैं ना, उनमें भी ये स्पिरिट रहती है कि जीतना ही है, लेकिन वो इस माइंडसेट को अक्सर फन में टाल देते हैं। लेकिन मैदान में खेलने वाले गेम को एक जंग की तरह लेते हैं, वहाँ अपना बेस्ट देना मैंडेटरी है, और जो टीम हार भी जाए वो जीतने वालों को इज्जत देती है इस उम्मीद के साथ कि अगली बार ताज हमारा होगा, एंड दैट्स द डिफरेंस। आप गेम के फॉर्मेट को ऑनलाइन फोन स्क्रीन पर उतार सकते हैं, लेकिन वो माइंडसेट आप नहीं उतार सकते जो ग्राउंड में खेल रहे स्पोर्ट पर्सन के पास होती है। डिजिटल क्रांति के इस दौर में हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, वीडियो गेम ने हमारी दुनिया को हमारी उंगलियों पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन इस सुविधा की सबसे बड़ी कीमत वही यूथ उठा रहे हैं जो इनके कंज्यूमर हैं। ऐसे में ये सवाल बेहद गंभीर हो जाता है कि यूथ को डिजिटल लत से निकाल कर खेल के मैदान तक कैसे लाएं।

0: ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
2: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें

0: 8700142424 पर
1: 8700142424।
2: आज मैदानों में बच्चों की खिलखिलाहट और युवाओं का शोर कम सुनाई देता है। क्रिकेट के मैदान से लेकर फुटबॉल के गोल पोस्ट तक खाली पड़े रहते हैं, जबकि ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर युवाओं का तांता लगा है। वर्चुअल दुनिया में मिलने वाला तुरंत का डोपामाइन युवाओं को स्क्रीन का शिकार बना रहा है और ऐसी जीवन शैली का असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर साफ दिख रहा है। कम उम्र में मोटापा, आंखों की कमजोरी, अनिद्रा, डिप्रेशन और एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं अब आम हो चुकी है। ऐसे में हमारे मन में ये सवाल आता ही है कि खेलों की ओर वापसी आखिर जरूरी क्यों है। देखिए, खेल केवल मनोरंजन या शरीर को स्वस्थ रखने का जरिया ही नहीं, बल्कि खेल का मैदान जीवन का पाठ भी सिखाता है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है इससे। खेल रक्त संचार सुधारने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में और तनाव को दूर भगाने में बहुत मददगार साबित होता है और साथ ही साथ सामाजिक और नैतिक गुण का विकास भी होता है। मैदान में टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ धैर्य और अनुशासन भी सीखने को मिलता है। जीवन में असफलता से निपटना और दोबारा खड़े होकर उतना ही बेहतर करना जितना हम कर सकते हैं, ये हमें कहीं ना कहीं प्लेग्राउंड स्पोर्ट से ही सीखने को मिलता है। वर्चुअल गेम में ये आमतौर पे नहीं सीख सकता कोई। और सबसे ज़रूरी ये है कि बदलाव की शुरुआत घर से होती है, तो पेरेंट्स को खुद भी स्क्रीन टाइम सीमित कर बच्चों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए। घर में नो फोन जोन, नो स्क्रीन आवर्स तय करने चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि सोसाइटी और मोहल्लों में बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित और पर्याप्त जगह का निर्माण बहुत ज़रूरी है। स्थानीय प्रशासन और निजी संस्थाओं को पार्कों और खेल परिसरों का रखरखाव और इसकी प्राथमिकता देनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि स्कूल कॉलेज में अक्सर इसे अतिरिक्त गतिविधियों के तौर पर देखते हैं, पर मैं समझती हूँ कि इसे मेन सिलेबस का भी हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

तो श्रोताओं, अब बढ़ते हैं अपने सेगमेंट प्रेरणापुंज की ओर। और आज की हमारी प्रेरणापुंज है डॉक्टर वांगारी मथाई। डॉक्टर वांगारी मथाई केन्या अफ्रीका की एक ऐसी महिला थी जिन्होंने पर्यावरण को बचाने और महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। आपको बता दें कि ये मध्य और पूर्वी अफ्रीका में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। 1977 में जब केन्या में जंगल तेजी से काटे जा रहे थे, तब इन्होंने पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया। इन्होंने गांव की अन्य महिलाओं को इकट्ठा कर उन्हें पेड़ उगाना सिखाया। इस आंदोलन के जरिए 5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए। और आपको इसी के साथ बता दें कि साल 2004 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया और ये पुरस्कार पाने वाली वो पहली अफ्रीकी महिला बनी। उन्होंने साबित किया कि अकेला इंसान भी एक छोटे से बीज से बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम में प्रश्न मंच भी शामिल करते हैं, तो आपको बता दें कि हमारा कल का सवाल था कि डीएनए की खोज किसने की। आपको बता दें इसका जवाब कि 1869 में फेडरिक मिशर ने मूल खोज इसकी की, लेकिन डीएनए संरचना की खोज की बात करें तो जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में की और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और आज का सवाल है हमारा, सत्य एक पथहीन भूमि है, ये विचार किसने दिया है। ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, ये थॉट जो है वो किस फिलोसफर का है। इसका सही जवाब आपको भेजना है 8004926250। मैं एक हिंट दे देती हूँ आपको, जिन्होंने ये वर्ड दिया है, जो स्पीच दी थी, सत्य एक पथहीन भूमि है, उन्हें वर्ल्ड गुरु का दर्जा दिया गया, हालांकि उन्होंने इस दर्जे को स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो श्रोताओं, अब क्यों ना एक म्यूजिकल ब्रेक हो जाए,

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युवानी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग तथा समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त अरब

0: इराक के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में आज सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश भर के एक छात्र अब चिप्स डिजाइन और टेप आउट कर रहे हैं। लगभग 400 इंजीनियरिंग कॉलेजों के पास उद्योग स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स उपलब्ध हैं। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी के भंडारण की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे शिवांकी सिंह से की गई बातचीत, राष्ट्र के विकास में भारतीय ग्रामीण महिलाओं की महती भूमिका। शाम 7:31 पर संस्कृत

कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे प्रोफेसर डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी की वार्ता, समकालीन परिप्रेक्ष्य नाट्यशास्त्रीय प्रासंगिकता। सुगम संगीत के कार्यक्रम में महेश्वर दयाल के गाए भजन और गीत आप सुन सकते हैं 7:45 पर। रात 8:30 अक्षयवट कार्यक्रम होगा, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे अनिल कुमार श्रीवास्तव की वार्ता, वृद्धावस्था में अकेलेपन की समस्या। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां, ये आप सुन सकते हैं 9:30। रात 10:00 दिलीप कुमार तिवारी का लिखा नाटक प्रसारित होगा, टूटा हुआ पंख। और 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा कमला बोस का ख्याल गायन। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पत्रिका कार्यक्रम संस्कृत भारती 9:30। 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा और दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर वेद प्रकाश यादव से की गई बातचीत, ऊसर भूमि सुधार कैसे करें। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर नरेंद्र कुमार मौर्य की वार्ता होगी, बदलते मौसम में बच्चों में होने वाला सामान्य संक्रमण। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा 7:30, इसमें आप सुनेंगे संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन, रामशंकर का ख्याल गायन आप सुन सकते हैं 12:15। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में पूर्णिमा राय के गाए भजन और गीत सुनिए 9:50 पर। नेहा चटर्जी के गाए भजन और गीत आप सुन सकते हैं 7:45 पर। लोकमाधुरी कार्यक्रम में अनुराधा श्रीवास्तव, तेरस लाल और साथी, इनके गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे 10:05 पर। राजा राम यादव और साथी, आशाराम पाल और साथी, छेदीलाल और साथियों के गाए लोकगीत आप सुनेंगे 1:30। और वहीं शंकर लाल पाल और साथियों के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे धरती के गीत कार्यक्रम में 5:00। हमारे संग्रहालय से इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे प्रख्यात साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश्क से सत्य प्रकाश मिश्र की भेंटवार्ता और समय होगा 10:30। श्रोता अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे हेलो फरमाइश, प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार और समय 12:30। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी सुमन खन्ना की वार्ता, व्यस्त जिंदगी में परिवार के लिए समय कैसे निकालें। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी 5:15 होगा। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे परिवार कल्याण की बात। 8:30 अटल ऑडिटोरियम राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में आयोजित 20वें रोजगार मेला पर आधारित रेडियो रिपोर्ट सुनवाई जाएगी। आलेख वाचन एवं संपादन प्रवीण कुमार मिश्र का होगा। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 MHz पर। आइए सुनते हैं देशगान समवेत स्वरों में।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।

0: まあ जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
1: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
2: पहली बार हुआ।
3: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, आपस में भाईचारा बनाकर रखें। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण भूटानस्य विकासात्मक प्राथमिकतानां कृते भारतस्य पूर्ण समर्थनं पुष्टितम्। द्विपक्षीय सहयोगस्य उभयहित सम्बद्धानां विषयाणां च विहिता समीक्षा। बेंगलुरु नगरे अद्य रक्षा मन्त्रिणः राजनाथ सिंहस्य सानिध्ये एचएएल संस्थानेन भारतीय वायुसेनायै तेजस एलसीए अथ एचटीटी 40 प्रशिक्षक विमानानि समर्पयिष्यन्ते।

0: भजतीति मार्गस्य भागः अस्ति यत् यात्रिणां वस्तु परिवहनस्य च महत्वपूर्णः मार्गः अस्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतेन रक्तसागरक्षेत्रे वर्धमानां सुरक्षा विषमिकामालक्ष्य गभीरा चिन्ता प्रदर्शिता। नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलने एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्रददता विदेश मन्त्रालयस्य आधिकारिक प्रवक्त्रा रणधीर जायसवालेन विज्ञापितं यत् भारतेन सऊदी अरब देशस्य सार्वभौमक्षेत्रे विशेषतः नागरिकाणाम् आर्थिक सम्पत्तीनां चोपरि कृतानाम् आक्रमणानां दृढं खण्डनं कृतम्। तेन प्रतिपादितं यत् पवित्र मक्का नगरीं लक्ष्यीकृत्य संजातस्य आक्रमण प्रयासस्य अनन्तरमपि भारतेन आधिकारिकं वक्तव्यं निर्गतमासीत्। भारतीय युद्धपोतेन सह पाकिस्तानीय नौसेनापोतस्य परस्परं संघर्ष विषये विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता अवोचत् यत् भारतेन स्वकीय प्रतिवादस्य उत्तरत्वेन पाकिस्तानेन दत्तस्य प्रत्युत्तरस्य संज्ञानं गृहीतम्। सः पाकिस्तानेन कृतान् सर्वान् मिथ्यारोपान् अपेक्षाञ्च सर्वथा अङ्गीकारयोग्यं न इति मत्वा स्पष्टं प्रख्यातवान्।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: उत्तर सेना सेनापतिः लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा इत्येषः उधमपुरे ऑपरेशन सोहन इत्यस्यान्तर्गतं जैशे इत्यस्य द्वयोः आतंकवादिनोः हननार्थं व्हाइट नाइट कॉर्प्स इत्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सेनायाः उत्तर सेना सेनापतिः लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा उधमपुर जनपदस्य माजलता क्षेत्रे ऑपरेशन सोहनस्य समये व्हाइट नाइट कॉर्प्स इत्यस्य द्रुतं सुनिश्चितं व्यावसायिकं च कार्याचरणाय प्रशंसाम् अकरोत्। अस्माकं संवाददात्रानुसारं जम्मू कश्मीरस्य आरक्षकैः CRPF इत्यनेन च सह अविच्छिन्न समन्वयेन सम्पन्नं गुप्त सूचनाधारितं सफलम् अभियानं भयोत्पादन निरोध ग्रिड इत्यस्मिन् संयुक्त अन्तरसंस्था समन्वयस्य शक्तिं पुनः एकवारम् अधोरेखितम् अस्ति। वैश्विक ऋण मूल्यांकन संस्थया मूडीज इत्यनया वर्तमान वित्तवर्षे भारतस्य वास्तविक सकल घरेलू उत्पादस्य विकास मानांक पूर्वानुमानं 6% संवर्ध्य 7% यावत् विहितम्। संस्थया स्पष्टीकृतं यत् अयम् ऊर्ध्वमुखी संस्कारः पश्चिम एशिया संघर्षेण जनितात् वैश्विक आघातात् परमपि भारतीय अर्थव्यवस्थायाः प्रत्यस्थतां दृढतां च प्रदर्शयति। मूल्यांकन संस्थानुसारं G20 समूहेषु सर्वेभ्यः देशेभ्यः अपेक्षया भारतस्य आर्थिक वृद्धिः तीव्रतरा भविष्यति। जापान देशस्य आईची नागोया नगरे समायोज्यमाने 20तमे एशियाई क्रीडा महोत्सवे भारतस्य क्वीन्जी जोआकिम डिसूजा इत्येषाद्य प्रातः काले महिला एकल स्पर्धायां विजयद्वयं सम्प्राप्य टेकबॉल क्रीडायाः उपान्त्य चक्रे प्रविष्टवती। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुने पंचायत घर।

0: पंचो राम
1: राम
0: राम।
1: राम। का हाल चाल है हो भैया रानू?
0: देखा हो भैया, खेती किसानी के हाल समाचार तो ठीके है, लेकिन ये जान लिए भैया, ये साल जो है दऊ राजा भैया खूब कृपा करें हो।
1: हाँ भैया, अपने इलाहाबाद खेती जौन है बरखा बहुत बढ़िया रहे है
0: हाँ हाँ हाँ
1: ना।
0: और
1: और
0: साथ ही
1: बढ़िया रहे भैया तो ये जाना
0: हाँ हाँ
1: कि जौन खरीफ का सबसे मुख्य फसल बाटे हो
0: हाँ हाँ हाँ
1: रानू भाई
0: हाँ
1: धान। कहा जाता है
0: हाँ
1: ना कि धान पान और केरा तीनों पानी के चेरा।
0: चेरा
1: तो भाई हो, धान के खातिर तो बहुत बढ़िया रहा।
0: हाँ भैया
1: मुला एक बात और है, ज़्यादा बरखा से
0: हाँ हाँ
1: खरपतवार भी हो जाते हैं।
0: एकदम सही कहे भैया। अच्छा एक बात और
1: कह
0: है,
1: जा।
0: देखे अगर कौनों भी खेते में खर पतवार है तो भैया ये जान ले कि कनम से ओकर विकास जो है रुक जाता,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: विकास के
1: बिल्कुल
0: साथे साथे भैया पैदावार भी कम हो जाता। और पैदावार जब कम होते तो भैया किसान भैया बहनी हरण के भैया जो आर्थिक नुकसान होता वो भैया फायदा का बजाय कम हो
1: कम
0: जाता।
1: हो जाता। तो जरूरत ये बात का है ना रानू भाई कि खरपतवार का प्रबंधन समय रहते कीन जाए।
0: हाँ हाँ हाँ
1: अब ओकरे खातिर देखा कई बात है, जैसे धान का फसल है तो परंपरागत जौन खरपतवार नियंत्रण का बात रही ना,
0: हाँ हाँ
1: वो
0: हाँ
1: भैया जौन भी
0: हाँ
1: खरपतवार हैं उनके जौन है खुरपी से, मतलब कहे का मतलब मानवीय श्रम से हटावा जात रहे,
0: एकदम
1: साफ
0: सही
1: किया
0: कहे
1: जात रहे। लेकिन अब समय बदला भैया, तो धीरे धीरे जौन कृषि की नई तकनीक आई, नया जौन है शोध आयन, तो ओकरे हिसाब से खरपतवार नाशी भी आ गई।
0: एकदम
1: एक जौन भी है तो खरपतवार नाशी का कैसे प्रयोग किए जाए,
0: हाँ हाँ
1: कब कब किए जाए,
0: हाँ
1: ये
0: हाँ
1: बात का कृषि रक्षा इकाई में जाके किसान भाई अपन जानकारी ले लें, प्राप्त कर लें, और जौन कृषि वैज्ञानिक खड़े भैया हैं उनसे जानकारी लेके खरपतवार नाशी का प्रयोग अपने विशेष करके धान के फसल में जरूर करें, जौन से कि खरपतवार का नियंत्रण हो जाए।
0: एकदम सही कह भैया। अच्छा एक बात और है, देखो भैया जो रासायनिक विधि है खरपतवार का, एकरे साथे साथे किसान भैया बहनी हरे जोन भौतिक विधान अपने सबके जमाने में भैया निराई रहन गोड़ाई रहन, और
1: सही।
0: साथे साथे भैया खेत में धान लगावे के पहले कुछ किसान भैया बहनी हरे भैया जोतवाई देते रहें तो आधा घास वहीं से निकलिए, और
1: बिल्कुल
0: जोतवाई के
1: बिल्कुल
0: बाद भैया उमन के जोन घास है ओके बिन लें। तो ऐसे ही रहे कि भैया पहले शुरू में खेते में घास कम रहे, और साथे साथे भैया जब धान लगाएं तो भैया जब पानी दें जब फिर जब आए धान तो भैया फिर उमन खर पतवार आए। तो
1: बिल्कुल
0: कुछ
1: बिल्कुल
0: किसान भैया के बहनी हरे का हो कि गुरु चुगा पाले हैं भैया, तो उसे ये है कि उमन के घास निकाल के जो खर पतवार हैं अपने भैया गुरु चुगा के भी खियाए देते हैं तो उन्हें हरियरियो मिल जाता और
1: अब
0: भैया
1: बिल्कुल
0: कम
1: सही
0: से
1: कहा भैया,
0: खेत का सफाई
1: खरपतवार
0: हो
1: के
0: जाता।
1: खातिर तो देखा जैसे पानी है, पोषक तत्व है, धूप है, जगह, एकरे खातिर जगह के खातिर बहुत मुकाबला होता है, कहाँ से खरपतवार भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो ये खातिर खरपतवार जौन है उनके ख़त्म कल जरूरी है। आप सही कहें कि उपज में भी कमी होता है, और साथे साथे जौन सबसे महत्वपूर्ण है कि खरपतवार के कारण कीट और रोग का खतरा बढ़ जाता है,
0: हाँ हाँ हाँ
1: कटाई में बाधा हो जाते हैं। तो
0: हाँ
1: ये सब के नियंत्रण के खातिर जाना कि खरपतवार का नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है।
0: भैया। अच्छा एक बात और रहे हो
1: बताओ
0: रामोतार
1: भैया।
0: भैया, देखा है कहा है कि जब खरपतवार खेती में रहते हैं तो खरपतवार तो मजबूत हो जाते भैया,
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल।
0: जो अपन फसल हो जाते कमजोर। तो किसान भैया बहनी हरन को जरूर ध्यान देवे के चाहे कि भैया खरपतवार जरूर निकाल दें, और साथ ही साथ भैया एक बात का और ध्यान रखें कि जौन आप एक बात बताओ तो रहन कि भैया दवाई का जो छिड़काव है
1: हाँ
0: वो छिड़काव को बहुत ध्यान रखे खुद भैया कि जब खेते में पानी रहे तब छिड़कें, साथे
1: बिल्कुल
0: साथे
1: बिल्कुल।
0: भैया कितना दिन बाद ओके भरे का हुआ ये बात के भी भैया जानकारी बहुत जरूरी है।
1: और एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है भाई
0: हाँ
1: रानू भैया, कि जैविक विधि से भी खरपतवार, ये तो रासायनिक विधि अब बता
0: हाँ
1: दें कि
0: हाँ
1: भाई खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाए, छिड़काव किया जाए, भुड़काव किया जाए, तो जाना कि चौड़ी पत्ती का जौन भी खरपतवार है नियंत्रण हो सकत है। रासायनिक का प्रयोग शुरुआती अवस्था में सही मात्रा में कह दिए से खरपतवार समाप्त हो जाते हैं। मुला दूसर जौन बात है कि जैविक विधि से भी हमारे सभी अपने खेती किसानी में खरपतवार का नियंत्रण किन जात है,
0: हाँ हाँ
1: जैसे
0: हाँ
1: कि खेत की जुताई और गुड़ाई सही समय पर अगर कह दिया गया,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: जैविक विधि यह है कि में कीट फूफद या अन्य जीव का उपयोग किया जाता है, जौन की चुनिंदा खरपतवार

0: के खाते हैं और उनके नष्ट कर देते हैं।
1: एकदम सही कह भैया। अच्छा एक बात और है,
0: कह जा भाई।
1: साथे साथे अगर किसान भैया बहनी हरे फसल चक्र कभी अपनावत हैं
0: हाँ, बिल्कुल
1: तो
0: सही
1: उसे
0: बात
1: भी
0: कर रहे
1: भैया
0: हैं।
1: खेत में खरपतवार कम होते और समय पे बुआई करत हैं, सघन बुआई न करें, इससे ये है कि खरपतवार निकाले में भी आसानी रहते हैं और खरपतवार भी कम होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब देखा भाई, एक बात तो और समझ में ये आवत है
1: हाँ
0: कि खरपतवार की तो बात हो गई,
1: हाँ हाँ
0: एक
1: हाँ
0: दूसरी बात है कि भैया देखा, एक चीज़ बात है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
1: हाँ हाँ हाँ
0: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है भारत सरकार द्वारा 2007-08 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है,
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: जोने का मोटा मोटी उद्देश्य ये है भाई कि देश में चावल है, गेहूं है, दलहन फसल है,
1: हाँ हाँ
0: मोटा अनाज है, पौष्टिक अनाज है,
1: हाँ
0: इनके उत्पादन या पैदावार के बढ़ावा देहल ही एकर मुख्य उद्देश्य है
1: हाँ हाँ हाँ
0: भैया हो। एक ये जाना कि उत्पादन में वृद्धि करे के खातिर, माटी का जौन उर्वरा क्षमता है
1: हाँ हाँ हाँ
0: ओके बढ़ावे के खातिर, और सबसे महत्वपूर्ण जौन है वो किसान भाइयन के आय के बढ़ावे के खातिर ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का स्थापना भाई बने।
1: एकदम सही कह भैया। अच्छा एक बात और रहे का जो उद्देश्य है
0: हाँ
1: भैया, गेहूं चावल दाल मोटे अनाज जेके भैया श्री अन्न कहते हैं,
0: हाँ हाँ
1: जिसे श्री अन्न में आएगे
0: जी जी
1: बाजरा
0: जी
1: आएगे
0: जी
1: कम से बजरी आएगे जुन्हरी आएगे, तो एकर भैया सतत जोन उत्पादन बढ़ावे के हैं, इस पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। और एक बात तो रो राम तौर भैया 2025 यानी 24-25 के बीच में एकर
0: जी
1: नाम बदल के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषक मिशन कह दिया गया।
0: बहुत बढ़िया बात भैया, बहुत बढ़िया बात। अब देखा एकर जोन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषक मिशन जोन बताए हैं
1: हाँ
0: हम,
1: हाँ हाँ
0: एकर जोन प्रमुख गतिविधि है कि प्रमाणित बीज, जैसे हो गया
1: हाँ
0: प्रमाणित
1: हाँ
0: बीज में किसान भाइयन के कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले जो नई किस्म का बीज हमें उनके उपलब्ध करावा जाए,
1: हाँ हाँ हाँ
0: उसे होत ये है भैया कि देखा पैदावार बढ़त है,
1: हाँ
0: लागत कम रहत है, दूसर बात कि जो नई नई तकनीक हैं खेती किसानी में उनकर भी प्रसार होता है,
1: हाँ हाँ
0: एकरे साथे साथे जोन कीट प्रबंधन और उर्वरक का बात है तो
1: हाँ
0: एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के माध्यम से,
1: हाँ
0: कीट प्रबंधन के माध्यम से सबके उत्साहित किन जात है, खेत का पैदावार बढ़िया रहत है और किसान भाइयन के आय भी बढ़िया मिलत है।
1: एकदम सही कह भैया। एक बात तो रहे हो,
0: हाँ
1: देखे भैया पंचायती में भैया बात बात कही तो होत रहे, लेकिन भैया देखे बिना ढोल मजीरा के कुछ निक ना
0: समझ गए
1: लागत हो।
0: भैया, तुहार बात छूछ पै लगी जीव झन। तो
1: हाँ
0: देखा भैया आज बातचीत भी है,
1: हाँ हाँ
0: वार्ता भी है,
1: हाँ
0: और किसान भाइयन के अब ये भी बतावा जाए कि अपन नंबर दिन जाए कि उनकर प्रतिक्रिया भी जानी जाए,
1: हाँ
0: लेकिन
1: हाँ
0: जो उनकी परंपरा है भैया तो
1: हाँ
0: कमलेश चंद यादव और संघादी का आवा गौनाई किसान भाइयन के साथ सुन लीन जाए।
1: सुनवाए दें भैया।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हाँ भैया देखा गौ नहीं हो गई।
2: हाँ हो भैया,
1: कमलेश चंद यादव और संघाती के।
2: हाँ हाँ,
1: अब एक बात है भैया कि राष्ट्र के विकास में भारतीय ग्रामीण महिलाओं की क्या भूमिका है।
2: हाँ हाँ हाँ,
1: ये विषय पर भैया शिवांगी सिंह का वार्ता रही।
2: हाँ हाँ,
1: हम कहें आवा ओके सुना जाए और ये जाना जाए कि अपने ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं का क्या भूमिका है अपने देश की अर्थव्यवस्था के विकास में। तो आवा किसान भाई इनके साथ हम रोज सभी सुन लेंगे।
2: सुनवाई दे भैया।
3: स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि महिला की स्थिति में सुधार के बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि पंछी के लिए एक

पंख के साथ उड़ना मुश्किल है। देश की तरक्की के लिए हमें भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। एक बार जब महिला कदम उठा लेती है तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है। भारतीय नारी सृष्टि के प्रारंभ से ही अनंत गुणों का भंडार रही हैं। वह दया, करुणा, ममता और प्रेम की पवित्र मूर्ति हैं। किसी राष्ट्र की परंपरा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं से ही परिलक्षित होती है। महिलाओं की ग्रामीण सहभागिता में जनसंख्या की दृष्टि से लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है और वे उत्पादन तथा अर्थव्यवस्था की सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ साथ आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तनों में महिलाओं का योगदान एवं भूमिका मुख्य है। हम जानते हैं कि नारी सृष्टि निर्माता की अद्वितीय रचना है और सारी सृष्टि नारी से ही चलती है। नारी जिसे शक्ति रूप माना गया है, जिसे हम महिला शब्द से संबोधित करते हैं। मही अर्थात पृथ्वी और ला का अभिप्राय सृष्टि से है, जो धरती की तरह धीरज करने की शक्ति रखती है। वह महिला है, वह धरती जिस पर हम जीवन बिताते हैं, वह भी धरती माँ कहलाती है। नदियाँ जो हमें जीवन प्रदान करती हैं, उन्हें भी माँ शब्द से संबोधित करते हैं। देवताओं पर भी जब संकट आया था तो उन्हें भी माँ दुर्गा की शरण में जाना पड़ता था। आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से स्त्रियों ने इतनी तरक्की अवश्य कर ली है कि वे समाज, परिवार और घर में अपना विशिष्ट स्थान बना सकी हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां स्त्रियों ने अपना परचम न लहराया हो। चाहे खेल हो या राजनीतिक, सामाजिक हो या आर्थिक क्षेत्र हो, किसी भी विभाग, चाहे शिक्षा, प्रबंध, प्रशासन, बैंक या शासन, उसने अपनी शक्ति और ताकत का लोहा न मनवा लिया हो। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती बंडारू नायके, कल्पना चावला, नूरजहां, मधुबाला, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम से लेकर सानिया मिर्जा तक सफल सैकड़ों ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपनी क्षमता, अपनी कला और अपने आत्मबल से उस उच्चतम स्थान को प्राप्त किया है। भारत के विकास में महिला साक्षरता का भी बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पिछले कुछ दशकों में जब जब महिला साक्षरता में वृद्धि होती आई है, भारत विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। इससे न केवल भारत मानव संसाधन के अवसर में वृद्धि किया है, बल्कि घर के आंगन से ऑफिस के कॉरिडोर के कामकाज और वातावरण में भी बदलाव आया है। महिलाओं के शिक्षित होने से न केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में भी तेजी आई है। महिला साक्षरता से एक बात और सामने आई है कि इससे शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट आ रही है और जनसंख्या नियंत्रण को भी बढ़ावा मिल रहा है। आज चारों तरफ महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं हैं। आज की महिला जिस जवाबदारी से व्यावसायिक दुनिया में सफल हो रही हैं, उतनी ही कुशलता से वह घर गृहस्थी की जिम्मेदारी को भी निभा रही हैं। नारी का कार्य क्षेत्र न केवल घर बल्कि सारा संसार है। प्रकृति ने वंश वृद्धि की जो जिम्मेदारी नारी को दे रखी है, वह न केवल एक दायित्व है अपित एक चमत्कार और अलौकिक सुख भी। इन सबके बीच नारी आरंभ से ही अपनी भूमिकाओं के प्रति सचेत रही हैं। नारी को आरंभ से ही कोमलता, भावुकता, क्षमाशीलता, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति माना जाता रहा है, पर यही नारी आवश्यकता पड़ने पर रणचंडी बनने से भी परहेज नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि यह कोमल भाव मात्र उन्हें सहानुभूति और सम्मान की नजरों से देख सकता है, पर समानांतर खड़ा होने के लिए अपने को एक मजबूत, स्वावलंबी, अटल स्तंभ बनाना ही होगा। इतिहास गवाह है कि आजादी के दौर में तमाम महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक तरफ इन्होंने स्त्री चेतना को प्रज्वलित किया, वहीं आजादी के आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ी। कईयों ने तो अपनी जान भी गंवा दी।

फिर भी महिलाओं के हौसले कम नहीं हुए। रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल, उदा देवी जैसी वीरांगनाओं का उदाहरण हमारे सामने है। पर जब जब आज़ादी का ज्वार फैला तो तमाम महिलाएं इसमें शामिल होती गईं। इसी क्रम में सरोजनी नायडू, सावित्री बाई फूले, कल्पना दत्त, शांति घोष, बीना दास, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, एनी बेसेंट इत्यादि महिलाओं ने न सिर्फ आज़ादी बल्कि समानांतर रूप में नारी हकों की लड़ाई भी लड़ी। आखिर तभी तो महात्मा गांधी ने कहा था, भारत में ब्रिटिश राज मिनटों में समाप्त हो सकता है बशर्ते भारत की महिलाएं ऐसा चाहें और इसकी आवश्यकता को समझें। संविधान की भावनाओं के अनुरूप 73वें संविधानिक संशोधन 1993 में किया गया। 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इन सब पर हस्ताक्षर कर महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक दिवस बना दिया। पंच पालिकाओं में महिलाओं को एक तिहाई स्थान मिला। राजनीतिक नेतृत्व का मार्ग खुल गया। आज विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण के साथ पुरजोर कोशिशें चल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी राजनीति के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर तय कर ग्रामीण महिलाएं अपने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। महिलाएं जागरूक होने के मार्ग पर बढ़ने लगी हैं। जनतांत्रिक राजनीति से भी वे पनप रही हैं। भूख, वंचना और शोषण के विरुद्ध महिलाएं जागरूक होने लगी हैं। ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाती हैं, अनपढ़ महिलाओं को भी पढ़ा रही हैं। वे कहती हैं कि हम स्वयं आगे नहीं आएंगी तो उनको मिले संवैधानिक अधिकार कागज में ही रह जाएंगे। अब महिलाएं घर से बाहर जागरूक होकर घर से बाहर सार्वजनिक जीवन में सहभागिता निभाने को छटपटाने लगी हैं। महिलाओं को अपनी पहचान स्वयं बनाने की चिंता सता रही है। महिलाएं गांव की जरूरतों को ज़्यादा जानती हैं। कहाँ नलकूप लगाना है, कौन परिवार कितना गरीब है, किसकी कितनी मदद करनी है, मुसीबतें बहुत हैं। फिर भी सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जाने से वे जागरूक होकर मजबूत इरादे से पंचायतों को विकास का सशक्त माध्यम बना रही हैं। 73वें संविधान संशोधन की बेटियों, महिला सरपंचों की सफल कहानियां हमें एक आशा का दीप दिखा रही हैं। वे बाल विवाह और भ्रूण हत्या रोक रही हैं, छोटे परिवार का चलन चला रही हैं, शिक्षा की अलग जगा रही हैं, शराब को गांव से अलविदा करा रही हैं, आपसी झगड़े आपस में ही निपटाने की सफल समझ जगा रही हैं, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर गांवों में अतिक्रमण को तोड़ना, शराबबंदी करना, घर घर में शौचालय बनवाना तथा गरीबी उन्मूलन का प्रयास कर रही हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह और दीदी बैंकों के माध्यम से अपनी ताकत से गरीबी को मिटाने का संकल्प जगा रही हैं। इससे भी महत्वपूर्ण कार्य वो यह करके दिखा रही हैं कि जनता में चुने जाने के बाद किसी भी राजनीतिक पद पर रहो, अपने स्वयं के व्यवसाय से आजीविका अर्जन करके जियो, स्वयं झोपड़ी में रहकर गांव वालों को पक्के मकान दिलाओ। शायद यही सोचकर यह माना जाता है कि हर क्षेत्र में ऐसी सफल सरपंचों की सकारात्मक निर्भीक सोच और सृजनशीलता की कहानी खोजी जाए। महिला साक्षरता और शिक्षा महिलाओं की शक्ति है। साक्षरता की दृष्टि से महिलाओं ने भी कदम बढ़ाए हैं। शिक्षण संस्थाओं में उनकी उपस्थिति है, चाहे वो प्राथमिक स्तर की बात की जाए या विश्वविद्यालय स्तर की बात की जाए। इससे महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सभी स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में सामान्य पद से उच्च पदों पर काम करने लगी हैं। अब पायलट बनना तो आम जिज्ञासा बन रही है। अखिल भारतीय परीक्षाओं में महिलाओं का पुरुषों के मुकाबले प्रदर्शन भी अच्छा हो रहा है। यह बढ़ती साक्षरता की चेतना का ही परिणाम है। महिलाएं किसान, श्रमिक और उद्यमी हैं। विकास

0: विकासशील देशों में कृषि श्रम में महिलाओं की हिस्सेदारी 38% है। यह भी अनुमान है कि 45.3% कृषि श्रम में केवल महिलाएं शामिल हैं। ग्रामीण महिलाएं खेत में काम करती हैं, अपनी जिम्मेदारियां संभालती हैं और घर के काम भी करती हैं। महिलाएं फसल उत्पादन, बागवानी, पशुधन प्रबंधन, कटाई के बाद के संचालन, मत्स्य पालन, कृषि, वानिकी और घरेलू गतिविधियों में व्यापक रूप से शामिल हैं। उनका अधिकांश समय ईंधन, चारा और पानी के संग्रह, घर में सब्जियां उगाने और मुर्गी पालन के लिए समर्पित है। वे कृषि मजदूरी कमाने वालों और कुटीर के माध्यम से घरेलू आय के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। पशु पालन क्षेत्र में महिलाएं कई भूमिकाएं निभाती हैं, जैसे कि पशु शेड की सफाई, जानवरों की देखभाल, दूध निकालना, चारा खिलाना, चारा संग्रह आदि शामिल हैं। ग्रामीण कुक्कुट पालन में भी महिलाओं की भागीदारी पर विचार करते हैं, तो यह पक्षियों के भोजन और प्रबंधन से शुरू होकर घर से अंडे और पक्षियों के खरीदने तक, इससे पोल्ट्री को महिला का क्षेत्र माना जाता है जो परिवार के पोषण और आय का कार्य करता है। इसी तरह ग्रामीण परिवारों में बकरी पालन में महिलाओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है।
1: देखा हो भैया कि
2: हाँ
1: भैया ये आज कम से वार्ता रहन कि राष्ट्र के विकास में भारतीय ग्रामीण महिलाओं की महती भूमिका।
2: मैं देखा भैया, जो ग्रामीण क्षेत्र की बात हुई ना, तो
1: हाँ
2: देखा जैसे पशुधन की बात है,
1: हाँ हाँ हाँ
2: पशुपालन जो
1: हाँ
2: किसान भाई करते हैं, उनमें भी
1: हाँ
2: बहनी लोग उनका ज़्यादा योगदान रहता है।
1: हाँ हाँ हाँ
2: पशु के चारा के खातिर या पुरुष वर्ग खेत में चला गया बाटे या दूध लेके हाट बाजार चला गया बाटे,
1: हाँ हाँ
2: तो जौन बहनी लोग रहते हैं महिलाओं का बहुत योगदान एक खातिर और रहता है कि पशुओं के देखभाल, पशुओं के चारा खिलाना है ना, ये सब काम वह करते हैं। दूसर बात ये आवत है कि अगर कुक्कुट पालन का बात है या
1: हाँ
2: भेड़ पालन, बकरी पालन का बात आवत है,
1: हाँ
2: तो
1: हाँ
2: उनमें भी महिला लोगों का, ग्रामीण महिला बहनी का ज़्यादा योगदान रहता है। किसान भाई लोग तो दूसर दूसर काम करते हैं, जैसे एक चूजा बेचे निकल जाते हैं या अंडा बेचे भी बहुत
1: हाँ
2: ही
1: जाते
2: छोटे
1: हैं।
2: स्तर पर जाते हैं।
1: हाँ हाँ
2: बड़े स्तर का अगर कुक्कुट पालन है तो खुद आ जाते हैं व्यापारी, लेकिन अगर छोटे स्तर का कुक्कुट पालन है तो निश्चित रूप से किसान भाई जो है हाट बाजार जाते हैं,
1: एकदम
2: तो
1: सही कहे
2: उनका
1: भैया।
2: काम धाम जो है उनके चारा दिहल, उनका देखभाल कर, ये ग्रामीण महिला ही करती
1: साथ
2: लोग।
1: साथ भैया साफ सफाई का भी ध्यान जो है महिला बहनी हरे बहुत बढ़िया करते हैं।
2: सही
1: तो
2: कहा। और मूल रूप से खेती किसानी में भी
1: हाँ
2: बहनी, ग्रामीण बहनी लोगों का बहुत योगदान है भैया। खेती किसानी में जैसे अगर साग भाजी की बात भइल, जौन है साग सब्जी की बात भइल, तो निश्चित रूप से खेती किसानी में जाते हैं। या साग सब्जी का फल तोड़े के बाद भइल,
1: हाँ
2: जैसे भिंडी है,
1: हाँ
2: मरचा है, नेनुआ है, लौकी है, ये सब का देख रेख और एकर सुरक्षा संरचना के साथे साथे तोड़ाई के कार्यक्रम में भी महिला लोगों का भरपूर योगदान रहता है
1: एकदम
2: भैया।
1: सही कहा भैया। अच्छा एक बात और है,
2: कह जा।
1: आज पशुओं के पोषक तत्वों में कमी होने वाले रोग, ये पर चर्चा है भैया डॉक्टर मनोज कुमार से, जय कृष्ण नारायण शर्मा भैया का बातचीत है। हम सोचे थे किसान भैया बहनी हरिन को
2: बिल्कुल
1: सुनवा दिया
2: सुनवा
1: जाए।
2: दो भाई, बिल्कुल सुनवा दो।
3: किसान भाई चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, अगर संतुलित आहार न मिले, पोषण की कमी रहे, तो निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य खराब हो सकाला। अपने बीच में जौन किसान भाई पशुपालक के रूप में भूमिका निभावत हैं, पशुपालन करत हैं, निश्चित रूप से अगर पशुन के पोषण के कमी हुई तो उन्हें रोग हुई और स्वस्थ पशु ना हो सके न। अगर दुधारू हैं तो दुधारू पशु अच्छा दुग्ध उत्पादन नहीं दे सके न। आज जौन बातचीत का विषय हो गया पशुओं में पोषण की कमी से होने वाले रोग, जानकारी देव दे हमारे बीच में विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर मनोज कुमार जी आयल बाटे। आप पशु चिकित्सा अधिकारी विकास भवन इलाहाबाद से आयल बाटे। भैया मनोज कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत भाई। सबसे पहले हम ये जानल चाहब कि जौन किसान भाई या पशुपालक भाई पशुपालन के लिए बाटे, तो उन्हें ये बताओ कि पोषक तत्व का है और यह पोषक तत्व की कमी से पशुन में कौन कौन रोग हो सकत है।
4: जी बहुत सही है। अब पहले तो हम जो पोषण की कमी से होने वाले रोग हैं, तो पहले तो हम यह जान लें कि पोषक तत्व तो होते क्या हैं।
3: जी।
4: तो पोषक तत्व तो वो पदार्थ होते हैं जो शरीर को समृद्ध करते हैं, ऊतकों का निर्माण करते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं।

0: करते हैं,
1: जी
0: हमारी शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और ऊष्मा प्रदान करते हैं, और यही ऊर्जा और ऊष्मा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। ये पोषक तत्व कई तरह से प्राप्त होते हैं,
1: जी
0: मुख्य रूप से हम ये भोजन से प्राप्त करते हैं। और पोषक तत्व तो दो प्रकार के होते हैं,
1: जी, कौन कौन भैया?
0: एक तो जैविक पोषक तत्व तो होते हैं, जैसे जिसमें जिसमें जैविक में कार्बोहाइड्रेट, फैट जो वसा होता है,
1: जी
0: प्रोटीन
1: और
0: और विटामिन्स।
1: जी
0: अकार्बनिक जो पोषक तत्व तो होते हैं उसमें खनिज लवण, पानी और ऑक्सीजन, ये तीन तरह के होते हैं।
1: मतलब एक खोला भैया जो जैविक हो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, ये सामान्यतया आम आदमी भी एक जानत है।
0: जी
1: दूसरा जो न हो अकार्बनिक, में खनिज लवण, पानी और ऑक्सीजन है।
0: जी
1: जी तो कैसे कैसे मिलत है?
0: देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हम इसको पौधे से, दाल से, आलू से, जड़ से, सब्जी, फल, दूध, इसमें पाया जाता है।
1: जी
0: पशुओं को हम जो चारा देते हैं उसी ये जड़ देते हैं, दाल दे दिए, आलू सब्जी खिलाते हैं, उसी से ये कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है शरीर में तो इससे दस्त हो जाता है, दूध में कमी हो जाती है, भूख में कमी हो जाती है, वजन कम होता है। जब वजन कम हो जाता है तो शरीर की सभी क्रियाएं धीमी होने लगती हैं।
1: गांव में भैया देखल जाए डॉक्टर साहब, तो परंपरागत रूप से या तो हरा चारा दिया जाता है या भूसा डाल के तीसरी हो
0: जी
1: जाता है। बहुत जोन जागरूक पशुपालक बैठे हैं वो भाई चूनी दाना संतुलित आहार पे ख्याल रखत
0: जी
1: है।
0: जी
1: तो यह संदर्भ में बताऊँ कि ग्रामीण संदर्भ में जोन अपने किसान भाई हैं जोन उनके सहजता से उपलब्ध हो वो कैसे के पूर्ति करें?
0: देखिए, पशुओं को संतुलित आहार जब नहीं मिलेगा तो तमाम तरह के रोग पैदा होते हैं, और उसी में ये पोषण की कमी होती है और उसी से रोग पैदा होते हैं। इसलिए संतुलित आहार देना आवश्यक होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जिसको हमने अभी बताया कि आप पौधे दे सकते हैं, इसकी जड़ दे सकते हैं, पत्तियां दे सकते हैं और दाना दे सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता चुके हैं, अब आपको हम बता रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन की जो कमी होती है उससे क्या बीमारी होती है?
1: जी
0: अगर प्रोटीन हम आप जानवरों को कम देंगे तो उनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी,
1: जी जी
0: शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी, जो हार्मोन्स बनते हैं जिससे शरीर की तमाम क्रियाएं होती हैं, जननांग विकसित होते हैं और वृद्धि होती है, ये सब धीमे होने लगते हैं। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए इसमें हम दाल दे सकते हैं या अनाज दे सकते हैं, इससे जो संतुलित पशु आहार देते हैं उसमें दाना देने से प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है।
1: जी, और भी बताओ।
0: और वसा की कमी भी नहीं होनी चाहिए, वसा के लिए हम खली, मूंगफली दे सकते हैं, इससे वसा की कमी पूरी हो जाती है। अगर वसा कम देंगे तो शरीर कमजोर रहेगा पशु का, और जब शरीर कमजोर हो जाएगा तो उससे जो और क्रियाएं हैं वो धीमी हो जाएंगी,
1: जी
0: जो वृद्धि रुक जाएगी, उसके जननांग कमजोर हो जाएंगे, तो जो जल्दी से गाभिन होने वाले पशु हैं वो देर में गाभिन होंगे।
1: ग्रोथ उनका कम
0: जी
1: हो
0: जी
1: जाए।
0: जी
1: जी
0: उनकी वृद्धि रुक जाती है।
1: जी जी अब यह विटामिन्स कैसे वो प्राप्त करें?
0: विटामिन्स भी हम आहार से लेते हैं, आहार में हम जो दाना है, चूनी चोकर है, भूसा है या हरी पत्तियां हैं, इससे विटामिन्स प्राप्त होती हैं। और विटामिन्स अलग अलग विटामिन्स हैं, दो तरह के मुख्य तरह विटामिन्स होते हैं, जो पानी में घुलनशील होते हैं और वसा में घुलनशील होते हैं। जो वसा में घुलनशील होते हैं वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जो विटामिन ए होता है इसको हम गाजर से, पत्ता गोभी से, हरी सब्जियों से, टमाटर से, पालक से पशु को दे करके
1: जी
0: उसकी पूर्ति कर सकते हैं। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है पशुओं में, इससे बांझपन की समस्या हो जाती है, पशुओं की वृद्धि रुक जाती है और मुख्य रूप से जैसा आप जान रहे होंगे रतौंधी हो जाती है।
1: जी डॉक्टर मनोज कुमार, एक थोड़ा सा हम जानकारी और
0: जी
1: चाहब कि तो वयस्क पशुन के लिए हो जो नवजात

0: पशु हैं उन्हें कितना देर तक, अक्सर दुग्धपालक ज़्यादा से ज़्यादा दूध दुह लेते हैं, नवजात जौन बछड़ा बछिया है या भैंस के जौन बच्चा है उनके कितना देर तक दूध पियावे के चाहिए, कितना मात्रा में पियावे के चाहिए ताकि वो संतुलित आहार उन्हें मिले।
1: देखिए, ये जो दूध है, दूध को जो बछड़ा है उसकी शरीर के अनुसार देना चाहिए, कितने
0: जी
1: वजन का है, और उसको ये भी ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा न होने पाए, और रुक रुक करके कई बार पिला दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इकट्ठा एक बार में पिला देंगे तो उससे अपच की समस्या हो जाएगी और दस्त होने लगेगा तो पशु बीमार हो जाएगा।
0: जी, कहले कि दूध में तो सारा विटामिन सब सारे
1: जी
0: चीज मौजूद रहे, अगर बचपन में ओके बढ़िया से पालन पोषण हो जाए तो निश्चित रूप से बीमारी और रोग रोधी शरीर हो जाए होकर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसको सही से दूध दे देते हैं और जो उसकी आवश्यकता को पूर्ति कर लेता है, उसके वजन के हिसाब से दूध दे देते हैं, और दिन में 3 बार 4 बार पिला सकते हैं, और जब दूध बढ़िया से पी लेगा तो जरूर उसकी वृद्धि बढ़िया हो जाएगी और
0: जी,
1: जल्दी से वो बड़ा हो जाएगा।
0: अब डॉक्टर साहब जो ना कार्बनिक जो तत्व रहना वो के उपलब्ध कैसे करावल जाए, न उपलब्ध भैले पे का बीमारी हो सके थे,
1: देखिए
0: जैसे खनिज
1: जो
0: लवण ऑक्सीजन
1: जी
0: और
1: जी जी
0: पानी।
1: जी जो खनिज लवण है, खनिज लवण में कैल्शियम है, फास्फोरस है, कॉपर है, आयोडीन है, नमक है, इस सब को हम राशन के साथ दे सकते हैं और राशन के साथ देना चाहिए। जैसे हम जो भी संतुलित पशु आहार देते हैं
0: जी
1: उसमें नमक भी मिला के देना चाहिए,
0: जी जी
1: और जो मिनरल मिक्सचर दिया जाता है उसमें पशुओं के आहार में 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को मिला के देना चाहिए,
0: जी
1: उससे कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, आयोडीन और नमक की पूर्ति हो जाएगी। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है,
0: जी
1: चारे में नहीं दे पाते हैं, पूरा नहीं हो पाता है, तो उससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं,
0: जी
1: वृद्धि
0: जी
1: रुक जाती है, जो बछड़ा है वो या बचिया है वो देर से चलेगा, उसके पांव कमज़ोर होने लगेंगे, पांव टेढ़े होने लगते हैं, तो इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए, कैल्शियम की पूर्ति अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि कैल्शियम मुख्य बच्चों में तो मुख्य रूप से दूध से ही मिलेगा,
0: जी
1: और जब माँ के पास कैल्शियम बढ़िया सा रहेगा तो बच्चे को भी कैल्शियम बढ़िया सा मिल जाएगा। दूसरा फास्फोरस है,
0: जी
1: फास्फोरस भी दूध से ही मिल जाएगा, लेकिन जब माँ को मिलेगा तभी बच्चे को मिलेगा।
0: जी जी
1: अगर फास्फोरस कम रहेगा तो उससे पाइका की बीमारी होती है, जिससे पशु मिट्टी खाने लगेगा, लकड़ी चबाने लगेगा, लोहा खाने
0: जी
1: लगेगा,
0: जी हाँ,
1: वो जो नहीं खाने वाली चीज़ें
0: अखाद्य
1: हैं,
0: पदार्थ।
1: अखाद्य पदार्थ
0: जी
1: को खाने
0: जी
1: लगता है, उससे वो तमाम तरह की बीमारियां और पैदा होने
0: मतलब
1: लगती
0: अगर
1: हैं।
0: ये सब लक्षण पशु में दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: जी
1: और कापर है, कापर की कमी से जो शरीर में जो बाल होते हैं वो उनका रंग बदलने लगता है, शरीर में चकत्ते पैदा होने लगते बनने लगते हैं,
0: जी जी
1: तो ये भी खाने में जो मिनरल मिक्सचर देते हैं, जो आहार देते हैं, अगर उसको संतुलित देते रहेंगे तो इसकी पूर्ति होती रहेगी, उस तरह बीमारियां नहीं होगी।
0: जी
1: आयोडीन की कमी के लिए प्रतिदिन हम 50 ग्राम नमक सुबह 50 ग्राम शाम को पानी में चारे में मिला के देते रहेंगे तो आयोडीन की कमी पूर्ति होती रहेगी और उससे घेंघा रोग नहीं होगा, और आयोडीन की कमी से बांझपन की भी समस्या आने लगती है
0: जी
1: तो
0: जी
1: वो भी पूर्ति होती रहेगी। ये आयोडीन अगर नमक देते रहेंगे तो वो पूर्ति करता रहेगा।
0: जी, अब विटामिन्स के बारे में बताओ।
1: विटामिन्स में चर्चा चल ही रही थी तो उसमें विटामिन ए हम बता चुके हैं,
0: हाँ
1: और विटामिन डी
0: जी
1: अगर वो भी कमी हो जाती है, जो कि जिसको हम सूरज की रोशनी से शरीर में बन जाती है और कैल्शियम बनता है, उससे शरीर मजबूत होता है, कैल्शियम अच्छा मिलेगा तो हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी।
0: बिल्कुल सर, तो मानव के लिए भी
1: जी जी
0: जरूरी
1: जी
0: है, पशु के
1: बिल्कुल,
0: लिए भी जरूरी है।
1: अगर हड्डियाँ कमज़ोर हो
0: जी
1: जाएंगी
0: जी
1: तो फिर टेढ़ी होने लगती
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: पैर टेढ़े हो जाते
0: हाँ
1: हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है। और विटामिन ई,
0: जी
1: विटामिन ई जो जननांग हैं, मांसपेशियां हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक होता है।
0: जी
1: अगर विटामिन ई की कमी होता है तो जननांग की वृद्धि कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, और जो मांसपेशियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं तो पशु चल नहीं पाता है। इसके लिए जो हम मिनरल मिक्सचर देते हैं, संतुलित आहार देते हैं, उसी से उसकी पूर्ति होती है, नहीं तो फिर अलग से इंजेक्शन दे करके या पाउडर दे करके उसको
0: जी
1: विटामिन ई की पूर्ति करते हैं। जो

0: पोटेशियम विटामिन के है,
1: जी
0: विटामिन के की कमी से खून में जो थक्का बनता है
1: जी
0: वो बनना बंद हो जाता है,
1: जी
0: जिससे रक्तस्राव होने की संभावना बनी रहती है, या कहीं रक्तस्राव हो गया तो थक्का नहीं बनता है तो रक्तस्राव होता रहता है।
1: डॉक्टर साहब, जितने तरह का कुपोषण आप बताना है कि पोषक तत्वों की कमी से हो, अगर कोनो लक्षण दिखाई दे पशु में,
0: जी
1: तो पशु ये किसान जौन पशुपालक भाई बैठे, इन्हें पहले का करे के चाहिए, सावधानी का करे के चाहिए, कहाँ जाए के चाहिए?
0: कुपोषण होने पे सबसे पहले आपको दिखता है तो तुरंत पशु चिकित्सा अधिकारी या पशु अस्पताल जो भी वहाँ जाके संपर्क करना चाहिए और नियमित देखभाल करते रहना चाहिए पशु की।
1: सावधानी बरतें ताकि
0: बिल्कुल
1: कुपोषण का नौबत ना आवे।
0: जी
1: डॉक्टर मनोज कुमार जी, पशुओं में पोषण की कमी से होने वाले रोग पे आप बहुत अच्छी जानकारी देने, आशा है पशुपालक भाई इसे लाभ उठाएं, आपकी जानकारी दे दे, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखा भैया रानू भाई,
3: हाँ हो
2: डॉक्टर
3: रामोत्तर
2: मनोज
3: भैया,
2: कुमार जी बहुत बढ़िया बताए उन्हें, और वही हिसाब से अपने जयकृष्ण नारायण जी पूछे भी हैं।
3: हाँ।
2: एक बात ये है भाई कि प्रगतिशील किसान तो वह जाना जाता है जो खेती किसानी के अलावा दो
3: हाँ।
2: चार ठे पशुधन भी अपने दरवाजे पर रखा है,
3: एकदम सही
2: और
3: कहे।
2: पशुधन जे भी किसान भाई रखत है तो दो चीज़ का जरूर व्यवस्था की है,
3: हाँ।
2: एक तो हरा चारा
3: हाँ।
2: जौन पौष्टिक रूप से रहता है, और दूसरे जौन पोषक तत्व हैं
3: हाँ।
2: जौन बताए हैं ये डॉक्टर साहब, उनकर ये बात का ध्यान रहत है कि पशु के शरीर में पोषक तत्व का कमी न हो,
3: हाँ।
2: विशेषकर दूध देवे वाले ब्यांत देवे वाले पशुधन जौन हैं
3: हाँ।
2: उनके खातिर पशु पोषक तत्व बहुत आवश्यक हैं।
3: एकदम सही कह भैया। अच्छा एक बात और है,
2: कह जाए
3: साथे साथे भैया देखे साफ सफाई का भी बहुत ध्यान देवे को होता है।
2: बिल्कुल
3: अगर
2: बिल्कुल
3: भैया
2: बिल्कुल
3: आप पशु हैं तो भैया उनकी जो नीचे है भैया तो पक्का फर्श रहे न रहे, तो जिसे हिल्ला किचन न हो, जहाँ बांधे भैया हुआ
2: कहे
3: कान
2: का
3: से
2: मतलब
3: साफ
2: ये
3: सफाई
2: रानू
3: रहे।
2: भाई की जो पशुशाला है साफ सुथरी रहे,
3: हाँ
2: हवादार रहे,
3: हाँ
2: और चूंकि बरसात का मौसम है
3: हाँ
2: तो विशेषकर जो परजीवी हैं जैसे कि किलनी हैं जो पशुओं के शरीर पे आ जाते हैं,
3: हाँ
2: या
3: हाँ हाँ
2: मक्खी हैं या मच्छर हैं, तो उनसे बचाव के खातिर जो ग्रामीण किसान भाई इनके बात है तो भाई नीम का तेल या कोनो सुगंधित ऐसे पदार्थ लगा लेपन हो जाता है जौन से कि परजीवी ना ही आवत है।
3: हाँ
2: एकरे अलावा जौन शहरी क्षेत्र में पशुपालक भाई हैं या
3: हाँ
2: ग्रामीण क्षेत्र में भी जौन पशुपालक भाई हैं,
3: हाँ
2: अगर किलनी या ए तरह का परजीवी हैं
3: हाँ
2: तो जौन चिकित्सक से उचित सलाह लेके दवा आवत है ओकर लेपन कह दें
3: हाँ
2: या
3: हाँ
2: ओकर जौन है इंजेक्शन लगत है वो लगा दें तो परजीवी नष्ट हो जाते हैं।
3: एकदम
2: कहे का मतलब ये कि अपने अगर पशुधन के स्वस्थ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, साफ सफाई के साथ रखा जाए तो
3: हाँ
2: निश्चित रूप से जौन ब्यांत देवे वाले जौन दूध देवे वाले जौन पशु हैं पशुधन
3: हाँ
2: है अधिक से अधिक हमारे सभी के दूध का मात्रा मिल सकत है।
3: एकदम सही कह भैया। अच्छा एक बात और है,
2: कह जा
3: देखा समय समय पे किसान भैया बहनी हरन से अपने जोन कार्यक्रम आवत है पंचायत घर के,
2: हाँ
3: उसे उनका प्रतिक्रिया जाना जाता है,
2: हाँ
3: तो
2: हाँ
3: भैया वो प्रतिक्रिया हमारे व्हाट्सएप नंबर जोन है ऊपर दिया जा सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-2500। एक बार भैया फिर से हम नंबर बोलते हैं, 800-4926-2500।
2: भैया हो समय समय से सब ठीक लागत है रानू भाई,
3: हाँ
2: अब चला
3: भैया
2: चली के बेला है, झोरा डंडा उठावा जाए, पंच भाइयन से विदा लिन जाए, कल फिर भेंट होए तो पंचो
3: राम
2: राम।
3: राम।

अभी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज।

0: में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार हुआ। सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अगला प्रसारण हमारा दिल्ली केंद्र, लखनऊ केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ समेत देश के 45 स्थानों पर आयोजित 20वें रोजगार मेले को वर्चुअली करेंगे संबोधित। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने NCR में वायु प्रदूषण को लेकर की बैठक। सरकारों, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश को भूजल स्रोतों की गुणवत्ता और स्थिति की निगरानी में देश भर में मिला पहला स्थान। 45,361 स्रोतों की जाँच पूरी कर हासिल किया 94.39% का लक्ष्य। और मथुरा में कल श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा राधा अष्टमी का पर्व। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ समेत देश के 45 स्थानों पर आयोजित 20वें रोजगार मेले का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित करेंगे।

0: लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह मौजूद रहेंगे। नवनियुक्त उम्मीदवार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे, जिनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से कल लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में 818 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र दिए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे, जबकि शेष 797 अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर बैठक की। बैठक में एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों, अब तक हुई प्रगति और आगामी कार्य योजना की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बैठक में विशेष रूप से एनसीआर से जुड़े जनपदों में प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। साथ ही केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQM और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया।
2: एयर पॉल्यूशन को लेकर के सभी नगर निगम जो एनसीआर के हैं, उधर हमने विस्तृत कार्य योजना तैयार कराई है। पिछले दिसंबर से अभी तक लगभग 30 से ज्यादा बैठकों का आयोजन किया है और अब राज्य अनुसार जो सिटी स्पेसिफिक प्लान है उस पर भी कार्यवाही की गई है। पिछले दिनों एनसीआर के जो 63 छोटे छोटे शहर आते थे नगर निगम, उनके भी जो पंचायत के जनपद के अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के चेयरमैन हैं, नगर निगम के मेयर हैं, उनके साथ हमने विशाल बैठक करी और अभी हमने निर्देशित भी किया है इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए।
1: प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में सेवा संकल्प महोत्सव 2026 आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में केंद्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं और देश प्रदेश में हुए सकारात्मक बदलाव की कहानी को सरल और संगीतपूर्ण नाटक के माध्यम से शहरों और गांवों तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 30 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक कराए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें 10 विशिष्ट स्थलों, 98 जनपद स्तरीय स्थलों और 826 ब्लॉक स्तरीय स्थलों पर थीम पर आधारित रंगोली बनाई जाएगी। इसी क्रम में हापुड़ में सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा स्वच्छता अभियान और सघन वृक्षारोपण भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे वक्फ कानून में 2025 में किए गए संशोधन ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाकर वक्फ संपत्तियों को संरक्षित करने के साथ ही उनके दुरुपयोग पर रोक लगाई है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में सरकारी जमीन पर किसी भी दावे की जांच अब जिलाधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी और पहली बार हाईकोर्ट में अपील का प्रावधान भी खोला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में किए गए संशोधन को मुस्लिम समाज के हित में उठाया गया कदम बताया।
4: मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसमंदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे।
3: उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन से मुस्लिम महिलाओं और यतीमों का सशक्तिकरण हुआ है।
5: वक्फ संपत्तियों के और बेहतर संरक्षण और बेहतर रखरखाव और खास करके आम जनता को जो बेनिफिशरीज हैं और खास के महिलाएं हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, उनके लिए जो है इसके अंदर जो है बहुत अच्छी एक सोच रख के इसको जो है इसमें संशोधन किया गया है।
3: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू होने के बाद वक्फ संपत्तियों का संरक्षण बढ़ा है और आम जनमानस को इससे फायदा पहुंच रहा है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov

0: www.rtv.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भूजल स्रोतों की गुणवत्ता और स्थिति की निगरानी को लेकर किए जा रहे परीक्षण कार्य में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जांच के अंतर्गत राज्य और जिले स्तर की प्रयोगशालाओं से प्रदेश भर में भूजल स्रोत, भूमिगत व ओवरहेड टंकी समेत पानी के अन्य स्रोतों की पड़ताल की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में 48,055 भूजल स्रोतों के परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके मुकाबले प्रदेश में 45,361 स्रोतों की जांच पूरी कर ली गई है। यह कुल लक्ष्य का 94.39% है। राज्यवार रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यूपी जल निगम ग्रामीण प्रबंध निदेशक योगेश कुमार ने कहा कि भविष्य में भी प्रदेश में सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास जारी रहेगा। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मथुरा में राधाष्टमी का पर्व कल श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर देश विदेश से श्रद्धालुओं के मथुरा पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल भोर में राधा रानी की पावन जन्मस्थली बरसाना श्री लाडली जी का मुख्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मथुरा SP ग्रामीण सुरेश चंद्रावत ने बताया कि बरसाना क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है।
2: इस बार दो रास्ते, जो एक जो श्री जी गेट से कटारा पार्क होकर के सुदामा चौक तक जा रहा है, और दूसरा रास्ता हम लोगों ने इस बार प्रारंभ किया है जो पीली कोठी से और ये लाडो गेट होकर के सुदामा चौक की तरफ जाएगा। इन दो रास्तों से श्रद्धालुओं को हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कुल 38 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं और 11 प्रेशर पॉइंट है, जहाँ पर हम लोगों ने 3 शिफ्ट में भारी पुलिस बल लगाया है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी इसे UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ समेत देश के 45 स्थानों पर आयोजित 20वें रोजगार मेले को वर्चुअली करेंगे संबोधित। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने NCR में वायु प्रदूषण को लेकर की बैठक। सरकारों, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश को भूजल स्रोतों की गुणवत्ता और स्थिति की निगरानी में देश भर में मिला पहला स्थान। 45,361 स्रोतों की जांच पूरी कर हासिल किया 94.39% का लक्ष्य। और मथुरा में कल श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा राधा अष्टमी का पर्व। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। संस्कृत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए प्रोफेसर डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी की वार्ता, समकालीन परिप्रेक्ष्य नाट्य शास्त्रे प्रासंगिकता।
1: श्री गुरुभ्यो नमः, भवद्भ्यः भवतीभ्यश्च मदीयांसि भूयांसि नमांसि। अहम् प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरिः, प्रयागराजस्थ इलाहाबाद विश्वविद्यालयस्य संस्कृत पाली प्राकृत प्राच्य भाषा विभागे आचार्यत्वेन सेवारतोऽस्मि। संस्कृत वाङ्मये नाट्यशास्त्रं तस्य साम्प्रतिकं उपादेयत्वञ्च इति विषयम् अधिकृत्य भवतां भवतीनाञ्च समक्षं वक्तु कामोस्मि। मान्याः श्रोतारः, भवन्तः जानन्ति एव भारतीय ज्ञान परंपरायां संस्कृत वाङ्मयस्य एकं विशिष्टं स्थानम्।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे माहेश्वर दयाल के गाए भजन और गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

जिंदगी बड़ी अनोखी है। एक बार कहीं गुम हो जाएं, यानी किसी गीत के बोल में या उसकी धुन में या कल्पना लोक में कहीं घूमते घूमते उसी गीत का हिस्सा होना महसूस करने लगें तो जी ऐसा भी होता है। आपके साथ भी होता होगा, बार बार कोई एक गीत सुनने, एक ही गीत गाना या गुनगुनाने लग जाए तो समझ लीजिए निशाने पर निशाना चल रहा है, कोई चक्कर पुराना चल रहा है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, ये पहला गीत आपके लिए।

फिल्म जंगली से आप अभी ये गीत सुन रहे थे। गीत के बोल लिखे हसरत जयपुरी साहब ने। लता मंगेशकर जी की खूबसूरत मखमली आवाज़ और संगीत शंकर जयकिशन जी का था। कहा जाता है कि शब्द जहां थक जाते हैं वहां संगीत की जबान बात करती है और फिर सुरों से सजी शाम महकते गुलशन में तब्दील हो जाती है। लीजिए कुछ ऐसी ही बातें समेटे हुए अगला गीत फिल्म ताल से।

ताल का मिलना कितना ज़रूरी है आप सभी जानते हैं। संगीत हमारी आत्मा की वो आवाज़ है जो कुछ न कह के भी बहुत कुछ कह जाती है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म ताल का ये गीत, लिरिक्स आनंद बख्शी जी के, आवाज़ सुखविंदर सिंह जी की और संगीत दिया था ए आर रहमान जी ने। और इस कड़ी में अगला गाना आपके लिए

फिल्म संगीत से आप ये गीत अभी सुन रहे थे। आवाज़ें थी, आवाज़ थी सोनू निगम की और लिरिक्स थे समीर साहिब के, कंपोज किया था जतिन ललित साहिब ने। संगीत पर बात करते हुए लगता है मैं भी गुम होती जा रही हूँ। गीत और गज़ल गाना सबको अच्छा लगता है, गीत और गज़ल गाना सबको अच्छा लगता है, चाहतों का अफसाना सबको अच्छा लगता है। लीजिए इसी कड़ी में फिल्म संघर्ष के बाद जो गाना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है फिल्म साजन से तू शायर है।

आशा भोसले की मखमली आवाज़, गीत साहिर लुधियानवी जी का, संगीत रवि ने दिया था। किसी गीत की धुन पर चलते चलते यक बयक कोई हमकदम आ जाए तो लीजिए सुनने अगला गीत फिल्म वांटेड से।

0: कमाल खान, सुनिधि चौहान, सुजैन की आवाज़ें थीं, गीत समीर के और संगीत दिया था साजिद वाजिद ने। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम हम यहीं संपन्न करते हैं।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अक्षयवट, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अनिल कुमार श्रीवास्तव से सुंदरम तिवारी की बातचीत। विषय है वृद्धावस्था में अकेलेपन की समस्या।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ सुंदरम तिवारी और आज हम बात करेंगे आपसे हमारे समाज की उस अनदेखे पहलू के बारे में जो हमारे बीच रहते हुए भी हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। हम अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुजार देने के बाद जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जिसको कहते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापे की जो सामान्य अवस्था होती है उसमें कुछ समस्याएं होती हैं, उसके कुछ फायदे भी हैं। आपके पास एक लंबा अनुभव होता है लेकिन वर्तमान सामाजिक ढांचा जैसा कि हमारा है उसमें एक समस्या अकेलेपन की आ रही है। हम आज की भाग दौड़ भरी और यूं कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा सफल होने और ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने आपसी संबंधों को, रिश्तों को भूल गए हैं। ऐसे में समाज का एक तबका, हमारे जो वृद्ध जन हैं वो अकेले की समस्या से जूझ रहे हैं। उनके जो परिवार जन हैं या तो कहीं बाहर हैं या ऐसी अवस्था में हैं अपनी नौकरी पेशे में हैं कि वो अपने माता पिता से दूर हैं। समाज वर्तमान समय में एकल परिवार की संकल्पना के आधार पर बना है और जो संयुक्त परिवार की संकल्पना है वो कहीं ना कहीं धूमिल और कमजोर हुई है। इस विषय की तमाम पक्षों, विपक्षों और विभिन्न आयामों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अनिल श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद सुंदरम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारा सामाजिक ढांचा है, जो हमारा सामाजिक परिवेश है, वो अगर हम पहले के दौर की याद करें और आज का जो दौर है काफी परिवर्तन आ चुका है पहले से। पहले हम देखते थे कि ज्यादातर संयुक्त परिवार होते थे और संयुक्त परिवार में इस तरह की समस्या कम देखने को मिलती थी जो कि अभी जो आज का विषय है वृद्धावस्था में अकेलेपन की समस्या। ये समस्या आ ही इसी रह रही है क्योंकि इसके कई कारण हैं। सामाजिक ढांचा है हमारा है और कई बार

0: हम देखते हैं कि अगर आपकी उम्र बढ़ गई है, आपकी नौकरी पूरी हो गई है, आप रिटायर हो गए हैं और आप अकेले रहना शुरू कर रहे हैं, अगर आपके परिवार में आपके लड़का बहू या घर के सदस्य हैं साथ में, तब तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन
1: जी
0: परेशानी कब आती है, जब हम ये देखते हैं कि अब आजकल ये चलन चल गया है कि ज़्यादातर बच्चे या तो देश में ही शहर के बाहर हैं, या कोई कोई तो विदेश में ही अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे समय में अगर माता पिता अकेले हैं और इसमें भी अगर देखा जाए तो अस्वस्थ हैं, तो
1: जी
0: समस्या और बढ़ जाती है।
1: और बढ़ जाती है।
0: क्योंकि वृद्धावस्था में क्या है कि किसी ना किसी को आपकी देखभाल की जरूरत पड़ती है, आपको ये महसूस होता है कि कोई ना कोई हमारे पास होना चाहिए जो वक्त जरूरत पड़ने पे हमारे लिए चार काम कर सके, हमारी देखभाल कर सके, तो ये समस्या उस समय उत्पन्न होती है।
1: मैं आपको बीच में रोकना
0: जी
1: चाहूंगा। आपने अभी बात की संयुक्त परिवार और एकल परिवार की, तो अभी भी हमारे समाज में जो ग्रामीण हिस्से हैं वहां पे संयुक्त परिवार की, बल्कि शहर में भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो संयुक्त परिवार हैं, संयुक्त परिवार की अपनी समस्याएं हैं। लेकिन संयुक्त परिवार में एक वृद्ध जो होता है वो सामान्य रूप से मुखिया माना जाता है और एक भावनात्मक संबल उसके पास होता है, लेकिन ये समस्या एकल परिवार में ज्यादा आ रही है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने सुंदरम, ये समस्या एकल परिवार में ही ज्यादा आ रही है। क्योंकि संयुक्त परिवार में क्या होता है कि आपके पास सदस्य काफी होते हैं, तो उतना सोचना नहीं पड़ता, कोई ना कोई आपकी देखभाल करता है और अकेलेपन की समस्या उतनी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन एकल परिवार में क्या है कि आजकल जो परिवार का सिस्टम हो गया है वो ये है कि माता पिता बेटा बेटी, परिवार पूरा, उसके अलावा किसी की जरूरत नहीं होती है, जो आजकल की सोच हो गई, बहुत सोच बदल गई है
1: जी
0: पहले से। और उसमें भी क्या है कि अगर जब आपके लड़के की शादी हो गई तो उसका जो परिवार है वो उसकी पत्नी और उसका बच्चा, वहीं तक सीमित हो जाती है सोच, तो उसमें माता पिता भी कहीं ना कहीं अलग
1: हाँ,
0: हो जाते
1: अलग हो
0: हैं।
1: जाते हैं।
0: तो उसमें अगर माता पिता स्वस्थ हैं, सामाजिक हैं, अपने हाथ पैर उनके ठीक काम कर रहे हैं, वो अपना सब चीज़ संभाल सकते हैं, तब तो उतनी समस्या नहीं है। अगर वो एक्टिव हैं तो उतनी समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं
1: नहीं
0: है,
1: है
0: स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं है, अगर वो लगातार किसी पर डिपेंडेंट है या कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त है या किसी का इलाज चल रहा है, ऐसे में ये महसूस होता है कि कोई ना कोई हमें हमारे पास हो जो हमारी देखभाल करे, हमें मदद करे, तो ऐसे में ये अकेलेपन की समस्या बढ़ जाती है। और उसमें होता क्या है कि आजकल हम लोग पेपर में भी पढ़ते हैं, अखबारों में भी कभी कभी, कि कोई बहुत वृद्ध आदमी, वो किसी नौकर को रखे हुए थे, साथ में रह
1: जी
0: रहे थे, और पता चला वो नौकर ही उनका घर से चोरी करके सब ले गया, कभी कभी तो बहुत खराब स्थिति में मर्डर वर्डर तक भी हो जाता है। तो समस्या ये शहरों की ज्यादा है। आप ठीक कह रहे हैं कि गांव में अभी भी
1: कम है।
0: संयुक्त परिवार हैं और संयुक्त परिवार में घर के मुखिया की एक अहमियत होती है।
1: अहमियत एक पक्ष है कि आपने अभी जितने पक्ष बताए वो उनके स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और उनका एक जो सामाजिक सरोकार है उसको लेकर के है। एक भावनात्मक पक्ष है, बेटे का बेटा या बेटे की बेटी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका लगाव उसके दादा दादी से ज्यादा होता है। तो जब हम एकल परिवार में आते हैं और परिवार कहीं रोजी रोटी के चक्कर में या अपनी पैशन के चक्कर में जब हम माता पिता को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, तो माता पिता तो वंचित होते ही हैं उस चीज से, बच्चा भी कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है उस लगाव से, उस आशीर्वाद यूं कह लें, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: बहुत ही सुंदर आपने बात कही है, बाबा दादी का पोते से रिश्ता या नाना नानी का नाती से रिश्ता, ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ते हैं।
1: जी
0: और एकल परिवार का सबसे बड़ा दुख यही है कि पता चला एक ही बच्चा है आपका,
1: जी
0: तो चाचा बुआ मामा मौसी ये सब रिश्ते ही खत्म होते जा
1: खत्म
0: रहे
1: हो
0: हैं,
1: जाते हैं।
0: अब रिश्ते बचे ही नहीं। पहले जमाने में क्या था, कम से कम दो तीन भाई बहन है तो मामा चाचा बुआ मौसी ये सब रिश्ते थे। और निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात कही है कि जो बाबा हैं या जो घर के वरिष्ठ हैं, जो बुजुर्ग हैं,
1: जी
0: उनका पोते से लगाव होता है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। और ये एक बहुत स्वस्थ रिश्ता है। और ये हमें लगता है कि जहाँ पे जिस चीज को, ऐसा नहीं है कि हर जगह पूरी जगह अकेलेपन की समस्या है, सभी लोग खराब है, ऐसा 100% कभी भी कोई चीज नहीं होती। अभी भी बहुत अच्छे अच्छे परिवार हैं, उसमें बुजुर्गों का बड़ा सम्मान है, सब साथ में रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। लेकिन फिर भी ये अकेलेपन की जो समस्या आती है ये उन्हीं लोगों को आती है जो अस्वस्थ हैं या जो सामाजिक नहीं है, तो ये ज्यादातर उनमें देखने को मिलती है। और ये भावनात्मक पक्ष जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लगता है इस बात पे हम लोगों को या सब लोगों को जो भी परिवार में है उनको ध्यान देना चाहिए।
1: कहा भी जाता है कि जीवन में खुश रहने के दो ही रास्ते हैं, रिलेशन एंड क्रिएशन। जीवन में संबंध हो और सृजन, आप कुछ क्रिएट करते हैं तो खुशी मिलती है और संबंधों से आपको खुशी मिलती है। तो अनिल जी, ये तो समस्या है, लेकिन हम समस्या की यदि मूल में जाएं तो हमारी परवरिश जो है वो कितनी जिम्मेदार है इस बात के लिए कि हम अपने बच्चे को बचपन से ही सिखाते हैं मनी ओरिएंटेड एजुकेशन, मनी ओरिएंटेड मैनर सिस्टम हम उनको सिखाते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। वो हमारी जो परवरिश है, हमारी जो पेरेंटिंग है, वो इस बात के लिए कितनी जिम्मेदार है।
0: आपने

0: बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। निश्चित रूप से आजकल की अगर आप जीवन शैली देखें तो पति पत्नी दोनों ही काम पे जा रहे हैं, क्योंकि
1: जी
0: आर्थिक समस्याएं, अगर दोनों काम नहीं करेंगे तो जो आर्थिक दबाव है, शहरों का जो दबाव है, जितना खर्चा है, जो महंगाई है, उसमें घर नहीं मैनेज हो पा रहे हैं,
1: जी
0: इसलिए दोनों को काम करना पड़ रहा है। अगर आपके घर में आपके माता पिता हैं तो आपके बच्चे तो ठीक से पल रहे हैं,
1: जी
0: और नहीं है तो देखिए क्रेश का सहारा लेना पड़ता है आपको। और इतनी व्यस्त जिंदगी में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए 12-14 घंटे तो आप बाहर हैं, तो बच्चे को आप कब देखेंगे, बच्चे को समय कब देंगे। हफ्ते में एक आध दिन छुट्टी मिली तो मिली, सरकारी नौकरी में तो तब भी संभव होता है कि आप समय निकाल लेते हैं, लेकिन
1: जी
0: प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत बुरी हालत है, वहां पे मेहनत बहुत ज्यादा है और समय कम निकल पाता है। तो ऐसे में आप देखिए कि हम अपने पेरेंट्स को भी समय नहीं दे पाते, हम अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पाते हैं,
1: जी
0: तो दोनों ही तरह की प्रॉब्लम है।
1: जी
0: तो बच्चे को आया पाल रही है और पेरेंट्स की भी आप एक आपका कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जो आपके वृद्ध माता पिता हैं आप देखभाल नहीं कर पा रहे, उनसे समय नहीं दे पा
1: जी
0: रहे, जबकि उनकी अपेक्षा यही रहती है, जो भी आपके घर में वृद्ध लोग हैं या आपके माता पिता हैं उनकी उम्र हो गई है, तो उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, उनको यही चाहिए रहता है कि आप 10 मिनट बैठ के उनके
1: अटेंशन
0: साथ उनसी उनकी बातें सुने, हालचाल पूछें, अगर कोई ज़रूरत है तो उसमें उनकी मदद कर दें, इतना ही। तो वो भी संभव नहीं हो पा रहा है आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, और आजकल की जो भाग दौड़ भरी
1: जी।
0: ज़िंदगी है और जिस तरह का प्रेशर है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है आजकल।
1: और कहीं ना कहीं वो बच्चा भी एक्टिवली तो नहीं लेकिन पैसिव वे में वो ये सीख रहा है कि मेरे पेरेंट्स अपनी जॉब के पीछे इतना व्यस्त हैं कि वो संबंधों को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा सुंदरम, आपने बिल्कुल सही कहा। एक कहावत भी है, अ पर्सन शुड लीड बाय हिज पर्सनल एग्जाम्पल। हम क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखता, हम क्या करते हैं वो मायने। बच्चा हमारा एक एक एक्टिविटी हमारी देख रहा है कि हम अपने माता पिता को कितनी तवज्जो दे रहे हैं,
1: जी
0: हम अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम उनको कितना सम्मान दे रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे आप उसको देखते हैं ना, तो जब आप उसको देखते हैं तो वो जो देखेगा वो सीखेगा। अगर आप कह रहे हैं बच्चे से कि भाई आप सिगरेट मत पीजिए, आप शराब मत पीजिए, और आप खुद सिगरेट भी पी रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी बात
1: बिल्कुल नहीं
0: मानेगा।
1: करेगा।
0: तो जो आप उसको समझाते हो, एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक और माता-पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी बच्चे के लिए, तो जैसा आचरण आपका होगा वो दिखता है,
1: वो
0: सबको
1: दिखता है
0: दिखता
1: और
0: है,
1: वही बच्चे सीख
0: आपका
1: भी
0: और
1: रहे हैं।
0: आपकी पत्नी का आचरण है वो
1: हाँ
0: दिखेगा।
1: वो
0: अगर
1: दिखेगा
0: आप अपने माता-पिता का सम्मान कर रहे हैं, आप अपने माता-पिता को अपना मान सम्मान दे रहे हैं, तो बच्चा भी निश्चित रूप से वो बड़े होकर वो सीखेगा।
1: सीखेगा।
0: लेकिन अगर अपने माता-पिता से आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और कई कई फैमिलीज में तो इतनी बुरी हालत होती है कि ओल्ड एज होम में पहुंचाना पड़ता है,
1: जी
0: पटरी ही नहीं खाती है, ये हो जाता कि हम इनके साथ रह ही नहीं सकते।
1: मैं इस विषय पे आ ही रहा था कि जो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है
0: जी
1: उसमें एक तो कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव कम है। आपका जो नैतिक दबाव होता है समाज का कि लोग क्या कहेंगे इसलिए हम अपने माता पिता का ख्याल रखें, एक तो वो कम हो रहा है। दूसरी स्थिति, माता पिता स्वयं इस बात के लिए कितने जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक जनरेशन गैप होता है। एक वृद्ध व्यक्ति ने, एक पिता ने जब काम किया था अपने समय में तो उस समय स्थितियां दूसरी थी सामाजिक, लेकिन जब एक बेटा या बहू काम कर रही है तो उस समय स्थितियां दूसरी हैं, तो इस तालमेल को कैसे बिठाया जाए।
0: आपने बिल्कुल सही कहा सुंदरम, बिल्कुल सही कहा। जनरेशन गैप निश्चित रूप से होता है
1: जी
0: भाई, ये तो माता पिता को भी सोचना चाहिए कि जब वो नौकरी करते थे तो उनको अपनी व्यस्तता भी याद रखना चाहिए। तो भाई आजकल का जो समय है उसमें अगर आपका बेटा है वो नौकरी कर रहा है, अगर समय नहीं निकाल पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा अपेक्षा करना भी कहीं कहीं उतना उचित नहीं होता है, क्योंकि कोई भी जानबूझकर आपकी उपेक्षा नहीं करता है।
1: निश्चित रूप से,
0: हाँ, क्योंकि आपका बेटा है या आपका बहू है, अगर
1: और
0: वो
1: वृद्ध होने के साथ साथ आप में थोड़ा सा एक एरोगेंस भी होता है।
0: देखिए, इसमें भी वृद्ध लोग भी जो है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उसमें भी कई प्रकार के लोग हैं, कई
1: जी
0: सारे बड़े प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज
1: हाँ
0: नहीं है।
1: जी जी
0: मुझे भी 5 साल रिटायर हुए हो गया, लेकिन मैं
1: जी
0: ये कह सकता हूँ कि कुछ वाकई बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उससे फैमिली में समस्या हो जाती है, और कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं। दोनों तरह के लोग मिलेंगे
1: जी
0: आपको। तो अगर आप बदले हुए हालात के साथ अपनी सोच नहीं बदलेंगे, सारी
1: जी
0: बात सोच पे है, तो अगर आप जमाने के साथ अपने को बदल रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं, तो वो जनरेशन गैप फिर खत्म हो जाएगा। जनरेशन गैप तभी आता है जब आप कहते हैं भाई हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। अगर
1: जी
0: आप किसी को हमेशा ताना देते रहोगे, किसी को हमेशा हर बात में टोकते रहोगे, तो ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, ना हमने अपने जमाने में
1: जी
0: बर्दाश्त किया है, ना हमारे आने वाली जनरेशन बर्दाश्त करेगी।
1: बर्दाश्त करेंगे,
0: तो इसमें एक बात निकल के आती है, सहनशीलता। संयुक्त परिवार में क्या होता था कि
1: और
0: एक
1: समझ
0: ही तरह का कपड़ा होता था, वो सारे भाई बहनों को
1: जी
0: सिल गया, जो बड़े ने कह दिया वो सबने मान लिया। सहनशीलता की कमी होती जा रही है, उसमें आप देखिए कि न्यूक्लियस परिवार के होने के बाद भी परिवार टूट जा रहे हैं,
1: जी
0: पति पत्नी ही आपस में उतना नहीं सामंजस्य बैठा पा रहे, तो माँ बाप की तो आप छोड़ ही दीजिए बात।
1: जी अनिल जी, हमने इन समस्याओं पे बात की, अब जो वृद्ध हैं, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, वो अपना अकेलापन कैसे दूर करें?

0: इसके लिए क्या
1: देखिए,
0: सुझाव है?
1: इसके लिए बहुत सीधी सी बात है कि सबसे अच्छे साथी आप खुद होते हो। अगर
0: जी
1: आपकी सोच सही है, आप सामाजिक बनिए, आप
0: जी
1: अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत कीजिए। दोस्तों से अच्छा कोई नहीं होता,
0: कोई नहीं होता।
1: दोस्तों से अच्छा समय किसी के साथ आपका व्यतीत नहीं हो सकता। आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ करिए, और आप अपने नाती पोतों में मन लगाइए, तो आपके बेटे की भी मदद हो जाएगी, उनको भी आप चार अच्छे संस्कार दे सकते हैं। और ज्यादातर ये है कि आप सामाजिक बनिए और कूप मंडूक मत रहिए, मतलब एक
0: जी
1: संकीर्ण विचारधारा को लेकर मत चलिए, जिससे आपके परिवार भी खुश रहे, आप भी खुशी ढूंढ सको। अगर हमें कोई समस्या है तो हम मनोवैज्ञानिक की सलाह ले सकते हैं,
0: जी
1: आजकल वो
0: बिल्कुल
1: भी है, क्योंकि
0: जी
1: कई बार क्या है कि हम कभी कभी गलत सोच लेते हैं, तो हमें अगर हम
0: बिल्कुल
1: कोई समस्या है तो हम
0: हाँ
1: मनोवैज्ञानिक की सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, उससे भी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं।
0: आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमसे इतनी महत्वपूर्ण बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं, वो अगर वृद्ध हैं तो भी, और यदि वो युवा हैं तो भी, सभी के लिए सीख है
1: सभी के
0: कि
1: लिए सीख है।
0: परिवार कभी भी समान अधिकारों से नहीं चलता, वो हमेशा समझ और संवेदनशीलता से चलता है। सामाजिक बने, किताबें पढ़े। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

अक्षयवट कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनिल कुमार श्रीवास्तव से सुंदरम तिवारी की बातचीत, वृद्धावस्था में अकेलेपन की समस्या। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। रक्तदान तकलीफ दे नहीं है, इसे देने में समय भी नहीं लगता। इससे किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है, वो व्यक्ति आपका अपना भी तो हो सकता है। कृपया रक्तदान करें। रक्तदान महादान। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में UAE के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी।

0: भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में आईएनएस कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला HTT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है।

0: सूची में 784 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25 सितंबर को प्रकाशित होगी। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पवेलियनों में भाग ले रही हैं।
1: वेरी गुड रिस्पॉन्स,
2: काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोल मेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
1: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
0: प्रधानमंत्री जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
3: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती हैं। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
4: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियाँ तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
5: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है।
3: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माधोपुर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जलंधर में होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय

0: ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदो समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया, मतगणना कल होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य चल रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और ये 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे बढ़कर 95.88 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनावी चिन्ह आवंटित किए। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India and UAE reaffirmed their commitment to continue cooperation in promoting regional security and stability. UAE President dials Prime Minister Narendra Modi. New Delhi expresses deep concern over escalating security situation in Red Sea region, condemns attack on Saudi Arabia's sovereign territory. Hindustan Aeronautics Limited hands over twin-seater Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force. Election Commission allots separate names and electoral symbols to rival factions of Trinamool Congress. Government relaxes sugar stock holding limit for bulk consumers from 15 to 30 days. And in Asian Games, Indian women's cricket team storms into semi-finals, beating hosts Japan by 8 wickets in quarter-final. And now the news in detail. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi today received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown

0: of a strong nation. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: The Supreme Court today suggested a series of measures for all states and union territories to prevent Hooch tragedies. These include stricter monitoring of methanol procurement, storage and transportation, periodic scrutiny of licenses and permits, and specialized disaster management systems to deal with mass casualties. A two-judge bench made the observations while striking down Maharashtra's rules requiring bitterant and colorant to be added to methanol sold to non-drug manufacturers. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andhra Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Kerala, Mahe, Andaman and Nicobar Islands and parts of Northeast India tomorrow. The weather agency said that conditions are becoming favorable for withdrawal of southwest monsoon from some parts of West Rajasthan from tomorrow. For Delhi, IMD has forecast a partly cloudy sky tomorrow. On to sports. At the Asian Games, the Indian women's cricket team entered the semi-finals after comfortably defeating hosts Japan by 8 wickets in Nissin today. In the quarter-final match, electing to field first, India bowled out Japan for a paltry 57 in 19.5 overs. In reply, India overhauled the target, posting 59 for 2 in just 5 overs. Shefali Verma led the chase with an unbeaten 40 off 15 balls. Harmanpreet Kaur-led Indian team will now face Bangladesh in the second semi-final on Sunday. The first semi-final match will be played between Pakistan and Sri Lanka on the same day. The opening ceremony of the Asian Games 2026 at Aichi, Nagoya in Japan will be held tomorrow. For India, double Olympic medalist Manu Bhakar and shot putter Tajinder Pal Singh Tur will lead the contingent. The 20th edition of the Asian Games will run from tomorrow until the 4th of next month. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and UAE reaffirm their commitment to continue cooperation in promoting regional security and stability. UAE President dials Prime Minister Narendra Modi. New Delhi expresses deep concern over escalating security situation in Red Sea region, condemns attack on Saudi Arabia's sovereign territory. Hindustan Aeronautics Limited hands over twin-seater Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force. Election Commission allots separate names and electoral symbols to rival factions of Trinamool Congress. Government relaxes sugar stock holding limit for bulk consumers from 15 to 30 days. And in Asian Games, Indian women's cricket team storms into semi-finals, beating host Japan by 8 wickets in quarter-final. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने में तआवुन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। भारत ने बहिरा अहमर खित्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरतहाल पर तशवीश का इजहार किया है और सऊदी अरब के खुद मुख्तार सरजमीन पर हमले की मजम्मत की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय फिजाइया को 2 सीटों वाले तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे सुपुर्द किए। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के हरीफ धड़ों को अलग अलग नाम और इंतखाबी निशानात अलॉट किए हैं। हुकूमत ने थोक गाहकों के लिए चीनी जखीरा करने की हद 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। और एशियाई खेलों में खवातीन की भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने इलाकाई अमन और सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने की कोशिशों में मुसलसल तआवुन और इश्तराक के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का टेलीफोन मौसूल हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया के हालात पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए नए इकदामात के बारे में भी गुफ्तगू की। इसमें तवानाई, दिफा, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और सेहत जैसे शोबे शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने भारत की कामयाब ब्रिक्स सदारत पर वज़ीर आज़म मोदी को मुबारकबाद दी। जनाब मोदी ने ब्रिक्स सरबरा मीटिंग में वलीहद शेख खालिद की शिरकत और भारत की सदारत के दौरान अहम नतायज हासिल

करने में यूएई के ताउन और शराकत दारी को भी सराहा। यूएई के सदर ने वजीर आजम मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी और इस मौके पर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए तकर्रुर पाने वाले नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरी नामे तकसीम करेंगे। ये प्रोग्राम मुल्क भर में 45 मकामात पर मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर जनाब मोदी तकरीब से खिताब भी करेंगे। नई तकर्रुरी पाने वाले उम्मीदवार भारत सरकार की मुख्तलिफ वजारतों

0: भारत ने बुहरे अहमर में सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। आज नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब के खुद मुख्तार इलाके पर हमलों की मजम्मत की है, जिनमें शहरियों और इकतसादी असासों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुकदस शहर मक्का पर हुए हमले की कोशिश के बाद भारत ने बयान जारी किया था। पाकिस्तानी बहरी जहाज और भारतीय बहरी जहाज के दरमियान हुए तसादुम के बारे में इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने अपने एहतजाज पर पाकिस्तान के रद्दअमल का नोटिस लिया है। जनाब जायसवाल ने पाकिस्तान की जानिब से लगाए गए इल्जामात और धमकियों को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी बहरी जहाज हुनैन के जरिए खतरनाक तरीके से आगे निकलने की कोशिश फौजी मशकों, कलाबाजियों और फौजी नकल हरकत के एडवांस्ड नोटिस से मुतालिक भारत पाकिस्तान के 1991 माहदे के आर्टिकल 10 की सरीह खिलाफ वर्जी है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी बहरी जहाज ने समंदर में टक्कर से बचने से मुतालिक बैन अलाक़वामी ज़ाब्तों की भी खिलाफ वर्जी की है। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि योग मौजूदा दौर में बढ़ते हुए जहनी तनाव के दरमियान जिस्मानी और दिमागी सेहत, ध्यान, खुद आगाही और जहनी तवाजुन को बेहतर बनाने में मदद फराहम कर सकता है। नायब सदर ने यह बात महाराष्ट्र के लोनावला में कैवल्य धाम में गोवर्धन दास सेक्सरिया कॉलेज ऑफ योगा एंड कल्चरल सिंथेसिस की प्लेटिनम जुबली तकलीबात से खिताब करते हुए कही। जनाब राधाकृष्णन ने योग की तालीम, तहकीक और सकाफती मुतालात के दरमियान मजकूरा इदारे की 75 साल खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि कैवल्य धाम के बानी स्वामी कुवल्यनंदन ने 1924 में योग के साइंसी मुताले की बुनियाद रखी थी। उन्होंने कहा कि योग महज एक नस्ल की रिवायत नहीं है, बल्कि एक ऐसा विरसा है जिसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों और अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से 21 जून को योग का आलमी दिन करार दिए जाने के बाद योग को आलमी सतह पर शनाख्त हासिल हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका ये सफ़र जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अनथक अज़्म से इबारत है, जो आज भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इस नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के हदफ के हसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाख्तियार बनाने के ज़रिए ये अज़्म लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान की खसूसी सीरीज के तहत हम नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के जरिए इस नज़रिए को अमली जामा पहनाए जाने की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नीति आयोग ने यकम जनवरी 2015 को काबीना की एक करारदाद के जरिए प्लानिंग कमीशन की जगह ली। इसे फंड फ्राहम करने वाले इदारे के बजाय पॉलिसी साजी के इदारे के तौर पर तश्कील दिया गया। नीति आयोग के 3 अहम अज्जा हैं। गवर्निंग काउंसिल वजीर आजम और तमाम वज़राए आला को एक ही प्लेटफॉर्म पर यकजा करती है। रियासतों को ताउन फराहम करने से मुतालिक मिशन नीति आयोग की टीमों को रियासती हुकूमतों के अंदर काम करने के लिए तैनात करता है। उमंगों वाले अजला प्रोग्राम जिलों की कारकर्दगी को मुकर्रा पैमानों पर जांचता है और नतायज शाये करता है। 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की 3री गवर्निंग काउंसिल मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर आजम ने मोदी ने कहा था कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए मरकज और रियासतें एक टीम के तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
3: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
2: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए नीति आयोग के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग के क्याम से ताउन पर मबनी वफाकियत को फरोग मिला है और ये मरकज रियासती हुकूमतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हिकमत अमली और तकनीकी मशवरे फराहम करता है।
4: नीति आयोग का मतलब है

0: स्किल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसका लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए, और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करता है। सारी स्कीम्स मॉनिटरिंग करने की वजह से स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बदलाव आया है।
1: नीति आयोग अब भारत सरकार के अहम पॉलिसी थिंक टैंक और मरकज और रियासतों के दरमियान पॉलिसी से मुतालिक तबादले ख्याल के एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है। मजबूत रियासतें अब एक मजबूत मुल्क की वाज़ह बुनियाद बन चुकी हैं। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हवाई जहाजों के सरकारी मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अपने ट्विन सीटर हल्के जंगी तैयारे तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस के बाद आज बेंगलुरु में भारतीय फिजाइया को सौंपा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और शहरी आवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू ने इससे मुतालिक तकरीब में शिरकत की। HAL ने दो तेजस और तरबियती तैयारे भारतीय फिजाइया के हवाले किए। वहीं HAL ने अगली नस्ल के 4 ध्रुव हेलीकॉप्टरों को सरकारी कंपनी पवन हंस लिमिटेड को सौंपा। इसके अलावा HAL ने पहला HTT-40 बुनियादी तरबियती तैयारा भी भारतीय फिजाइया के हवाले किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तैयारे को अंकुर का नाम दिया।
3: आज हम एक साथ 3 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
2: तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर खुद इन्हेसारी पर जोर दिया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि भारत इस शोबे में आलमी कायद के तौर पर उभरेगा। जनाब सिंह ने स्वदेशी दिफाई और शहरी आवाबाजी टेक्नोलॉजियों की कोशिश के लिए हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सताइश की। जनाब सिंह ने नौजवान इंजीनियरों और डिजाइनरों को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजियों से मुतालिक चैलेंज को कबूल करने और भारत को आलमी सतह पर मुकाम दिलाने में मदद करने की अपील की। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि निजी और अवामी शोबे को हरीफ बनने के बजाय शराकतदार के तौर पर काम करना चाहिए। जनाब सिंह ने कहा कि भारत की दिफाई पैदावार और बरामदात में खातिरखा इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज IBM सेमीकंडक्टर के जनरल मैनेजर डॉक्टर मुकेश खरे से मुलाकात की। ये मुलाकात आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के तनाजुर में हुई। इस दौरान दोनों ने भारत की चिप डिज़ाइन तरजीहात, जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के मौके और भारत में एडवांस्ड चिप साजी के से मुतालिक IBM के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। जनाब वैष्णव ने LAM रिसर्च के COO सेशा वर्दराजन से भी मुलाकात की और भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को मुस्तहकम करने के कंपनी के मंसूबों पर बातचीत की। इंतखाबी कमीशन ने आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हरीफ धड़ों को नए नाम और नए इंतखाबी निशानात अता किए। इस फैसले के बाद ममता बनर्जी और अरूप राय के जेर क़्यादत धड़े ज़िमनी इंतखाबात में नई शनाख्त के साथ हिस्सा लेंगे। अरूप राय के जेर क़्यादत ग्रुप को नया नाम डेमोक्रेट तृणमूल कांग्रेस दिया गया और उनका इंतखाबी निशान लिफाफा होगा। वहीं ममता बनर्जी के जेर क़्यादत दूसरे ग्रुप का नाम बदलकर ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस रखा गया है, जबकि उनका इंतखाबी निशान एक फुटबॉल खिलाड़ी होगा। हुकूमत ने थोक गाहकों के लिए चीनी जखीरा करने की हद 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ताहम ये रियायत इस शर्त के साथ दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की हद से ज्यादा रखा जाने वाला चीनी का जखीरा सिर्फ पेशगी मंजूरी स्कीम और टेरिफ रेट कोटा के तहत दरामद की गई चीनी से हासिल किया जाएगा। सारिफिन के उमूर, खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत ने कहा कि खुली मार्केट से खरीदी जाने वाली चीनी के जखीरे की हद में कोई तब्दीली नहीं की गई है और ये सिर्फ 15 दिन की खपत तक महदूद रहेगा। ये फैसला हुकूमत की जानिब से चीनी के बड़े ग्राहकों के साथ तफसीली मुशावरत के बाद किया गया। एशियाई खेलों में खवातीन की भारतीय टीम मेजबान जापान को 8 विकेट से बआसानी शिकस्त देने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशिन में आज खेले गए मैच में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हरा दिया। इस क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और 19 ओवर्स और 5 गेंदों में जापान की पूरी

0: टीम को महज 57 रन पर आउट कर दिया। इस दौरान भारतीय गेंदबाजों श्रीचरनी ने 4 विकेट और शेफाली वर्मा ने 2 विकेट लेकर लगातार दबाव बनाए रखा। जवाब में भारतीय टीम ने सिर्फ 5 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर यह निशाना हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 15 गेंदों में 40 रन बनाए और वो नॉट आउट रहीं। हरमनप्रीत कौर की क्यादत वाली भारतीय टीम का मुकाबला निची नायगोया एशियाई खेलों के दूसरे सेमीफाइनल में इतवार के रोज बांग्लादेश से होगा। वहीं पहला सेमीफाइनल उसी रोज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान और निकोबार जजायर और शुमाल मशरक भारत के कई हिस्सों में कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि कल से मगरबी राजस्थान के कुछ हिस्सों से जुनूब मगरबी मानसून के रुख्सत होने के लिए हालात साजगार हैं। दिल्ली के लिए महकमे मौसमियात ने कल मौसम के जुजवी तौर पर अबर आलूद रहने की पेश गोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में कल ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और कम अज कम दर्ज हरारत 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने में तआवुन जारी रखने के अज़्म का इरादा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। भारत ने बुहरा अहमर खित्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और सऊदी अरब की खुद मुख्तार सरजमीन पर हमले की मजम्मत की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय फिजाइयों को 2 सीटों वाले तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे सुपुर्द किए हैं। और इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के हरीफ धड़ों को अलग अलग नाम और इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं गजलों का खूबसूरत कार्यक्रम कहकशां, जहां दोस्तों अल्फाज सिर्फ कहे नहीं जाएंगे बल्कि महसूस किए जाएंगे। गजल एक ऐसी विधा है जो दिल की गहराइयों से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचती है। इसमें प्रेम है, विरह है, उम्मीद है, शिकायत है और जीवन के ना जाने कितने रंग हैं। दोस्तों गजल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि हर श्रोता उसमें अपनी कहानी खोजने लगता है। कभी कोई शेर हमें बीते हुए उन दिनों की याद दिलाता है तो कभी किसी अपने की कमी का एहसास करा जाता है। गजल का रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से होता है। जब शायर उसे जज्बातों को कागज पर उतारता है ना और उन्हें सुरों का साथ मिलता है, तब एक ऐसी रचना जन्म लेती है जो वर्षों तक लोगों के दिलों में बस जाती है।

दोस्तों, जीवन के कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह बयां ही नहीं किया जा सकता। कुछ बातें कहीं नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ महसूस की जाती हैं। जिन बातों को हम कह नहीं सकते ना, गजल उन्हीं अनकहे एहसासों की जुबां बन जाती है। इसकी नज़ाकत, इसकी मिठास और इसकी गहराई श्रोताओं को अपने साथ हिलोरे खाने को मजबूर कर देती है।

दोस्तों, कहा जाता है कि संगीत आत्मा की भाषा है और गजलें उस भाषा का सबसे संवेदनशील रूप। इसमें दर्द भी होता है, लेकिन वो दर्द भी सुकून देता है। इसमें मोहब्बत भी होती है, लेकिन वो मोहब्बत सिर्फ किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि जीवन से भी हो सकती है। गजलें हमें ये सिखाती हैं कि भावनाएं चाहे जैसी हों, उन्हें खूबसूरती से व्यक्त किया जा सकता है। तो इसी भावना के साथ आइए सुनते हैं अगली गजल।

इस समय आप सुन रहे हैं हमारा विशेष गजलों का कार्यक्रम कहकशा, और अब समय है एक ऐसी गजल का जो उम्मीद, प्रेम और इंतजार की खूबसूरत भावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब अंधेरों का एहसास बहुत गहरा हो जाता है, राहें मुश्किल लगने लगती हैं, मंजिल दूर हो जाती है और मन में अनेक सवाल उठते हैं। लेकिन ऐसे ही समय में एक छोटी सी रोशनी, एक छोटा सा विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही रोशनी कभी किसी अपने की याद बन जाती है, कभी किसी सपने की चमक और कभी जीवन से जुड़ी उम्मीद का दीपक। गजलों की दुनिया में शमा केवल एक दीपक नहीं होती दोस्तों, बल्कि वो प्रेम, समर्पण, वफा और उम्मीद का प्रतीक भी होती है। शमा जलती है तो अपने आसपास उजाला बिखेरती है और खुद को जलाकर दूसरों को राह दिखाती है। शायद इसी वजह से शायरों ने शमा और परवाने की कहानी को सदियों से अपने अशार में जगह दे दी।

दोस्तों, जब दिल में किसी अपने की याद हो, रिश्तों में सच्चाई हो और मन में उम्मीद बाकी हो, तब बड़े से बड़ा गम भी छोटा लगने लगता है। अब हम आपको जो गज़ल सुनवाने जा रहे हैं, वो हमें यही एहसास कराती है कि प्रेम में डूबा हुआ दिल मुश्किलों से तो कतई घबराता नहीं। उसे न गम की फिक्र होती है, न हालात की शिकायत। उसके लिए तो अपने प्रिय की याद, उसकी मोहब्बत और उसका साथ ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, गज़लों की खूबसूरती यही है कि कम शब्दों में दिल की गहरी बात कहती जाए। कभी ये दर्द को आवाज़ देती है, तो कभी इंतज़ार को एहसासों में बदल देती है, और कभी मोहब्बत की ऐसी तस्वीर सामने रखती है जिसमें सुनने वाले को अपने जीवन की कोई न कोई कहानी सामने दिखाई देने लगती है।

तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे बहुत ही प्यारी गज़ल नहीं है फिक्र मुझे। उम्मीद है इस गज़ल के शब्दों और सुरों ने आपके दिल को छुआ होगा, आपको प्रेम, विश्वास और उम्मीद से भर दिया होगा। तो इस आज के विशेष कार्यक्रम कहकशां से हमें दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी किसी और खूबसूरत गज़ल और किसी नए एहसास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों से जुड़े रहिए और अपने दिल में मोहब्बत की रोशनी हमेशा जलाए रहिए। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम कहकशां। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं दिलीप कुमार तिवारी का लिखा नाटक टूटा हुआ पंख।

0: मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैं भीड़ में अपनी पहचान खो चुकी हूँ। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं एक सामान्य लड़की हूँ, एक ऐसी लड़की जिसे वर्जना की लक्ष्मण रेखाएं चारों तरफ से घिरे हुए हैं, बंधनों की जर्जर दीवारें जिसका रास्ता रोकती हैं। मैं इस भंवर जाल से निकलना चाहती हूँ। सीमाएं मुझे नहीं रोक सकती। सीमा की निरंतर छोटी होती हुई परिधि में मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मैं इनसे बाहर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी।
1: कहाँ जा रही हो मुक्ता?
0: बाहर जा रही हूँ पापा।
1: लेकिन मैंने तुम्हें घर में रहने की सलाह दी थी।
0: घर में मेरा दम घुट रहा है।
1: अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ, आखिर कुछ सोचकर मैंने कहा था?
0: मुझे कुछ करना है।
1: तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है मुझे करना है।
0: पापा, मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ।
1: पाँव पर तो अब भी खड़ी हो।
0: मैं नौकरी करना चाहती हूँ।
1: नहीं, कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी है।
0: मैंने अप्लाई किया है, नौकरी मेरी जरूरत है।
1: देखो मुक्ता, तुम्हारी हर जरूरत मैं पूरी करूंगा। तुम्हें घर में ही रहना है।
0: मैं घर में कैद नहीं रह सकती पापा।
1: ओह, तो अपना घर तुम्हें कैद खाना दिखाई देता है। देखो तुम सयानी लड़की हो, बड़ों की बात मानना सीखो।
0: मैंने कौन सी बात नहीं मानी? आपने कॉलेज जाने से रोक दिया, मैंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, आपके कहने पर म्यूजिक क्लास तक छोड़ दिया। आपने जो कहा मैंने वही किया। अब आपको भी मेरी एक बात माननी होगी।
1: देखो, चुपचाप घर में बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
0: आज मैं जाऊंगी पापा।
1: देखो मैं कह रहा हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
2: जब वो जा रही है तो जाने दो उसे। जाओ मुक्ता, लेकिन जल्दी आना। अरे अब खड़ी क्यों हो, जाओ ना।
0: थैंक यू मम्मी।
1: तुमने इसे सिर पर चढ़ा रखा है, बाप को कुछ समझती ही नहीं। पता नहीं कैसी माँ हो तुम।

0: कैसे बाप हो, लड़की को हर वक्त डांटते हो। अरे कभी तो नरमी से बात कर लिया करो।
1: तुम तो हो नरमी से बात करने वाली माँ।
0: क्या करूं, माँ हूं, मुझसे इसका ये हाल नहीं देखा जाता। दिन भर गुमसुम घर में चुपचाप या तो बैठी रहती है या कंप्यूटर में उलझी रहती है।
1: तो कौन सा तीर मार लेती है?
0: वो कहीं दिल बहलाने के लिए जाना चाहती है तो तुम हिटलर की तरह उसे डांट कर रोक देते हो
1: और तुम उसे जाने देती हो। मेरी बात काटने में तो तुम्हें मजा आता है।
0: तुम तो झगड़ने पर आमादा हो, पता नहीं इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हो।
1: पागल हो गया हूँ ना, सबको काटने दौड़ता हूँ।
0: अब मैंने नहीं कहा पागल तुम्हें, मैं तो तुम्हें ये कह रही थी कि सयानी लड़की है, गुस्सा होकर कहीं चली गई तो हम लोग कहाँ खोजेंगे उसे। मैं ना तुम्हारे मन की बात समझती हूँ, लेकिन उसे डांट नहीं प्यार चाहिए। तुम इतनी सी बात नहीं समझते, उसके पीछे पड़ जाते हो।
1: और तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाती हो, मेरी हर बात काट देती।
0: अरे मैं क्यों काटने लगी तुम्हारी बातें, मुझे जो ठीक लगा वो कह दिया, इसमें बुरा मानने की क्या बात है।
1: हम रिटायर क्या हुए, घर से ही रिटायर हो गए, कोई मेरी सुनता तक नहीं। अरे भगवान, अब ये तो बता दो कि वो गई कहाँ है।
0: मैं क्या जानूं उसे किस दफ्तर में बुलाया गया है, अब किसी दफ्तर में बुलाया गया होगा उसे।
2: आपने मुझे बुलाया सर, मैं आ सकती हूँ?
3: आइए मिस
4: मुक्ता गौड़।
3: बैठिए।
4: थैंक यू सर।
3: एक मिनट। हेलो, हाँ मैं अनिल श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, इस कंपनी का जीएम। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। हाँ तो मिस
4: मुक्ता गौड़।
3: तो मिस मुक्ता, आप नौकरी क्यों करना चाहती हैं?
4: मैं अपने आप पर निर्भर होना चाहती हूँ सर।
3: आई सी, लेकिन तुमने एमएससी प्रीवियस किया है, अच्छे मार्क्स थे, फिर
4: मैंने पढ़ना छोड़ दिया सर।
3: लेकिन क्यों?
4: मुझे छोड़ना पड़ा सर।
3: वजह नहीं बताएंगी?
4: बताने लायक कोई वजह नहीं है।
3: तुम्हारे घर वाले, मेरा मतलब फादर भाई वगैरह?
4: फादर रिटायर्ड हैं और भाई नहीं है।
3: तो घर में प्रॉब्लम है इसलिए नौकरी करना चाहती हैं?
4: जी नहीं सर, मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी अपनी कोई पहचान हो।
3: काफी बोल्ड हो, अच्छी सोच है आपकी।
4: थैंक यू सर।
3: मिस मुक्ता।
4: जी सर।
3: कंपनी ने इतने कैंडिडेट्स में आपको सेलेक्ट किया है।
4: यानी कि मुझे नौकरी मिल गई?
3: ऑफ कोर्स, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर, मिसेस ग्रेसी से मिल लीजिए, वो आपको आपका केबिन बता देंगी। आज से आप मेरी सेक्रेटरी हो, नाउ गो। अरे जाइए, क्यों खड़ी हैं?
4: सर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
3: क्या कहना है? अरे भाई, आपको नौकरी मिल गई?
4: अभी नहीं सर।
3: क्या मतलब?
4: मैं जो हूँ वो मैं नहीं हूँ।
3: आप कहना क्या चाहती हैं?
4: मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती सर।
3: What do you mean?
4: आई मीन सर, इस तरह का रिहर्सल मेरे साथ एक बार हो चुका है। एक फर्म में मेरा सिलेक्शन हुआ पर नौकरी नहीं मिली।
3: क्या मतलब, नौकरी क्यों नहीं मिली?
4: मेरा सच जानकर उनका रवैया एकदम बदल गया।
3: कौन सा सच, कैसा सच?
4: मैं जानती हूँ सच बताने के बाद आप भी मुझे, फिर भी बताती हूँ सर। कुछ दिन पहले मेरे साथ रेप हुआ।
3: क्या मतलब है तुम्हारा?
4: मैं खुद अपनी नजरों में गिर गई हूँ सर।
3: लेकिन
4: लगता है आप भी मुझे नौकरी नहीं दे पाएंगे। अपॉइंटमेंट लेटर वापस ले लीजिए सर।
3: रिलैक्स।
4: आप चुप हो गए सर, कोई बात नहीं, मैं आपका इनकार बर्दाश्त कर सकती हूँ, चलती हूँ सर।
3: रुको, ये लेटर उठाओ और एडमिनिस्ट्रेशन में मिसेस ग्रेसी से मिलो।
4: लेकिन
3: प्लीज गो टू मिसेस ग्रेसी।
0: मुक्ता, मुक्ता।
4: माँ क्या बात है?
0: इतना

0: सोचती है कि मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देती तुझको?
1: ऑफिस के बारे में सोच रही थी।
0: मुझे सब पता है कि तू क्या सोचती है। तेरी हालत देखकर मेरा कलेजा फटता है। मेरा बस चले तो उन दरिंदों को मैं कच्चा चबा जाऊं।
2: मुक्ता,
0: तेरी सहेली शीला आ गई, तू उससे बात कर, मैं किचन देख लेती हूँ। हाँ
1: हाँ माँ।
3: मुक्ता कैसी है तू?
1: आखिर मेरी याद आ ही गई शीला।
3: दम भर भी तेरी याद जाती नहीं है यार, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। कॉलेज में बिल्कुल दिल ही नहीं लगता।
1: चल झूठी, कॉलेज में तो बहुत लड़कियाँ हैं।
3: फिर भी तेरे बिना बिल्कुल अकेली हूँ।
1: नहीं शीला, अकेली तू नहीं, अकेली मैं हूँ।
3: हाँ मुक्ता, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ।
1: इस मेरे अपने एकांत ने मुझे भीतर तक तोड़ दिया है।
3: नहीं मुक्ता, तू टूट नहीं सकती।
1: तुझे नहीं पता शीला, पापा ने मेरे चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अब तो रिश्तेदार भी कतराते हैं मुझसे, समाज मुझे पराजित करने पर उतारू है, लेकिन मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगी। मेरा दोष ही क्या है शीला?
3: तेरा दोष यही है कि तू निर्दोष है।
1: तो फिर एक बेकसूर को ऐसे कसूर की सजा क्यों दी जा रही है जो उसने किया ही नहीं? मैं हिम्मत से इस अन्याय का विरोध कर रही हूँ।
3: ये तेरा प्रयास नहीं, तेरा यज्ञ है, और मैं तन मन धन से तेरे साथ हूँ।
1: शीला, मैंने नौकरी इसलिए की है ताकि मैं कुछ बन सकूं, और अपना कद इतना ऊंचा करना चाहती हूँ कि मुझसे परहेज करने वाले लोग बौने नजर आए।
3: उन दरिंदों का क्या हुआ?
1: पकड़े गए, जेल में हैं। अरे 9:30 बज गए, माफ करना शीला, मेरे दफ्तर का टाइम हो गया। आई होप यू डोंट माइंड।
3: कोई बात नहीं, मैं भी चलती हूँ, संडे को मिलते हैं।
1: ठीक है।
3: ओके।
4: रविवार को मिलेंगे सरला, मेरी बात हो चुकी है।
0: देख लो, बात टूटने ना पाए, वो जब चाहे तब लड़की देख लें।
4: लेकिन अगर लड़की ने कुछ कह दिया तो?
0: अब हादसे के बारे में बताना तो पड़ेगा ही, पहले ही बता दो।
4: बता दूंगा तो रिश्ता नहीं होगा सरला, बताऊंगा लेकिन वक्त आने पर।
0: कब आएगा वक्त?
4: सगाई की रस्म के बाद।
0: किसी तरह इस लड़की के हाथ पीले हो जाएं तो हम गंगा नहा लें।
4: बात तो बन जाएगी, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। लड़का 35 साल का है।
0: क्या 35 साल का है? तब तो बहुत बड़ा हुआ।
4: और अपनी लड़की को भी तो देखो।
0: लड़की को क्यों कोसते हो, वो बेचारी तो।
4: बेचारी को बेचारा ही मिलेगा।
0: सोच लो, ये रिश्ता ठीक रहेगा?
4: देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं पहले से ही परेशान हूँ।
0: क्यों परेशान हो?
4: अरे लड़की ने समाज में हमारी नाक कटवा दी है, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं भी ऐसा मूर्ख कि लोगों के बहकावे में आकर पुलिस में रिपोर्ट कर दी। अब केस चलेगा, बचाव पक्ष का वकील हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा।
0: हर वक्त वही बातें, मत सोचा करो इतना। चलो चलो खाना खा लो, आओ।
4: हाँ चलो।
1: गुड मॉर्निंग सर।
5: गुड मॉर्निंग, आप आ गईं?
1: जी सर।
5: आप वक्त की बहुत पाबंद हैं, कभी एक मिनट भी लेट नहीं होती।
1: मैंने दफ्तर का एटिकेट आपसे ही सीखा है सर।
5: इतने कम वक्त में आपने सेक्रेटरी का सारा काम पिकअप कर लिया, यू आर जीनियस।
1: सर मैं तो सिर्फ एक कोरा कागज थी, आपने गाइड किया तो कुछ कर भी पा रही हूँ।
5: नहीं मिस मुक्ता, आप में लगन है, कड़ी मेहनत करने की क्षमता है, अटल आत्मविश्वास है, एक अपराजित संकल्प है, आप बहुत तरक्की करेंगी।
1: आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आपकी सहायता से संभव हुआ है। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता।
5: आप भावुक हो रही हैं मिस मुक्ता।
1: ये भावुकता नहीं, सच्चाई है सर, आपकी बहुत आभारी हूँ। लेकिन आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, आपने कितना कुछ किया है।
5: सब आपकी कड़ी मेहनत का फल है, कंपनी आपके काम से बहुत खुश है। ये लीजिए, कंपनी ने आपको सरप्राइज दिया है।
1: क्या है?
5: खुद ही देख लीजिए।
1: अरे

0: ये तो लैपटॉप है।
1: कंपनी का तोहफा है, आपके काम आएगा।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: इन फाइलों में इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं, इन्हें डिस्पैच करा दीजिएगा।
0: श्योर सर, थैंक यू वंस अगेन सर, मैं अभी डिस्पैच करा लेती हूँ।
2: मैं अंदर आ सकता हूँ?
1: आइए। आप
2: लोग मुझे विक्रम चोपड़ा के नाम से जानते हैं।
0: सर ये कुछ ईमेल्स आए हैं, अर्जेंट हैं, इन्हें आप देख लें एक बार।
2: आप यहाँ इस कंपनी में?
0: जी मैं आपको नहीं जानती।
1: आप जानते हैं इन्हें?
2: इन्हें तो पूरा शहर जानता है, मशहूर हस्ती हैं।
0: आप कहना क्या चाहते हैं?
2: कुछ दिन पहले आपके साथ सामूहिक रूप से।
1: ये मेरी सेक्रेटरी है, मिस मुक्ता, अपने केबिन में जाइए।
2: मैं तो आपको अलर्ट कर रहा हूँ, ये लड़की ठीक नहीं है।
1: आप जा सकते हैं, प्लीज गेट आउट।
0: सर।
1: यस मिस मुक्ता।
0: मेरे लिए किस किस को गेट आउट कहेंगे सर? आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था।
1: मेरे ऑफिस में आकर कोई मेरे स्टाफ को अपमानित करे, ये मुझसे सह नहीं होता। खैर, कल फॉरेन डेलीगेशन के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उस प्रोजेक्ट को आपने तैयार कर लिया?
0: जी सर, हमारी तैयारी पूरी है।
1: इस मीटिंग को आपको ही लीड करना है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है।
0: थैंक यू सर, मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगी।
3: इस बार मेरे विश्वास को टूटने मत देना भगवान, कुछ भी करके मेरी मुक्ता का रिश्ता करवा दो। पसंद तो उसे सभी कर लेते हैं, पर जैसे ही उन्हें उस मनहूस घटना का पता चलता है, बस तभी सब खत्म हो जाता है। इस बार अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो हमारी मुक्ता के भी हाथ पीले हो जाएंगे। हालांकि लड़का उम्र में काफी बड़ा है, जोड़ा तो अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं क्या करूं, क्या कर सकती हूं? उन लोगों ने तो संडे को बताने को कहा था। अरे हाँ, संडे तो कल ही है। अजी सुनते हो? कहाँ हो? सुनो जरा इधर आओ।
4: क्या हुआ?
5: अरे भाई क्यों चिल्ला रही हो?
3: चिल्ला नहीं रही हूँ, बस आपको याद दिला रही हूँ कि कल ही संडे है।
5: हाँ याद है मुझे। ये बताओ मुक्ता कहाँ है, दिख नहीं रही कहीं?
3: आज वो जल्दी ऑफिस गई है, कोई जरूरी मीटिंग थी शायद, उसी की तैयारी करनी थी।
5: चलो अच्छा ही हुआ, मुक्ता ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, कम से कम बिजी तो रहती है।
3: ये बात तो है, ऑफिस जाने से हमारी मुक्ता बहुत स्मार्ट हो गई है, कंपनी वाले बहुत भरोसा करते हैं मुक्ता पर।
5: सरला बस एक ही बात की चिंता है, पता नहीं कल क्या जवाब होगा उन लोगों का।
3: इतना क्यों परेशान होते हैं आप? मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है।
5: पर मेरा भरोसा तो टूटता जा रहा है सरला, लगता है बहुत कमजोर हो गया हूं मैं, अब लोगों के ताने सही नहीं जाते, गलती औलाद करती है और सहना हमें पड़ता है।
3: कैसी बातें करते हो आप, इसमें हमारी मुक्ता का क्या दोष है?
5: हाँ सरला, मुक्ता का कोई दोष नहीं है, बस यही बात तो मुझे अंदर तक सालती है। बिना दोष के हमारी बेटी को कितना कुछ सहना पड़ रहा है, लोगों के ताने, अपमान, समाज का बहिष्कार, आज तक हमारा परिवार सह रहा है। पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है भगवान। सरला
3: क्या
5: खुशियां हमसे रूठ गई हैं लगता।
3: क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो हैं ना? पानी लेके आती हूँ मैं।
5: हाँ सरला पानी ले आओ और मेरी दवा भी लेती आना।
3: मैं अभी लेके आई, ये लीजिए पानी और ये दवा। तबीयत तो ठीक है ना आपकी?
5: हाँ ठीक है, लाओ दवा।
3: कितनी बार कहा है आपसे, इतना मत सोचा कीजिए, सब भगवान पे छोड़ दीजिए, वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा।
5: भगवान करे

0: सब अच्छा हो,
1: आप,
0: सब अच्छा हो।
1: आप हिम्मत से काम लीजिए, आप ही तो इस घर की ताकत हो। अपनी मुक्ता को देखिए, उस घटना ने उसे कितना तोड़ दिया था। वो निराशा के अंधेरे में डूब गई थी, पर वो समाज से डरी नहीं, पूरी हिम्मत से उसने समाज का सामना किया। उसने अपनी पीड़ा को, अपने अपमान को अपनी ताकत बनाया और आत्मविश्वास से उठ खड़ी हुई समाज के सामने लड़ने को। और उसकी इस लड़ाई में मैं हर पल उसके

0: अपने अपमान को अपनी ताकत बनाया और आत्मविश्वास से उठ खड़ी हुई, समाज के सामने लड़ने को। और उसकी इस लड़ाई में मैं हर पल उसके साथ हूँ, पर उसे आपकी बहुत जरूरत है। आपके बिना वो ये लड़ाई नहीं जीत पाएगी, देख लेना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मुक्ता ही इस घर में खुशियां लाएगी।
1: शायद तुम ठीक कहती हो सरला, कुछ बातों को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अच्छा सरला, एक कप चाय मिलेगी?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ चाय।
2: आपने मुझे बुलाया सर।
3: आइए मिस मुक्ता, आज तो आपने कमाल कर दिया, कांग्रेचुलेशन।
2: क्या हुआ सर, कुछ तो बताइए।
3: आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, सबको पसंद आया, और उसी के कारण कंपनी की बड़ी डील फाइनल हो गई।
2: सच में? थैंक गॉड, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा।
3: पर मुझे आप पर पूरा विश्वास था, कंपनी का मैनेजमेंट आपके काम से बहुत खुश है।
2: रियली? आज मैं बहुत खुश हूँ सर।
3: और मैं भी।
2: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने लगातार मुझे गाइड किया, तभी शायद मैं ये कर पाई हूँ।
3: नहीं मुक्ता जी, ये सब आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है, इसीलिए इस सफलता का पूरा श्रेय आपको ही है।
2: ये आपका बड़प्पन है सर।
3: इस खुशी के मौके पर एक कॉफी तो पी ही जा सकती है।
2: बिल्कुल पी जा सकती है, पर आज कॉफी मैं पिलाऊंगी, वो भी उसी रेस्टोरेंट में जहाँ की कॉफी आपको पसंद है।
3: ओके मिस मुक्ता, जाइए, पहले कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए और फाइनल करने से पहले मुझे दिखा लीजिएगा।
2: ठीक है सर, मैं इसे तैयार कर लेती हूँ। याद रखिएगा, मैं कॉफी पर आपका वेट करूंगी, बहुत इंतजार मत कराइएगा।
3: आपको बहुत इंतजार तो नहीं करना पड़ा मिस मुक्ता।
2: करना तो पड़ा, पर ज्यादा नहीं। बैठिए सर, ये लीजिए, कॉफी भी आ गई।
3: आज की कॉफी मुक्ता जी की सक्सेस के लिए।
2: अब बस भी कीजिए सर, मान लिया मैंने, मैं आपसे जीत नहीं सकती और जीतना भी नहीं चाहती। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे।
3: क्या?
2: सर मुझे आप मत कहा कीजिए, अच्छा नहीं लगता हमें, सिर्फ मुक्ता कहा कीजिए।
3: ओके, आज तुम्हारा दिन है, जो भी कहोगी मान लूंगा।
2: ऐसी बात है, तो आज कुछ अपने बारे में बताइए।
3: मेरी ऐसी कोई कहानी नहीं है, शादी के 3 वर्ष बाद ही एक मनहूस रोड एक्सीडेंट में पत्नी साथ छोड़कर चली गई, तब से मेरे लिए जिंदगी के मायने ही बदल गए। बस यही कहानी है मेरी।
2: सर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, कभी दोबारा शादी का ख्याल मन में नहीं आया?
3: हमने आने ही नहीं दिया।
2: सचमुच आप स्ट्रांग हैं, ग्रेट हैं, इसीलिए आप मेरे आइडियल हैं। अभी बहुत कुछ सीखना है आपसे।
3: अरे हाँ मुक्ता, एक अच्छी खबर और है।
2: क्या है सर?
3: कंपनी बहुत जल्दी तुम्हें एक और सरप्राइज देने वाली है।
2: सरप्राइज? सबसे बड़ा सरप्राइज तो आपने दिया है सर, मुझे इस कंपनी में काम करने का अवसर देकर, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। जब मैं आपके पास जॉब के लिए आई थी, मैं जीवन से हारी हुई, टूटी हुई, सामाजिक तिरस्कार से घायल, निराशा के अंधकार में डूबी हुई थी। इस अंधकार से मुझे आप ही ने निकाला था, मेरे आत्मविश्वास को जगाया था, और सबसे बड़ी बात, इस मुक्ता पर विश्वास किया था आपने। सचमुच आपने बहुत बड़ा एहसान किया था मुझ पर, मेरी मदद के लिए भगवान ने ही आपको।
3: बस बस बस मुक्ता, मुझे इंसान ही रहने दो। खैर ये बताओ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है?
2: ठीक ही है सर, उनके बीमारी का एक ही इलाज है, मेरी शादी। मेरे लाख मना करने के बावजूद पिताजी रिश्ते तलाशते रहते हैं, बार बार अपमानित होते हैं। बेचारी माँ पिताजी को संभालती रहती हैं, शायद मैं ही अपने परिवार के लिए मनहूस हूँ।
3: मुक्ता अपने को मनहूस मत कहो।
2: तो क्या कहूँ सर, जो कलंक मेरे ऊपर लग चुका है, उसके बाद कौन करेगा मुझसे शादी? ये बात मेरी माँ भी जानती है और पिताजी भी, फिर भी बार

0: बार समाज से अपमानित होते सिर्फ मेरी खातिर। उनकी पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती सर। समझ ही नहीं आता मैं पिताजी और माँ के लिए क्या करूं या मुझे क्या करना चाहिए।
1: फिलहाल तो अपने को संभालो। देखो शायद कोई फोन आ रहा है तुम्हारा।
0: अरे हाँ, माँ का फोन। हेलो, क्या हुआ माँ? क्या, कब? आप डॉक्टर के यहाँ हो? अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। हाँ हाँ वही आ रही हूँ।
1: क्या हुआ?
0: पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। माँ उनको लेकर डॉक्टर के पास जा रही हैं। मैं भी वही जा रही हूँ सर।
1: मुक्ता, किसी भी तरह की जरूरत हो तो जरूर बताना, अपने को अकेला मत समझना।
0: थैंक यू सर।
2: मुक्ता, मुक्ता,
0: क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो माँ? पिताजी जाग जाएंगे।
2: डॉक्टर से मिलने गई थी, क्या निकला रिपोर्ट में? सब ठीक तो है ना?
0: सीने में इन्फेक्शन है इसलिए सांस फूल रही थी। हाँ माँ, एक बात का बहुत ध्यान रखना, पिताजी को किसी तरह का टेंशन ना हो।
2: मैंने तो कितनी बार उनसे कहा कि ज्यादा मत सोचा कीजिए, अपना मानसिक तनाव मत बढ़ाइए, सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए। पर मेरी कहाँ सुनते हैं, बस तेरी शादी की चिंता ने।
0: माँ बस कीजिए, बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला है। बार बार मुझे ये एहसास क्यों कराती हो कि पिताजी की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ, उनकी बेटी मुक्ता। मैं क्या करूँ माँ, तुम ही बताओ।
2: नहीं बेटा मुक्ता, नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। बेटा तेरा रोना सहन नहीं होता, तू ही तो हमारी ताकत है। अपने को कभी कमजोर मत पड़ने देना। पूरी दुनिया भी तेरे खिलाफ हो जाए ना, तब भी तेरी माँ तेरे साथ खड़ी रहेगी। देखो शायद दरवाजे पे कोई है।
0: हाँ, आप पिताजी के पास बैठो, मैं देखती हूँ। अरे सर, आप यहाँ?
1: क्यों, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता?
0: नहीं नहीं सर, आइए ना, बैठिए।
1: 3 दिन से ऑफिस नहीं आई तो मुझे लगा कि मुझे घर चलना चाहिए। अब कैसी तबीयत है पिताजी की?
0: ठीक ही है सर।
1: ओह, लगता है मैं गलत समय पर आ गया।
0: नहीं सर, ऐसा तो नहीं है।
1: पर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। शायद तुम
0: रो रही थी। हाँ रो ही रही थी, पर अच्छा हुआ सर आप आ गए, अब अपने को संभाल सकूंगी।
1: पर ऐसा क्या हुआ?
0: कुछ नहीं सर, बस यूं ही।
1: मुक्ता, क्या मुझे जानने का अधिकार है?
0: आपको तो पूरा अधिकार है सर, आपको तो पूरा अधिकार है सर। ये जिंदगी तो आपकी ही दी हुई है, अब तो मेरा जीवन एक ऐसे घायल पक्षी की तरह है जिसका एक पंख टूट गया है। उस टूटे हुए पंख के साथ मैं कभी आकाश में उड़ान नहीं भर पाऊंगी। मेरी शादी की चिंता ने पिताजी को इस हालत में पहुंचा दी। कभी कभी तो इतनी आत्मग्लानी होती है सर, मन करता है कुछ कर लूं।
1: मुक्ता, दोबारा ऐसा कभी मत कहना।
0: आप ही बताइए सर, जिस लड़की का शरीर पहले ही कलंकित हो चुका हो, ऐसी लड़की को भला कौन स्वीकार करेगा? पर ये बात मेरी माँ नहीं समझती, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं सर, मेरा तन कलंकित है।
1: पर मन तो पवित्र है।
0: मन कौन देखता है सर, ऐसी लड़की से कौन करेगा शादी?
1: मैं करूंगा शादी। मेरे लिए तुम आज भी गंगा जल की तरह पवित्र हो।
0: सर प्लीज, मुझ पे तरस खाकर मजाक मत कीजिए।
1: ये मजाक नहीं है मुक्ता, मैं तुम्हारे उस टूटे हुए पंख की जगह लेना चाहता हूँ जिससे तुम मेरे साथ आकाश में उड़ान भर सको। मैं उस समाज के मुंह पर एक तमाचा मारना चाहता हूँ जिसने बिना गलती के तुम्हें इतनी बड़ी सजा दी, तुम्हारा तिरस्कार किया। बोलो मुक्ता, क्या मुझे स्वीकार करोगी? बोलो ना
0: सर।

0: मेरे पास शब्द नहीं है सर, समझ नहीं पा रहे आप सचमुच इंसान हैं या देवता।
1: इंसान ही हूं, देवता नहीं।
0: पर सर।
1: सर नहीं, अनिल कहो।
0: अनिल
1: मुक्ता।

अभी आप सुन रहे थे दिलीप कुमार तिवारी का लिखा नाटक टूटा हुआ पंख। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ला, डॉक्टर प्रतिमा वर्मा, विनय श्रीवास्तव, दिलीप कुमार तिवारी, प्रीति यादव और एकता शुक्ला। प्रस्तुति सहयोग विनय कुमार श्रीवास्तव की और प्रस्तुति प्रदीप कुमार मिश्र की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कमला बोस का राग बिहाग में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत की श्रवण कुमार भट्ट ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कमला बोस का राग बिहाग में ख्याल गायन, आपके साथ तबले पर संगत की श्रवण कुमार भट्ट ने। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। श्री नहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश के 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
2: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
1: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल

इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव में अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 ईवीएम का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती कल नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। अब भारत का सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।